सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: Saxena. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल

0: भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये

में दूसरा भारी अकाल पड़ा। इन दोनों अकालों के समय दक्षिण अफ्रीका से अच्छी मदद आई थी। पहले अकाल के समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम एकत्र हुई। इस चंदे में हमने अंग्रेजों से भी मदद मांगी एवं उनकी ओर से अच्छा जवाब मिला था। गिरमिटिया भारतीयों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी। इन दो अकालों के समय इस प्रकार जो प्रथा शुरू हुई वह अब स्थिर है एवं हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां बसने वाले भारतीय सदा अच्छी रकम भेजते हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की इस तरह सेवा करते हुए मैं स्वयं धीरे धीरे कई बातें अनायास सीख रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उनका अंत तो नहीं होता। जैसे जैसे हम उसकी गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे उसमें से अधिक रत्न मिलते जाते हैं, सेवा के अवसर मिलते रहते हैं। लड़ाई के कार्य से मुक्त होने के बाद आभास हुआ कि अब मेरा कार्य दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में है। मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बैठा बैठा मैं कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूंगा पर वहां मेरा मुख्य काम धन कमाना ही हो जाएगा। देश का मित्र वर्ग भी देश लौट आने के लिए बराबर आग्रह करता था। मुझे भी लगा कि देश जाने से मेरा प्रयोग अधिक हो सकेगा। मैंने मित्रों के सामने मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। बड़ी कठिनाई से एक शर्त के साथ वह स्वीकृत हुई। शर्त यह थी कि यदि एक बरस के अंदर कौम को मेरी आवश्यकता ज्ञात हुई तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचना होगा। मुझे यह शर्त कड़ी लगी पर मैं पेपाश में बंधा हुआ था। ये ठीक है कि इस समय मेरा निकट संबंध नेटाल के साथ ही था। नेटाल के भारतीयों ने मुझे प्रेमामृत से नहला दिया। जगह जगह समर्पण की सभाएं हुई एवं हर जगह से कीमती भेंटें मिली। जब मैं सन 1896 में देश आया था तब भी भेंटें मिली थी पर इस बार की भेंटों से एवं सभाओं के दृश्य से मैं अकुला उठा। भेंटों में सोने चांदी की चीजें तो थी ही पर हीरे की चीजें भी थी।

गांधी जी की इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी कथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस खान का संकेत पद पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। कलाकार थे सुरेश वाडकर। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सवेरे 9:30 पर हमारे केंद्र से अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सविता कपूर से संकल्प मिश्रा की बातचीत। समय याद रखिएगा, सुबह 9:30। सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं नाटक। रात्रि 8:00 कथा सागर के अंतर्गत सुनिएगा डोली डबराल से उनकी कहानी। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी साधना भट्ट का कविता पाठ। साथ ही बहनें सुन पाएंगी रसोई घर से। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर सुनिएगा डॉक्टर सानिका महर से संकल्प मिश्रा की बातचीत। विषय रहेगा चिकित्सा क्षेत्र में उभरती संभावनाएं। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे ग्राम झांकी के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी की मोरी ब्लॉक के गोट गांव की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी विनय ध्यानी की। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा डॉक्टर मुकुल शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय रहेगा नशा मुक्त भारत। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रामराज मिश्रा का सारंगी वादन। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा रेणुबाला के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में भगवत वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा मेहंदी हसन और साथियों से हम्द। सुगम संगीत आप रात्रि 8:15 पर भी सुन सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10:00। फिल्मी भजन आप सुन सकते हैं सुबह 7:10 पर और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 9:00 सदाबहार कार्यक्रम में। 10:12 पर दिन में 11:00, 1:15 पर, 2:30 पर, 3:10 पर, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्री मोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रान्तिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति जनान् सशक्तं च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय दिवसस्य स्वर्ण जयंती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं गृहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमंत्रिणा 15-2000 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति, अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय सभायाः संबोधनं च करिष्यति, प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियंत्रण अभिकरण द्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मंत्रालयानां राज्य सर्वकाराणां मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन संस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादक द्रव्य व्यापारस्य मादक द्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः मादक द्रव्य नियंत्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रीय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनांकपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200-रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इंधनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबंधनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partners.

FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी भजन।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था आंखें, शब्द थे साहिल लुधियानवी की और संगीत रवि का था।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: श्रोता फिल्मी भजन सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले, गीता दत्त और साथियों को। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। गीत है शैलेंद्र का और संगीत दाता राम का है, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से संवाद करेंगे। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क पहली जुलाई से बढ़ाकर

0: ₹2,500 किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क ₹5,000 होगा। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। और चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित और अनुशासित यात्रा की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे खेतों का भ्रमण कर फसलों का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच पंतनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है। बैठक में विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों तक उनके लाभ की पहुंच तथा भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा श्री चौहान पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 का शुल्क देना होगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावित होंगे। नए शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए यह लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदलने में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदलने में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: राज्य सरकार हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भव्य मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना करेगी। ये संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राच्य विद्याओं के संरक्षण, संवर्धन तथा शोध का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कल ऋषिकेश मैदान का निरीक्षण कर प्रस्तावित योजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रमुख सचिव ने कहा कि संस्थान में योग, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य प्राच्य विद्याओं पर शोध की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम से एक प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे प्राचीन जितने भी विधाएं थी, खास करके कला, वास्तुकला, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इस तरह के जितने योगा, उसको किस तरह से उस पर शोध किया जाए और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शोध संस्थान बनाया जाए, तो उसके लिए हरिद्वार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं ये एक हरिद्वार के लिए एक फ्यूचर में पर्यटन स्थल के तौर पर काम करे।
0: श्री सुधांशु ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राज्य में चारधाम यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रबंधन के कारण यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और पवित्रता को अक्षुण रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा की गरिमा बनाए रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
4: यात्रा के नियम हमारे पहले के समय से, ऋषि मुनियों के समय से, हमारे पूर्वजों के समय से यात्रा के नियम बने हुए हैं। यात्रा में साफ सफाई से रहना है, नियम संयम से रहना है, तो ये यात्रा धर्म के लिए है।

पर्यटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं और तीर्थाटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि भाई वहां पर पवित्रता बनी रहे, अच्छे से लोगों के दर्शन हो, लोगों की सुरक्षा का प्रबंध हो।

0: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि पोलियो उन्मूलन अभियान राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे पोलियो की खुराक प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि जिले में 28 जून को 1500 से अधिक बूथों के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इनमें 1300 स्थायी बूथ, 82 ट्रांजिट बूथ और 24 मोबाइल बूथ शामिल हैं। इसके बाद 29 जून से 4 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मेरी साथी निशि भाटिया।
1: धन्यवाद रागनी। कर्णप्रयाग और नगरासो निहंग विवाद को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ से सह चित्र प्रकाशित किया है। इस खबर में दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समाचार का शीर्षक है, सीमा पर बैरिकेटिंग तोड़ उत्तराखंड में घुसे निहंग। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखा है, हेमकुंड यात्रा के लिए बनेगी SOP। वेनेजुएला भूकंप पर नवोदय टाइम की सुर्खी है, भूकंप के झटकों से दहला वेनेजुएला, 164 की मौत, 971 घायल, 7.2 और 7.5 के थे तोड़ लगातार झटके। बहुचर्चित LUCC घोटाले पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, 25 करोड़ रुपए की 23 संपत्तियां कुर्क, 1.60 करोड़ निवेशकों से 419 करोड़ रुपए की ठगी प्रकरण में 7 मुख्य आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार।
0: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने अवैध निर्माण और भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए ऋषिकेश में एक व्यावसायिक भवन को सील कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार जांच में पाया गया कि मेन हरिद्वार रोड स्थित भरत विहार में ये निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से संवाद करेंगे। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और चारधाम यात्रा में करीब अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित और अनुशासित यात्रा की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए रेणु बाला के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर राजेंद्र कुमार, तबले पर गुरविंद सिंह, हुड़का पर गोविंद सिंह, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट। तो आइए सुनते हैं रेणु बाला के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेमनगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: शैल संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं रेणु बाला के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेणु बाला के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर राजेंद्र कुमार, तबले पर गुरबीन सिंह, हुड़का पर गोविंद सिंह, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आपके साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

0: आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में

नमस्कार देहरादून के आज के संघ के साथ मैं हूँ आपके साथ कल्पना पंकज। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, इसलिए इसके सेवन से दूर रहें। श्रोताओं, शराब का सेवन मनुष्य को उसके सोचने समझने की क्षमता छीन लेता है, जो उसे पशु के स्तर तक गिरा देता है। श्रोताओं, इसी प्रकार से नशीले पदार्थों का सेवन भी मनुष्य के लिए हानिकारक है, जो उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। इसलिए नशा व नशीले पदार्थों का सेवन न करें, इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। श्रोताओं, हम देखते हैं कि जहां एक और देखा देखी या शौक के चलते इसका सेवन करने लगते हैं, तो ये आदत धीरे धीरे ऐसी बनती है जिससे ये बढ़ती ही चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आजकल युवा पीढ़ी आज के स्तर पर, बड़े स्तर पर इसे शौक के तौर पर अपना रही है, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्रोताओं, नशे के दुष्परिणाम से बचने के लिए आज ही नशे को त्यागना होगा और जीवन को अपनाना होगा। पर श्रोताओं, जब चाहे तब इसे नशे को हम छोड़ सकते हैं, नशे को त्याग सकते हैं। और वैसे भी नशे से मुक्ति का वास्तविक अर्थ है केवल नशा छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं से इतना अधिक प्रेम करना है, इतना अधिक प्यार करना है कि उसे दोबारा छूने की आवश्यकता ही महसूस ना हो। इसलिए श्रोताओं, अपनी जिंदगी से प्यार करें, नशा व नशीली पदार्थों का सेवन न करें। हाँ, इसकी अगर लत पड़ जाती है तो इसे त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए अपने काउंसलर, डॉक्टर या विशेषज्ञ से मदद ली जा सकती है। इसके लिए बड़े स्तर पर भारत सरकार द्वारा अनेक अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, ताकि नशा व नशीले पदार्थों का से हम हमेशा दूर रहें। श्रोता, इसी बात को ध्यान में रखकर आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जा रहा है। आइए आज के दिन हम भी संकल्प लें कि नशे की आदत से हम हमेशा दूर रहेंगे और जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर श्रोताओं अब जानते हैं स्थानीय महत्व की जानकारी अखबार की सुर्खियों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं को 42 करोड़ की स्वीकृत। यात्रा में अराजकता रोकने के लिए बनेगी SOP CM धामी। पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ उत्तराखंड में घुसे निहंग। रात भर हाई अलर्ट पर रहा दून। व्यवसाय गैस पर लगी पाबंदियां खत्म। होटल व रेस्टोरेंट को राहत। शादी होटल रेस्टोरेंट में अब नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत। बाल सुधार गृह में शुरू होगा बेसिक लर्निंग प्रोग्राम। पारंपरिक तकनीक से संवारे जाएंगे पर्वतीय जल स्रोत। नशे के खिलाफ दून में 27 सितंबर को होगी मैराथन। लद्दाख के दुर्गम दर्रे पार कर पूर्व सैनिक कर्नल RS सिद्धू और कैप्टन NS बिष्ट ने बनाया रिकॉर्ड। प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश बर्तवाल को भारत शिक्षा रत्न सम्मान। आज मुहर्रम माह का 10वां दिन आशूरा है जिस दिन अल्लाह की इबादत प्रार्थना और उपवास आदि किए जाते हैं। ताजिया और जुलूस आदि निकाले जाते हैं। इस अवसर पर आज देहरादून में मुहर्रम पर यातायात रहेगा डाइवर्ट। और मौसम संबंधी जानकारी श्रोतो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में बिल्कुल बदलाव आ सकता है। मॉनसून की गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब जानते हैं इतिहास के पन्नों में कि आज 26 जून का दिन क्यों है खास। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1974 में सुपरमार्केट में सामान को स्कैन करने के लिए पहली बार बारकोड का इस्तेमाल शुरू हुआ था। आज के दिन 1991 में PV नरसिम्हा राव ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1992 में भारत ने 3 बीघा गलियारा 1999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया। 1999 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग की हथियार कार्यक्रम के प्रमुख विक्टर रीस का इस्तीफा। बुडापेस्ट हंगरी में विश्व विज्ञान सम्मेलन की शुरुआत। आज ही के दिन सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा दिया गया। और वर्ष 2008 में बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो रिटो ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के तहत हीरा खनन के लिए खनिज पट्टा माइनिंग लीज हासिल कर बंदर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। श्रोताओं ये थी इतिहास की पन्नों से जानकारी। और आइए आपका मनोरंजन करवाते हैं इस खूबसूरत सी गीत के साथ।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं नमस्कार। देहरादून कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं आज बंगला साहित्य के पितामह और साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है। इनका जन्म आज के दिन यानी कि 26 जून 1838 को 324 परगना की कंठालपाड़ा नेहाटी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इन्होंने हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की तो ये ऐसे पहले भारतीय थे, लेकिन जैसे उन्होंने शिक्षा समाप्ति की तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन उन्होंने कानून का भी अध्ययन किया है, साथ ही इन्होंने बंगला साहित्य संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में ये लिखा करते थे। श्रोतम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पहचान मिली इन्हें बंगला कवि के रूप में, उपन्यासकार, लेखक और एक पत्रकार के रूप में। इनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी राजा महेंद्र वाइफ, जो अंग्रेजी में थी। बंगला भाषा में प्रकाशित इनकी पहली कृति दुर्गेश नंदिनी थी और दूसरा इनका उपन्यास था कपालकुंडला। इन्होंने मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया है, पर इनकी कालजी देशभक्ति रचना आनंदमठ का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1882 में, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। प्रसिद्ध देशभक्ति राष्ट्रगीत वंदे मातरम इनकी प्रमुख रचना है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी और जन जन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और हर भारतीय को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। श्रोताओं इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अनेक उपन्यास लिखे। पर श्रोताओं 8 अप्रैल 1894 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर श्रोताओं इनकी रचनाएं आज भी याद की जाती है जो जन जन में लोकप्रिय है। सुनते हैं कार्यक्रम में ये देशभक्ति गीत फिल्म आनंदमठ से।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, फिल्मों में अनेक प्रतिभाओं ने यश फैलाया है, पर एक ऐसी ही प्रतिभा है जिन्होंने फिल्मों में खूब नाम कमाया है। जी हाँ, उनका नाम है यश जौहर, जो बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता रहे हैं। श्रोताओं, यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को अमृतसर में हुआ था। इनकी दादी ने कहा करती थी कि तू यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा कार्य करने के लिए जन्मा है, और उन्होंने ही इन्हें घर से भागकर अच्छा कार्य करने के लिए मुंबई जाने की प्रेरणा दी। लेकिन श्रोताओं, मुंबई आने के बाद यश जौहर को एक समाचार पत्र में फोटोग्राफर की नौकरी मिली, और इसके बाद उन्होंने कई फोटोज़ के सिलसिले में ये अभिनेत्री मधुबाला से मिले। और श्रोताओं, यश का स्वभाव हमेशा से अच्छा रहा था, और यही कारण रहा कि अभिनेत्री मधुबाला ने कई फोटो शूट करवाए, साथ ही एक कंपनी में काम भी नहीं दिलवाया। इस तरह यश जौहर प्रोडक्शन हाउस से जुड़ गए और कंट्रोलर का काम करने लगे। पर 1960 के दशक में इन्हें देवानंद की प्रोडक्शन हाउस नवनिकेतन फिल्म से नौकरी मिली, और यहाँ इन्होंने 12 साल काम किया। और श्रोताओं, एक लंबा अनुभव प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने करियर में एक बड़ा बदलाव किया जब धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखी और पहली फिल्म बनाई थी दोस्ताना, और जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। श्रोताओं, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, और धीरे धीरे इन्होंने अनेक फिल्मों बनाई जिनमें मुख्य रही अग्निपथ, दुनिया, डुप्लीकेट, गुमराह जैसी। श्रोताओं, साथ ही इस तरह से इन्होंने फिल्मों में खूब नाम कमाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इनकी मुख्य फिल्में रही हैं कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो। साथ ही इन्होंने हॉलीवुड फिल्मों का निर्माण भी किया है, और श्रोताओं, धर्मा प्रोडक्शन कंपनी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमा रही है। पर श्रोताओं, यश जौहर ने आज ही के दिन 26 जून 2004 को दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनकी बेहतरीन फिल्में आज भी हमें इनकी याद दिलाती हैं। सुनते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखें व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। और अब इसी के साथ आज का ही कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे ही आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

0: ये स्वर था महेंद्र कपूर का, फिल्म का नाम था फकीरा।
1: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
3: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
0: शुद्ध जीवन चलने का नाम है। रुकना तेरा काम नहीं, पर रुकना जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन बाधाएं तो अनेक आती हैं, पर इन बाधाओं से घबराना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि जीवन में मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाना है। हम बढ़ते हैं फिल्म संगीत के इस अगले गीत की ओर। सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है ममता। शब्द है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत रोशन का है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सदाबहार फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ है। फिल्म का नाम है हसीना बन जाएगी। गीत को संगीत दिया है कल्याण जानन जी ने।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, आवाज़ आशा भोसले की, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: श्रोताओं ये खूबसूरत जीवन का सफर है और इस सफर में हर किसी को दूर तक चलना है आप भी अपने से जीवन के सफर में ढेर सारी खुशियां प्राप्त करें आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें इसी कामना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ फिल्म का नाम हवराज गीत है साहिल लुधियानवी का और संगीत रवि का है

श्रोतों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। रिजी प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुभव। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सविता कपूर से संकल्प मिश्रा की बातचीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुभव।

0: श्रोताओं नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम के आज के सिलसिले में आज हमारे साथ हैं श्रीमती सविता कपूर, जो कि उत्तराखंड की एक जानी मानी जनप्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कहने को इनके बारे में बहुत कुछ है और कार्यक्रम के दौरान हम इस बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आज स्वागत करते हैं श्रीमती सविता कपूर जी का। सविता जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत
1: है। नमस्कार, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद आपका।
0: सविता जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवा में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसके बारे में पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत में भी अगर बात की जाए तो बहुत ही दिग्गज राजनीतिक परिवार से आती हैं आप, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो पता चलता है कि आप अपने आप में बहुत से अनुभव और बहुत सी यादें समेटे हुए हैं। हम आपके बचपन में जाना चाहें, इस स्टूडियो में बैठे हुए सबसे मीठी कौन सी याद है आपके साथ अभी?
1: छोटे छोटे हम लोग थे, मेरे फादर का पुलिस में जॉब था, कोई बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे, मीडियम क्लास परिवार से मेरा जन्म हुआ और जिला बिजनौर चांदपुर ग्राम में मेरी जन्मभूमि है, तो उत्तर प्रदेश ही था सारा पूरा। तो मेरे फादर जॉब में थे क्योंकि, और उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो हम लोग नए नए शहर देखने को मिलते थे, अच्छा लगता था हमें। हर दूसरे साल नए शहर, नए घर मिलते थे, नए दोस्त मिलते थे और स्कूल भी जाते थे। उस समय तो स्कूल भी पैदल ही जाना होता था, हम लोग पैदल जाते स्कूल। रास्ते में कई बार जैसे खेत मिल गए, ताई ताजी मूलियाँ आए, मूली ले ली, खरीद ली, 10 पैसे की मूली मिल गई उस समय, तो बहुत अच्छा लगता था। हम सब फ्रेंड्स मिलके एंजॉय करते थे और स्कूल का भी आनंद लेते थे और एंजॉय भी करते थे अपनी लाइफ को।
0: आपने स्कूल की बात बताई, बहुत से बच्चों की स्कूल की लाइफ बड़ी अनूठी यादें रहती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई में ही अपना सब कुछ दिखाई देता है। आपका बचपन कैसा था? कुछ शरारतें क्या दोस्तों के साथ किया करती थी?
1: शरारतें तो नहीं करते थे क्योंकि मेरे फादर जो पुलिस में थे ना, थोड़ा उनका अनुशासन था एक तरह से। उनको था कि मैं ऑफिस से आऊं तो बच्चे मुझे घर में पढ़ते हुए मिलने चाहिए। तो हम तीन बहन भाई, हम उनके आने से पहले अपने बैठ जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और एक संस्कार जो हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, जो आज भी हम उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं समाज में। और एक संतोष, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमें संतोष होगा तभी हम काम भी अच्छे से कर पाते हैं।
0: संस्कारों और सीख की बात करें तो हर व्यक्ति के मूल में वो संस्कार रह जाते हैं जो उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी देते हैं। आज आप एक जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी भी हैं, कौन से ऐसे संस्कार आपको लगते हैं जो आपके माता पिता की दी हुई सीख के रूप में आज भी आपके अंदर हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं?
1: एक तो मैं सोचती हूँ, सबसे पहले तो हमें समय की वैल्यू समझनी चाहिए, समय पाबंद होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करें, हमने है मन में कि ये काम करना है, हमें उस कल पे नहीं छोड़ना, उसको जो है आज ही हम पूरा करें। और अगर कहीं जाना है, किसी को समय दिया है तो उसे उस समय पर मिलना भी है, पूरी कोशिश हमने करनी उस समय पर मिलें। या किसी ने हमें बुलाया, उसके यहाँ 10 मिनट पहले हम पहुँचे, ये नहीं कि वो हमारी इंतजार कर रहे हैं बैठे हैं। तो समय पाबंद का ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि समय पर हम काम करेंगे तो जीवन में आगे भी हमें सफलता मिलती है।
0: जब आप स्कूल में थी, हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ बनना चाहता है। आपने कभी सोचा था क्या कि आप आगे चल करके एक जनप्रतिनिधि या समाज सेवा के क्षेत्र में आएंगी?
1: नहीं, ऐसा नहीं सोचा था।
0: आप क्या सोचती थी फिर?
1: कुछ भी नहीं सोचते थे उस समय, ऐसा सोचने का दिमाग में होता ही नहीं था। बस शादी भी ऐसे, 12वीं पढ़ते पढ़ाई करते एकदम शादी हो गई, तो कुछ ऐसा सोचने का आगे नहीं था।
0: हम शादी की बात करें, आपकी जो पति स्वर्गीय श्री हरवंश कपूर जी उत्तराखंड के सबसे दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं, अजय विधायक रहे वो और कई मंत्रालय भी संभाले उन्होंने, शुरुआत की यादें कैसी हैं जब आप एक जीवन साथी के तौर पर आपने उन्हें पाया, वो शुरुआत की यादें उनके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जब हम शादी होके आए, मतलब ये लोग पंजाबी, हम यूपी के, थोड़ा ये बोलचाल में भी थोड़ा अंतर था, हमारी वेशभूषा भाषा में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन हमने उसको एडजस्ट किया, उसमें काम किया, एडजस्ट किया। और ये तो सबके साथ परिवार, इकट्ठा परिवार था, हमारे इन लॉज थे और हमारे इनके कपूर साहब के 5 भाई बहनें, बड़ा परिवार था। और सब लोगों का मिलना जुलना आना जाना हमेशा घर में रहता था, तो सबके साथ मिलके ऐसी जीवन बीतता चला गया। 3 बच्चे हमारे हो गए, उनको भी पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार देके बच्चों को हमने बढ़ाया आगे।
0: आपने बात की जिम्मेदारियों की
1: जी,
0: एक महिला के तौर पर आप सामाजिक दायित्व को तो बहुत अच्छे से निभा रही हैं, आपको हर कोई जानता है उत्तराखंड में, देश में बहुत से लोग जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक महिला की जिम्मेदारी पुरुषों से बहुत ज्यादा बड़ी
1: जी,
0: होती है,
1: जी।
0: उनके ऊपर जो दायित्व का बोझ होता है वो पुरुषों से हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। दोनों दायित्वों को आपने कैसे निभाया, कई बार दिक्कतें आई होंगी, औरों को क्या सीख देना चाहेंगे इस पर?
1: कपूर साहब राजनीति में आ गए, पहले तो हमें था ही नहीं कि राजनीति में आ जाएंगे, उधर बच्चे भी छोटे और राजनीति में आ गए। वकालत भी उन्होंने नहीं शुरू करी थी उस समय, वकील थे टैक्सेशन में ये, तो वकालत नया काम शुरू किया, तभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे परिवार भी बड़ा था, और साथ में फिर ये विधायक बन गए, तो लखनऊ अधिकतर आना जाना इनका रहता था, तो एक जिम्मेदारी घर में के में बड़ी ही मेरी, क्योंकि बच्चों को भी देखना, पढ़ाना लिखाना, रिश्तेदारों को भी निभाना, सबको देखना है था, और बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना, उस समय ऐसा वो भी नहीं था कि टैक्सी रख ली, गाड़ियाँ रख दें कि बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा जा रहा है, और अधिकतर हमने पैदल काम किया, और घर का भी पूरा काम खुद ही करते थे, बच्चों को भी संभालते थे, स्कूल से लाना ले जाना, पढ़ाई भी करानी स्कूल से बच्चों की, तो ये सब सारी जिम्मेदारी निभाई, जो सुख दुख होता था परिवार में वो भी निभाया, करते करते ऐसे ही समय बीते बीते इतना टाइम बीत गया। एक आत्मशक्ति अगर हमारे अंदर होगी तो हम हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं, उसको भी निभाया, इसको भी निभाया, दोनों चीज़ों को हम निभाएंगे। एक ये कि आत्मशक्ति है सबसे ज़्यादा
0: होनी चाहिए।
1: होनी चाहिए।
0: सविता जी, आपने जैसा बताया कि श्री कपूर जी चूंकि मंत्री बने और फिर कई बार उन्हें लखनऊ में रहना होता था, बहुत से लोग लाजमी है कि आपके पास अपनी शिकायतों को लेकर के आते थे, आपके अंदर राजनीति को लेकर के जो समझ है कि किस तरह की समस्याएं होती हैं, वास्तविक तौर पर राजनीति क्या होती है, इस चीज की समझ आपको क्या लगता है कब आनी शुरू हुई और कब ये मैच्योरिटी तक पहुंची, जब आपको लगा कि नहीं अब मैं भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हूँ?
1: असल में अभी बच्चे थोड़े से जब बड़े होने लगे तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा समय समाज को देना है, फिर मैंने सामाजिक संस्थाएं ज्वाइन की और सामाजिक संस्थाओं से माध्यम से समाज में बहुत काम किया, तो वही धीरे धीरे आगे हमें बढ़ते रहे, समाज में एक पहचान, सर परिवार से आना जाना, मिलना जुलना रहा, और जो सामाजिक समस्याएं होती थी उनको लेकर भी हम संस्था के माध्यम से काम करते थे, तो उसका वो भी मुझे उसका फ़ायदा ही मिला, और आदत तो शुरू से ही काम करने की थी हमें बचपन से ही, और संस्थाओं के माध्यम से भी काम किया, तो आज राजनीति क्षेत्र में आई हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा भार बोझ नहीं लगता, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं लगता, काम को आसानी से संभाला, और पूरी कोशिश है कि उसे अच्छे से अच्छा अपना करके देती हूँ मैं।
0: सविता जी, बहुत सी बच्चियाँ आज आपको सुन रही होंगी, राजनीति के बारे में हमने बहुत से फिल्मों में देखा है, बहुत कुछ कहानियों में सुना है, लोगों की बातों में सुना है, लेकिन राजनीति का चेहरा उन फिल्मों और कहानियों से बहुत हटकर बहुत अलग होता है जब हम वाकई किसी नेता से मिलने जाते हैं। लोग इसको आम तौर पर एक करियर के रूप में नहीं देखते हैं, आपका इस बारे में क्या मानना है, क्या इसे करियर के रूप में देखा जाना चाहिए? हालांकि ये सेवा है लेकिन इस प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए इसे क्या इसे करियर के रूप में देखा जाना चाहिए, और केंद्र सरकार की बड़ी ये जोरदार पहल है कि महिलाओं का जो योगदान है वो जनप्रतिनिधि के तौर पर बढ़े। अगर कोई बिटिया है, कोई महिला है आज आपको सुन रही है जो शायद भविष्य में कभी ग्राम प्रधान बनना चाहती है या विधायक बनना चाहती है, जिसके अंदर उसको लगता है कि मेरे अंदर एक लीडरशिप की कैपेबिलिटी है, उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
1: एक महिलाएं हैं जो कि घर और बाहर दोनों चीज़ों को बखूबी निभा सकती है, परिवार के साथ साथ बाहर भी पूरा समाज में योगदान देती हैं और दे भी रही हैं, अब तो महिलाएं कितने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर जगह गोल्ड मेडल ला रही हैं, इतने विदेशों में जाके अपने घर परिवार भी संभाल रही हैं, तो इस तरह से सामंजस्य बैठा के हमें काम करना, परिवार को भी देखना है, समय देना है, और अपना समाज को भी देना है, और अगर राजनीति में जो आना चाहती राजनीति में देना है, क्योंकि राजनीति को कैरियर के रूप में ना देखें, सेवा के रूप में अगर देखेंगे तो हर जन हर परिवार से हमें मिलना का संपर्क सबसे बढ़िया जरूरी है, क्योंकि हर परिवार से संपर्क में रहेंगे, क्योंकि वोटर तो जनता ही होती है।
0: जी,
1: हमें जनता के साथ जुड़ाव रखना है अपना, हर परिवार से सुख दुख में आने जाने का है, इसी प्रकार अपना संपर्क बनाना है, संबंध बनाने हैं पारिवारिक, तभी जनता हमारे साथ जुड़ती है।
0: सविता जी, अब कार्यक्रम में वो पड़ाव आ चुका है जहां हम अपनी मेहमानों के पसंद का एक गीत लेते हैं। आज हम आपकी पसंद का गीत आपको भी सुनवाएंगे और इसी के साथ हमारे श्रोता भी इस गीत को सुनेंगे। कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: तो कपूर साहब जी को एक गीत बहुत पसंद था जो मुकेश जी का गाया हुआ था, तो वो अपने उन्होंने फ़ोन में भी लगाया हुआ था इसमें, तो वो गीत थोड़ी सी कुछ पंक्तियाँ याद है मेरे को, किसी

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं जनप्रतिनिधि श्रीमती सविता कपूर जी, जो कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ही नहीं बल्कि एक समाजसेवी के तौर पर भी बहुत लोकप्रिय हैं। और आज हम इनसे व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अब इनके कार्यक्षेत्र के अनुभव जो हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। सविता जी, अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया की बड़ी बातचीत होती है
1: जी।
0: और ये कहा गया कि जी जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, वो जब चुनाव में उतरे तो उस तरह की जीत हासिल नहीं कर पाए जैसी अपेक्षित थी
1: जी।
0: और अब इस बारे में लोगों की धारणा भी बन रही है कि आपको जनप्रतिनिधि बनना है तो लोगों के बीच में जाना ही होगा, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? ऐसे बच्चे जो भविष्य में शायद कभी जनप्रतिनिधि बने, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मानसिक रूप से कितना मजबूत होना जरूरी है और दूसरा लोगों के बीच में, क्योंकि आप जन के प्रतिनिधि हैं तो लोगों के बीच में जाना कितना जरूरी है?
1: ये कि हम अगर हमने ये रास्ता चुनना है कि हमने नेता बनना है, तो हम सबसे पहले तो हमें जनता के बीच में जाना होगा और उसको सेवा के रूप में लेना होगा, क्योंकि हमारा वोटर तो जनता ही है और जनता के घर घर जाएंगे या परिवार में आपसी संबंध बनाएंगे, संपर्क बनाएंगे, सुख दुख में रहेंगे, तभी जनता आपको पसंद करेगी, क्योंकि वोट वही देगी, उसी के वोट से नेता जीतते हैं। और जैसे कि सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का तो आजकल ज़माना है, क्योंकि हम जो कुछ काम करते हैं हमें वो सबको दिखाना भी है, तो काम करते हैं उसको, उसमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में रहना। सेवा भाव से हम जनता के बीच में रहेंगे तो जनता अपने आप ही पसंद करेगी, आपको जिताएगी।
0: सविता जी, आपका एक लंबा समय हो चुका है जनप्रतिनिधि के तौर पर और उससे पहले भी आप, जब श्री कपूर जी 8 बार लगातार विधायक रहे, आप लोगों से संवाद के माध्यम से जुड़ी रहीं, आपको क्या लगता है जब एक जनप्रतिनिधि के सामने कोई अपनी समस्याएं लेकर के आता है, उसको सुनने का सही तरीका क्या हो सकता है आपके अनुसार और उसके निस्तारण के लिए एक जनप्रतिनिधि को किस हद तक जाना चाहिए?
1: ठीक है, जो भी कोई हमारे पास समस्या लेके आता है बड़ी आशा के साथ आता है और हम उसे सुनना, आराम से उसकी बात को सुने, ध्यान से सुने, तो उससे भी लगेगा कि मेरी बात इन्होंने सुनी। और जहाँ तक उसकी कोशिश होती है, कोशिश ये हमें करनी है कि उसकी

0: हैं जिनमें समय भी लगता है। ऐसे में बहुत सारी जानकारियां जनता में उनको नहीं होती है, कई लोगों को नहीं होती कि
1: जी
0: काम होगा कैसे। कई
1: जी
0: बार व्यक्ति आक्रोश में भी रहता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, उद्वेलित रहता है, भावनाओं में रहता है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत होना कितना ज़रूरी है एक जनप्रतिनिधि के लिए, उसकी समस्या के निस्तारण के लिए।
1: वो तो थोड़ा सा उसको दिलासा दिलानी पड़ती है, क्योंकि हर किसी के किस कोई अलग अलग किस्म की समस्याएं होती हैं, किसी पारिवारिक होती है, कोई कैसी होती है, दुखी भी होते हैं, कई रोने भी लगते हैं बहुत से, तो कि कोई ऐसी पारिवारिक फैमिली में ऐसी समस्या हो जाती है। अधिकतर मैं देखती हूँ जो आते हैं ना हमारे यहाँ, आज का परिवार बेटन वाले लोग हैं अधिकतर, किसी के लड़के बहू ने निकाल दिया, ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं। तो बात करते हैं, कोशिश करते हैं दोनों को मिला के बात करते हैं कि भाई पेरेंट्स हैं तुम्हारे, करना है, कोशिश करते हैं उनका काम सुधरे, रेस्पेक्ट करें अपने माता पिता की, तो ऐसे लेके काम करना पड़ता है
0: इससे एक
1: सबको सारा
0: ज़रूरी
1: जो भी कोई।
0: सवाल ये भी उठता है कि जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों का भी कार्यभार संभालते हैं, और कई
1: जी
0: बार जैसे आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आती है वो शहरी क्षेत्र का हिस्सा है, क्या दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग-अलग
1: नहीं,
0: होती
1: हाँ अलग
0: हैं?
1: होती
0: एक
1: हैं
0: जनप्रतिनिधि के तौर पर
1: जी,
0: मैं जानना
1: बिल्कुल अलग
0: चाहता
1: होती हैं, शहर की अलग होती हैं, ग्रामीण अलग होती हैं थोड़ी, ग्राम में ज़्यादा थोड़ी समस्या होती हैं, क्योंकि दूर
0: हूँ
1: दूर गांव होते हैं, और गांव में ये खेतों की समस्या, लड़ाई झगड़े की ज़्यादा हो जाती हैं, कच्ची है, पानी भराव की समस्या हो जाती हैं, सड़कें नहीं होती कई बार गाँव में, पहाड़ पर, हमारे तो पहाड़ों पर भी ये समस्या ज़्यादा है, विधानसभा के भौगोलिक स्थिति से बड़ी बड़ी होती हैं, तो उधर की समस्या थोड़ा अंतर है, और हमारा इधर का शहर के क्षेत्र तो सिमटा हुआ क्षेत्र होता है, तो लोग भी कम समय में हम अपना विधानसभा कवर कर सकते हैं, और कम समय में उस समस्या को भी दूर किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि अधिकारी वर्ग ये सब भी जल्दी से तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ पर, तो फर्क तो होता ही है
0: अच्छा,
1: ग्रामीण और शहर।
0: इंटरनेट के आने से अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ी है,
1: जी
0: जनप्रतिनिधियों की तो शुरू से ही जवाबदेही है क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और हर 5 साल पे हमें वोट के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन इंटरनेट के आने से कितना कुछ, क्या आपको लगता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है
1: जी
0: या थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हुई हैं चीज़ें, या आपको लगता है पॉजिटिव ज़्यादा हुई
1: नहीं,
0: हैं?
1: पॉजिटिव ज़्यादा हुई, क्योंकि इसके आने से ना लोगों का उत्तर भी एकदम मिल जाते हैं, किसी अधिकारी से भी बात करते हैं उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है, और जैसे कि लोग आजकल पोर्टल में डाल देते हैं कोई समस्या है किसी की, तो उसके माध्यम से भी अधिकारी तुरंत उस पर कार्य करते हैं, तो पॉजिटिव तो है ही इसमें।
0: आप न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि हैं बल्कि एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। समाज सेवा से अगर शुरुआत की जाए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं लोगों की जनप्रतिनिधि बनने से पहले, जहां आपको जनता अपनी परीक्षा में आपका परीक्षण लेती है, ऐसे में समाज सेवा के वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे लोगों को, आप समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं? और वो बच्चे जो यंग बच्चे आज सुन रहे हैं
1: ठीक
0: जिनको
1: है,
0: कुछ रास्ता नहीं पता है,
1: हाँ जी
0: जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में नेताओं को देखा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या समस्याएं एक समाज सेवी के तौर पर देखनी पड़ती हैं, उनका निस्तारण करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
1: समाज में जब हम निकलते हैं मोहल्ले में कहीं भी, सड़के नालियों की समस्या तो अलग रहती ही है, वो तो हम करते ही अपने विधायक के रहते हुए करनी ही पड़ती हैं, पारिवारिक समस्या ज़्यादा रहती हैं, जैसे कभी मैंने बताया
0: विघटन की समस्या।
1: ये हो जाती हैं, फैमिली आपस में तालमेल नहीं बन पाते, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और संस्थाओं के माध्यम से हमने बहुत समाज की सेवा के कार्य किए, कैंप बहुत लगाती थी मैं छुट्टियों में बच्चों की, लड़कियों को मैं चाहती थी कि लड़कियां में अपनी शक्ति होनी चाहिए, एक अगर तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है तो तुम उसमें मुकाबला कर सको, अपने को सुरक्षा कर सको, तो इस तरह के कैंप भी बहुत गर्मियों में बच्चों को लगाती थी, उनके लिए हॉबी बच्चों को देनी, अपनी रोजगार कमा सकें, रोटी कमा सकें लड़की, आत्मनिर्भर बने हमारी महिलाएं, तो इस तरह के सिलाई प्रशिक्षण देते थे ब्यूटी पार्लर के, और अनेकों जैसे भी जहाँ के रहने वाले लोग होते थे उनको उसी हिसाब से वहाँ कैंप आयोजित करके उनको इस तरह की शिक्षा हम देते थे, प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से मैं देती रही, और एक हमने शुरू किया था कन्या जीवनदायिनी समिति के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम का, जो ये 2000 से पहले की बात है, यहाँ पर 1000 से उत्तराखंड में 700 अनुपात था महिला पुरुष का, तो हम कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत करी हमने।

0: तो यही हुआ कि इसको कैसे रोका जाए, अनुपात को कैसे सही किया जाए, क्योंकि लड़कियां के प्रति लोगों में ज़्यादा घृणा सी हो गई थी, लड़कियों को पसंद नहीं करते थे पैदा होने के, मार देते थे पहले ही। तो हमने एक समिति बनाई, कन्या जीवनदायिनी समिति, उसमें और भी मेंबर हमारे साथ जुड़े। तो उसके माध्यम से हमने जन जागरूकता अभियान किया, जगह जगह नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, डिबेट कराई कि लड़का लड़की एक समान, बेटा बेटी एक समान। तो जन जागरूकता के लिए बहुत काम किए हमने, क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो कोई भी सामाजिक ऐसी चीज़ हम पकड़ लें कि उस समय के माहौल में क्या चीज़ है, तो उसके उसको पकड़ के हम काम कर सकते हैं समाज में। कोई ये ज़रूरी नहीं दूसरा हमें बताएगा तो करना है। अगर हमारे मन में इच्छा है सेवा करने की, तो हम कोई भी चीज़ देखे, हमने जैसे ये चीज़ पकड़ी और उसका ये परिणाम कि सब लोगों ने और भी संस्थाओं ने इस विषय को लिया, और हमने ये दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री को भी इस चीज़ को लिखा कि ये सख्ती से कानून बनाया जाए ताकि ये लिंग भेद की जानकारी ना हो और लड़का लड़की एक समान, लड़कियों को जो भ्रूण हत्या की जाती है उसे रोकथाम की जाए। तो इसके लिए बहुत काम किया हमने, और आखिर में सरकार ने बनाया, कानून भी बना, और मोदी जी ने भी इस विषय को लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नारा चल रहे हैं हम, और आज बेटियों के लिए इतना आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है मोदी जी
1: निश्चित ही
0: की।
1: ये आप जैसे नेताओं का प्रयास
0: जी
1: है, ये मेहनत है जो आज देहरादून का लैंगिक अनुपात बहुत ही अच्छा
0: नौ
1: है
0: सौ आ
1: पूरे देश
0: गया,
1: में। जी
0: 1,000 पे 900 हो गया
1: जी
0: अब।
1: जी कार्यक्रम के अंतिम छोर
0: हाँ
1: पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। आप एक समाज सेवी से एक जनप्रतिनिधि बनी।
0: जी
1: जनप्रतिनिधि को आमतौर पर हम नेता कहते हैं, यंग बच्चों में लीडर का जो शब्द है वो ज़्यादा प्रचलित है। आपके मन में ये भावना, वो जो ट्रांजिशन होता है एक एक समाज सेवी से एक लीडर तक का जो सफर
0: जी
1: है, उसकी समझ, उसका आत्मबोध होना, वो कब शुरू हुआ कि अब मैं, अगर अब मैं जनप्रतिनिधि बनूं, अब
0: जी
1: मैं चुनाव लड़ूं तो अब मैं जीत सकती हूं, वो उस मंजिल का वो फासला कब लगने लगा कि अब ये पूरा हो जाएगा, अब मैं
0: असल
1: अगर
0: में मेरे मन में राजनीति में आने की इच्छा कभी थी नहीं, लेकिन ये ऐसी विषम परिस्थिति बनी, इनके जाने के बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मुझे मैदान में आना पड़ा, और मैंने जीत के भी दिखाया और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का पूरा प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अपने को नहीं समझती कि मैं राजनीति हूँ, मैं विधायक हूँ। अभी भी मेरे अंतरात्मा से नहीं मानती मैं विधायक हूँ, लेकिन सेवा का क्षेत्र चुनके मैं समाज में काम करती हूँ, और उसी भावना से समाज के बीच में रहती हूँ और समाज का काम करके दिखाती हूँ, और अपना 100% देने का पूरा प्रयास रहता है कि विधानसभा में पूरा अच्छे कार्य करूँगी, कहीं कोई कमी नहीं हो, किसी कोई परेशानी ना हो, और मेरी विधानसभा एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बने, यही मेरा पूरा प्रयास रहता है। और सबके साथ मिलजुल कर हम काम करते हैं हंसी खुशी, कोई टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की। तो एक सेवा भाव से जुड़ के ही मैंने सामाजिक व्यक्ति सोच के ही अपने को समाज में अभी भी मैं काम करती हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति मान के नहीं करती।
1: सविता जी, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपसे बहुत सी बातें की और बहुत सारे अनुभव आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं को साझा किए, और निश्चित ही इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उन युवाओं को जो भविष्य में एक सपना देखते हैं कि मैं भी देश में अपना योगदान दूंगा एक नेता के तौर पर। आपने आकाशवाणी से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और सबसे मिलने का एक अवसर दिया। मैं आप सभी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।

0: अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सविता कपूर से संकल्प मिश्रा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर महिला जगत कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी साधना भट्ट से उनका कविता पाठ, साथ ही बहनें सुन पाएंगी रसोई घर से। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर सुनिएगा डॉक्टर सानिका महर से बातचीत, विषय रहेगा चिकित्सा क्षेत्र में उभरती संभावनाएं। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता ग्राम झांकी के अंतर्गत सुनेंगे जनपद उत्तरकाशी की मोरी ब्लॉक के गांव कोट के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा डॉक्टर मुकुल शर्मा से बातचीत, विषय रहेगा नशा मुक्त भारत। सुबह 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भगत वर्मा के गाए जौन सारी लोकगीत। रात्रि 8:00 कथा सागर के अंतर्गत आप सुन सकते हैं डोली डबरा सी कहानी। दिन में 11:00 श्रोता सुन पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोतम ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 यानी 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:00 ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था के हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नाम दर्ज और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से संवाद करेंगे। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर ₹2,500 किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क ₹5,000 होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित और अनुशासित यात्रा की अपील की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार श्रोताओं, लम्हे में आपका स्वागत है। आपका मेजबान हूँ मैं चेतन, और आज हम इस विषय पर अंतर्दृष्टि डाल रहे हैं जो हर माता पिता के दिल के करीब है, बच्चों में लचीलेपन का निर्माण। तो चाहे आप बच्चों को लेने जा रहे हो या शांति के पल का आनंद ले रहे हैं, आइए उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे हम अपने नन्हे मुन्ने में लचीलापन पैदा कर सकते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन। महामारी हम सभी के लिए बहुत कठिन रही है, लेकिन साथ ही यह अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेकर आई है, विशेष रूप से बच्चे और युवा वयस्कों के लिए। मेरा मानना है कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दैनिक जीवन में लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। माता पिता के रूप में हमारे लिए चुनौती ये है कि हम उन्हें ऐसा करने में कैसा मदद कर सकते हैं। तो लचीलापन है क्या? कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी आशावाद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। यह हर बार सफलतापूर्वक वापसी करने की क्षमता है। ये एक मानसिकता है। इस बारे में सोचे कि कैसे एक सरल बनाना चाहते हैं, तो एक फ्लोट पानी के नीचे धकेलने पर हमेशा सतह पर वापस आ जाता है। अपने दैनिक जीवन में बच्चे घर और बाहर दोनों जगह बहुत सारे अलग अलग तनाव से गुजरते हैं। खेल के मैदान में बदमाशी, किसी पसंदीदा शिक्षक या मित्र का दूर चले जाना, साथियों का दबाव, या बस बड़े होने के दौरान होने वाले साधारण बदलाव, ये सभी भले ही हमें मामूली लगे, हमारे लिए गंभीर उथल पुथल का कारण बन सकते हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद हम उन्हें इन उथल पुथल और तनाव से पूरी तरह से नहीं बचा सकते, लेकिन हम उन्हें अधिक लचीले होने सिखा सकते हैं, उन्हें सही दृष्टिकोण और कौशल से लैस करा सकते हैं। तो एक कोट याद आ गया दोस्तों, अगर चीजें घटित होने लगती है तो चिंता मत करो, चुप मत रहो, बस ठीक से चलते रहो और तुम भी घटित होने लगोगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही है या वे अप्रत्याशित रूप से घटित हो तो थोड़ा रुके, दुखी हो या न हो, एक या दो तकिया पर मुक्का मार, खुद को संभाल और काम शुरू करो। हम एक तरफ सुरक्षात्मक अनुभव और मुकाबला करने के कौशल और दूसरी तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ लचीलेपन की कल्पना कर सकते हैं। जब सुरक्षात्मक कारकों के प्रभाव प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव से अधिक हो जाते हैं तो बच्चे लचीले हो जाते हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, लचीलेपन बनाने के कई मॉडल्स हैं। कनेक्शन का अर्थ परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध रखना है। जिन बच्चों में लचीलापन विकसित होता है उनके लिए सबसे आम कारक माता पिता, देखभाल करने वाले या अन्य वयस्कों के साथ कम से कम एक स्थिर और प्रतिबद्ध रिश्ता है। मजबूत संबंधों से सुरक्षा, अपनेपन की मजबूत भावना पैदा होती है और बच्चों के विकास संबंधी व्यवधानों से बचाया जाता है। बच्चों और वयस्कों के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये भावनाओं की योजना बनाता है, निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता में मदद करता है। किसी बच्चे को रोने से कभी न रोके। रोना एक बहुत अच्छा निकास तंत्र है। जब कोई बच्चा रो रहा होता तो कभी परेशान न हो, स्वीकार करे कि आप रो रहे हो। हाँ कहे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें रोना आ रहा है। जब आपका रोना खत्म हो जाए तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे को रोने से न रोके। आप प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं होने के कारण बच्चों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेंगे। जिन बच्चों को अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उनमें मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित होता है और वैकल्पिक विनाशकारी व्यवहारों की तलाश करने के बजाय मार्गदर्शन लेने और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी सहायता प्रणाली की ओर रुख करने की अधिक संभावनाएं होती है। सहायक रिश्ते, अनुकूली कौशल निर्माण और सकारात्मक अनुभवों का ये संयोजन लचीलेपन की नींव है।
योग्यता तनावपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता है। जब हमारे बच्चे हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी समस्याओं का समाधान करने की होती है। एक बेहतर रणनीति ये होगी कि समाधानों पर विचार मंथन किया जाए, प्रश्नों को दोबारा उन पर उछला गया और पेशेवर और विपक्षों या सामूहिक रूप से विभिन्न समाधानों की एक सूची तैयार की जाए। माता पिता के रूप में हम उनसे मुद्दे पर सोचने में मदद करें। जब बच्चे कुछ सही करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट कौशल विकसित करने के अवसर दिए जाना चाहिए। आत्मविश्वास किसी की क्षमताओं में विश्वास है और दृढ़ता से क्षमता में निहित है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में योग्यता प्रदर्शन करके हम आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। बच्चों को उन लक्ष्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें वे सोचते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उनके वर्तमान स्तर पर थोड़ा है। बच्चों को न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें बल्कि उनकी दयालुता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता और निष्पक्षता के लिए भी उनकी सराहना करें। बच्चों को स्वयं जोखिम लेने और उनके आराम क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति देना भी महत्वपूर्ण है। इनसे उन्हें नई चीजें आजमाने, नए कौशल हासिल करने और चुनौतियों से पार पाने की आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है। चरित्र का अर्थ एक नैतिक दिशा निर्देशक का होना, सही और गलत की एक मजबूत समझ अच्छे चरित्र का निर्माण करने में मदद करती है। परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की देखभाल करने से चरित्र का निर्माण होता है और ये बदले में हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। पंचतंत्र की उन कहानियों के बारे में सोचे जो हमें स्कूल में नैतिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई जाती थी। जानवरों के साम्राज्य की कहानियां, जहां सही और गलत के बीच के अंतर बहुत स्पष्ट था और हमने लचीलेपन और दूसरों की देखभाल के बारे में सीखा। बच्चों से इस बारे में बात करने का उनका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, उन्हें तात्कालिक संतुष्टि या स्वार्थी इच्छाओं से परे देखने में मदद करना और दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचना या सभी चरित्रों का निर्माण करता है। एक मिशन उद्देश्य की भावना होने के शक्तिशाली भावना है। योगदान करने में सक्षम होना और यह जानना कि उनकी योगदान मायने रखता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है, बच्चों को उपलब्धि का भावना देती है। ये पर्यावरण के प्रति स्वयं सेवा कार्य, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी उद्देश्य के प्रति समय और ऊर्जा के साथ उदार होने हो सकता है। ये सब लचीलापन पैदा करता है। जब मेरा बच्चा उदास महसूस करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि वह अपनी बाल्टी भरने के लिए क्या कर सकती है। यह उसकी ऊर्जा को हमारे, उसके माता पिता या उसके दोस्तों के प्रति एक विचारशीली कार्य या देखभाल के भाव में निर्देशित करता है। इस तरह से योगदान करने में सक्षम होना हमेशा अद्भुत काम करता है और ऐसा उसके सकारात्मक स्वरूप में वापस लाता है। अच्छी खबर यह है कि लचीलापन एक व्यक्तिगत गुण और कौशल दोनों है। ये एक मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत हो जाती है और माता पिता को लचीलापन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। सभी बच्चों को मार्गदर्शन और समर्थन के लिए देखभाल करने वाले वयस्कों की आवश्यकता होती है और सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु घर है। एक सहायक वयस्क बाल संबंध लचीलापन विकसित करने की नींव है। तो दोस्तों, यह था आज का लम्हे प्रोग्राम। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:12 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये आवाज़ें थी जिनमें श्री प्रदा गोपी सुंदर की फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार थे विशाल शेखर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म का नाम वीर ज़ारा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: मैं हूं ना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत, आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की। गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत रुद्रपुर में ग्राम बागवाला में 1872 EWS आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत गरीबों को मात्र 3 लाख में आधुनिक फ्लैट मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित ये परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के MIS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। राज्य सरकार और मेला प्रशासन संत समाज के मार्गदर्शन और सुझावों को तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी क्रम में कल अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैरागी अखाड़ा के संत और नया उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर सहित कई संतों से मुलाकात की। इस दौरान कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की जानकारी साझा की गई और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर संतों से सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किया गया। संतों ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, तप, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक महापर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुंभ मेले को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट

0: कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको ने शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से देहरादून में अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत बैंक योग्य शहरी अवसंरचना एवं वित्तीय संसाधनों के जुटाव विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्तों तथा शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद गिरी गोस्वामी निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड ने अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का प्रभावी उपयोग करने के लिए समेकित और बैंक योग शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास पर बल दिया। कार्यशाला में शहरी अवसंरचना और वित्त के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियां दी गई। हुडको देहरादून के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला से उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना परियोजना के विकास को नई गति मिलेगी।
1: हाल ही में भारत सरकार ने 1,00,000 करोड़ का एक अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट किया गया, उस संबंध में एक आज उत्तराखंड शासन के जितने नगर निगम और नगर पालिका है उनका एक जो है हमने कार्यशाला किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड के जो हमारे जितने नगर हैं और पहाड़ी नगर भी जो हमारे हैं जिसमें आबादी का जो है बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है उसका सुनियोजित विकास किया जा सके और साथ में जो हमारी जो एक तरह से अर्बन चैलेंज फंड के बारे में जो एलोकेशन भारत सरकार की तरफ से जो है उत्तराखंड को दिया गया है लगभग 775 करोड़ का एलोकेशन जो है भारत सरकार का अर्बन चैलेंज फंड के लिए दिया गया है और लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड में आ सकती है और एक तरह से सुनियोजित उत्तराखंड का हो सकता है।
0: भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण कर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। आयोग के दल में अपर सचिव अभिषेक तिवारी, अनुभाग अधिकारी गोपाल कृष्ण चाहर और सहायक अनुभाग अधिकारी प्रकाश सिंह शामिल थे। अधिकारियों ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ क्षेत्र में देर रात हुई अतिवृष्टि के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गया। तेज बहाव के साथ आए मलबे से कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। समाचारों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जौनसारी लोकगीत, कलाकार भगवत वर्मा।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
3: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
2: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
3: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
2: और परिणाम?
3: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
2: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लोक संगीत के अंतर्गत आप इस समय सुन रहे हैं भगवत वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत।
2: यूनिवर्सिटी प्रेमनगर देहरादून।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
2: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
3: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भगत वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। भारती आनंद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। श्रोताओं, वसीम बरेलवी का एक बेहद खूबसूरत शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, बात करने का सलीका ये बता देता है कि हमारी तरबियत कैसी हुई है। श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के गीत, और आपको टाइप करना है अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपना पता यानी कि एड्रेस भेजना है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और हमारे बहुत से ऐसे श्रोता जो ठीक 11 बजे ही हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, आएगी उनकी फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और राहट कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार हमें अपनी फरमाइश भेजता है। फरमाइश हम तक पहुँची है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहट। फरमाइश करता है हमारे श्रोता आकाशवाणी एफएम को आप भेज रहे हैं फरमाइश, फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया, फर्रुखाबादी। फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। श्रोता हमारे हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो जुड़ते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में हमारे साथ। तो आइए आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं और शामिल करते हैं आपको किशोर नगर अमरावती से हीरावन शिंडे, शीला देवी शिंडे, सिद्धार्थ गोडाने, और साथ ही हमारे श्रोता हैं कुम्हार हेड़ा गाँव सहारनपुर से सैयद मसरूद, साइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम आदिब, और हमारे श्रोता मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। हमारे श्रोता हैं नसफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक, शबनम और शहनाज। श्रोता हमारे फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ। आप सभी की फरमाइश पर पहुंच रहा है कार्यक्रम का ये पहला गीत आप तक। जो आए

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म का नाम आशा, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हीर राजा फिल्म से। गीत की फरमाइश की है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्मी और हेमाक्ष ने। साथ ही हम शामिल कर रहे हैं आपको गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, रचिता खुराना, राहुल खुराना, केशोरधान खुराना, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन सरिये और पी के संजीव डाबीराव, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, और हमारे श्रोता आपको भी शामिल कर रहे हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी बाई बागरी, और साथ ही हम शामिल कर रहे हैं आपको तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने, ऊषा वसाने, और ऋषिकेश से अनिकेत सागर कटक, दिंडौरी नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली और भक्ति गवली, साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। साथ ही आपकी फरमाइश को हम शामिल कर रहे हैं गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और पूरा परिवार। साथ ही हमारे श्रोता आपकी फरमाइश को हम शामिल कर रहे हैं आप हैं गणेश भारद्वाज, बिजलवाण, दरवान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह निकी, राजू भाई, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत, लियाकत रजाई वाले बालावाला देहरादून से आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, और जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। आइए आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है हीर राजा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले एक अल्पविराम लेते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश, और ये फरमाइश हम तक पहुंची है तेलंगाना वरंगल से ख्वाजा रिजवाद्दीन, ख्वाजा फासीउद्दीन और आयशा तबस्सुम जुबेरिया का। फरमाइश करता है हमारे श्रोता लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। श्रोता हमारे जो लिखते हैं हमें अपनी फरमाइश का गीत, देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीला चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तन्नू नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरिस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा, सीमा द्वार से पूरी की पूरी चावला फैमिली। और साथ ही फरमाइश करता हमारे श्रोता पदमपुर जिला श्रीगंगा नहर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। और साथ ही हमारे फरमाइश करता है दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबोनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। और हमारे श्रोता मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजास, चंडीगढ़ से सैफाली सैफिया,

डेविस विमला और सतीश अनेजा। फरमाइश करता हमारे श्रोता कोहका भिलाई उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित झंगेल, शकुन झंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल की फरमाइश हम तक पहुंची है। और फरमाइश करता है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल। साथ ही हमारे श्रोता हैं गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा, प्रतीक्षा संधू और मैक्स। हमारे जो श्रोता हैं आप हैं भाटापारा से, देवरी से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। और हमारे श्रोता हम तक पहुंचाते हैं अपनी फरमाइश गांव चहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप सब की फरमाइश पे लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म है दो कलियां।

दो कलियां। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आइए अगले गीत की फरमाइश में शामिल करते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। साथ ही कोल सिटी बरका काना से अफसाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। साथ ही दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। फरमाइश करता हमारे श्रोता जिन्हें हम इसी गीत के साथ शामिल कर रहे हैं सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। फरमाइश करता हमारे श्रोता जिन्हें हम इस गीत में शामिल कर रहे हैं रमा रावत पौड़ी गढ़वाल से। साथ ही हमारे श्रोता हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। श्रोता हमारे खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और श्रोता हमारे जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून। साथ ही हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमेरखेड़ महाराज से अभिजीत गुहाणकर, डाही सरिता गुहाणकर, एकांश गुहाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, अर्जुन गुहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गुहाणकर, सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि गुहाणकर। और साथ ही एक और फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी को। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। और जो भी श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं और भेजना चाहते हैं हमें अपनी व्हाट्सएप फरमाइश, तो हमें अपने पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपना पूरा पता लिख कर भेज दें इस नंबर पर। नंबर है 7088000731। जी हाँ श्रोताओं, और अब शामिल करते हैं अपने श्रोताओं की फरमाइश कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, फरमाइशकर्ता हमारे तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहद्दीन, मोहम्मद फजान, मोहम्मद फरहान, समाइरा आजमीन गुड़िया, फरमाइशकर्ता धनोरी तेलीवाला से निजार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू। साथ ही हम तक पहुंची है फरमाइश गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे की। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांची खेड़ा और फरमाइशकर्ता गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही और एयरपोर्ट रोड बन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, रक्षा निखिल खड़से, रुशाली खड़से और साथ ही हमारे श्रोता प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सेमू एकम दमन, अभिजीत पंजाब से आपने हमें ये फरमाइश भेजी है। और गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयात और मोहम्मद इंतजार की फरमाइश पहुंची है। साथ ही फरमाइश करता है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। फरमाइश करता है हमारे श्रोता मस्जिद मोहला मागनपुरा से बेनज़ीर बेबी, अमजद अब्बास और साथ ही जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बौडाना। फरमाइश करता हमारे श्रोता भेज रहे हैं हम तक फरमाइश और एक फरमाइश को दो दो बार आप भेजते हैं, जिससे न केवल हमें रुकावट होती है बल्कि आप तक आपके नाम नहीं पहुंच पाते, आपकी फरमाइश के गीत नहीं पहुंच पाते। तो आपसे निवेदन है कि एक बार में एक ही फरमाइश भेजें। दीवाना रेडियो लिस्नर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, आप सभी की फरमाइश हम तक पहुंची है। और साथ ही हमारे श्रोता ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, आलोकिक चंसौलिया। फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। फरमाइश आपकी शामिल कर रहे हैं ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र से विठ्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज की। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, आपकी फरमाइश को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और शामिल कर रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा को। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए श्रोताओं सुनिए, एंजॉय कीजिए फिल्म अवतार का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादर चौधरी की। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नाथवत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पमार, भानु प्रताप सिंह पमार। फरमाइशकर्ता रामपुर से सुनील सक्सेना, वेदांश सक्सेना, सारांश सक्सेना। कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और रुषिता। साथ ही हरियाणा गांव सातंडी से ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज, भव्य काम्बोज, अमित कुमार काम्बोज और पुनीत काम्बोज। सोनिया गिल, ममता सोनू, अपर्णा शर्मा, चंपा गुरुदेव सिंह हल्द्वानी से। साथ ही तपन अग्रवाल, आलोक मित्तर और उनके साथ ही हमें सुन रहे हैं। आपकी फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं इस गीत के साथ। आप हैं तालुका कमालनगर, जिला बिदर, कर्नाटक से संजीव उदबाले, आकाश विकास करण मंगला उदबाले, हरियाणा से। ये तो मैंने पढ़ दिया है दो दो बार, मैंने पहले भी कहा कि दो बार प्लीज ना भेजें नाम। भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू मटकू, आप सभी सुन रहे हैं दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोलगढ़ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, महेश साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। साथ ही जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, आप हमें फरमाइश भेज रहे हैं। और कहाँ से फरमाइश भेज रहे हैं आपका पता मुझे अभी तक नहीं पता चला है, तो अगली बार आप अपनी फरमाइश के साथ अपना पता भी लिखेंगे। भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से गोपाल नाई, उमा महेश्वरी, और साथ ही कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, गोविंद वणकर, प्रीति जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश और जयंती। फरमाइश करता हमारे श्रोता राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, ऐश बाग लखनऊ से रानी, मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। साथ ही हम तक पहुंची है फरमाइश पंचकूला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य, अंजलि, नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर प्रजापति। और आप सभी ने किसी भी गीत की फरमाइश में आपका गीत शामिल करने की बात कही है, आपका नाम शामिल करने की बात कही है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है। और कस्बा मुंडिया, नवी वक्त से तनवीर, उबैस, मुस्तीजब और जुलकर, आप हमें फरमाइश कर रहे हैं। और ग्राम कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्य साहू। साथ ही फरमाइश करता मोहल्ला हलवाइन शेरकूट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। और साथ ही फरमाइश करता गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। फरमाइशकर्ता एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। और हमारे साथी हैं खांडवी बुलढाणा से दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलौरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे, तनुज भवन भोंडे। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता गाँव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और विट्टू कुमार हमें फरमाइश भेज रहे हैं। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता कस्बा मुड़िया, नबी बख्श से मास्टर फारूक अहमद, तफसील अहमद, मोहम्मद हारून, मोहम्मद अवेश, मोहम्मद रुवैद। और फरमाइश करता हमारे श्रोता गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा। ये तो फिर से आपने फिर फरमाइश कर दी, दो दो बार एक ही व्यक्ति दो दो बार अलग अलग नंबर से कृपया मैसेज ना करें, हमारी आपसे ये विनम्र विनती है। टाउनशिप सेक्टर आठ बिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, आप सभी की फरमाइश पर नीचे सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश के अंतिम गीत में आप सभी की फरमाइश को शामिल कर रहे हैं अहमदपुर हैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से ध्वनि और सानवी, नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से

0: मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। कार्यक्रम सुन रहे हैं आबाद अहमद, मोहम्मद आसिफ शमा आजमी, मोहम्मद राशिद, युसरा हयात, मोहल्ला सहारनपुर, मोहल्ला शहमदार सहारनपुर से, और चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय वर्मा, प्रियंका शर्मा, ताजपुर मोरवा, समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण जयश्री, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, जयराम खोलवार, सचिन खोलवार, अमर खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। नई दिल्ली से आप हमें सुन रहे हैं और फरमाइश करता हम तक पहुंचे हैं भाटापोरा छत्तीसगढ़, सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश वर्मा, वैदेही जोशी, बेबी अंशिका जोशी और शिव कुमार शर्मा, अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगन कौर और रौनक दीप कौर। श्रोता हैं हमारे कांत से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहां सिद्दीकी, विष्णु अग्रवाल। साथ ही हमारे श्रोता हम तक पहुंचे हैं लाल कुर्ती कैंट, आपका नाम पहले भी ले चुके हैं, तीन तीन बार मैसेज ना कीजिए। और हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी और उनका पूरा हाशमी परिवार, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। साथ ही हमारे श्रोता है गांव कैरो, जिला तारन तरन पंजाब से लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरुश बंद। साथ ही हमारे श्रोता है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुण भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। श्रोता हमारे मास्टर आलिम पटेल, नर्मदा पार मंगल मेढ़ा, अभी अभी आपका नाम भी मैंने पढ़ा, लेकिन आपकी शिकायतें कभी कम नहीं होती। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद साहिद, और फरमाइश करता बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असन भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी। श्रोता हमारे तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और आशिफ शेख, और आप सब की फरमाइश पर लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत आप तक पहुंचाते हैं।
1: दा हटा दो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Rama Shankar Mishra, Subhash Srivastava and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAX Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Home Minister Amit Shah has lauded the efforts of those who are engaged in the fight against drugs. On the International Day Against Drug Abuse, Mr. Shah said India has waged the strongest battle against the global challenge of drug abuse. In a social media post, he said narco cartels have been ruthlessly dismantled. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. German Ambassador to India Philip Ackermann has said that India has emerged as a global leader in renewable energy. Talking to a news agency, Mr. Ackermann underscored the success of the Partnership for Green and Sustainable Development between India and Germany, highlighting robust cooperation across trade, political and strategic sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackermann expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game changer that will significantly incentivize

0: more investment in India from German businesses. In Venezuela, the death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. On Ashura-e-Muharram, Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein. In a social media post, he said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। आज साहित्य सम्राट और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उत्तराखंड। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में की शिरकत। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। व्यावसायिक गैस पर लगी पाबंदियां खत्म। होटल व रेस्टोरेंट में अब नहीं होंगी सिलेंडर की किल्लत। नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। डीबीटी के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में करीब 19.23 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। संस्कृत शिक्षा जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग सचिव ने विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा कर तय की प्राथमिकताएं। एकीकृत कृषि मॉडल, मुख्यमंत्री घोषणाएं, स्वास्थ्य पर्यटन व आजीविका व साइबर सुरक्षा पर दिए स्पष्ट निर्देश। टिहरी गढ़वाल जिले की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने ढालवाला में एसटीपी व चंद्रभागा चैनलाइजेशन कार्यों का किया निरीक्षण। देहरादून के पूर्व सैनिकों की स्काई राइडर्स टीम ने रचा इतिहास। लद्दाख की दुर्गम पर्वतीय श्रृंखलाओं से होकर गुजरने वाली 3,100 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। केदारनाथ धाम स्थित स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि। 12,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित चिकित्सा सेवाओं के जरिए 44 दिनों में 1,00,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का किया उपचार। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दोपहर के 12:12 का समय हुआ है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेहंदी हसन की गाई हम्द।

शिगुफ्ता किए गुल बफसले बहा।

گو نخل و شجر شاخ سار تراوٹ سے خوشبو سے ہنگامے کا

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हम्द।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की गाई हम्द। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, आज मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी कीर्ति जखमोला। बहनों, जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी गहराई को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो केवल महसूस की जा सकती है। प्रेम, ममता, करुणा, त्याग और अपनापन, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली शक्तियां हैं। जब कोई शिशु संसार में आता है तो वो कुछ नहीं जानता। उसे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है, बढ़ता है, संस्कार ग्रहण करता है और एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। इस पूरी यात्रा में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो उस स्त्री का होता है जो अपने स्नेह और समर्पण से उसके जीवन को आकार देती है। एक स्त्री के हृदय में प्रेम का अथाह सागर होता है। वो परिवार की खुशियों में अपनी खुशी खोज लेती है। बच्चों की मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। वो कभी शिक्षक बनकर मार्गदर्शन देती है, कभी मित्र बनकर मन की बात सुनती है और कभी रक्षक बनकर हर कठिनाई में बचाने का प्रयास करती है। उसका जीवन आसान नहीं होता। कई बार वो अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है, अपनी थकान को छिपा लेती है और अपने सपनों को भी कुछ समय के लिए स्थगित कर देती है। लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कम और स्नेह ज़्यादा दिखता है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बहनों, आज का समय पहले की तुलना में बहुत बदल चुका है। महिलाएं घर और परिवार, जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, प्रशासन, चिकित्सा और अनेक क्षेत्रों में अपना प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वो अपने कर्तव्यों और सपनों के बीच सुंदर संतुलन बनाकर चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच उनके भीतर का स्नेह, संवेदनशीलता और अपनापन आज भी उतना ही जीवंत है। बहनों, यही कारण है कि हमारे समाज में नारी के इस रूप को सदैव विशेष सम्मान दिया गया है, क्योंकि वो केवल जीवन को जन्म नहीं देती बल्कि उसे दिशा भी देती है। वो केवल पालन पोषण ही नहीं करती बल्कि जीवन मूल्यों की नींव भी रखती है। आज आवश्यकता इस बात की है बहनों कि हम मातृत्व के स्वरूप का सम्मान करें, साथ ही उन महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास का भी ध्यान रखें जो अपने प्रेम और समर्पण से परिवार और समाज को मजबूती प्रदान करती है। क्योंकि जब एक माँ मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है और जब परिवार मजबूत होता है तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनते हैं। तो आप इस विषय पर जरूर विचार कीजिए। तब तक हम आपको लिए चलते हैं एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग

0: एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
2: यार 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
1: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून। 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
3: सुभारती यूनिवर्सिटी प्रेमनगर देहरादून। सफलता के कदम सुभारती के साथ।
4: बहनों, जब शब्द भावनाओं का रूप धारण कर लेते हैं तो किसी शायर, गीत या फिर कविता बन जाती हैं। कविता केवल शब्दों का ही संयोजन नहीं है बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। तो आइए इन्हीं भावों से सजी आज की कविता पाठ का आनंद लेते हैं और सुश्री साधना भट्ट से सुनते हैं ये कविता पाठ।
5: नमस्कार। सबसे पहले आकाशवाणी का मुझे यहाँ कविता पाठ में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मेरा जो मुख्य केंद्र है वह स्त्री है और इस क्रम में मेरी पहली कविता का शीर्षक है खोज। भीतर एक खोज का होना जीवन में एक गति का होना है, जैसे निरंतरता के साथ बहना किसी नदी का। यही खोज मांझती है चेतना को, मांझती है विचारों को और अंततः मनुष्य को। खोज ही कराती है अंतर्बोध, तब ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं रहता, दर्शन में बदल जाता है। खोज ही देती है मनुष्य को रास्ता, देती है दृष्टि और अपने होने की परिभाषा। अपने को खोजना दुनिया को खोजना है, खोजो अपने को अपने भीतर। अगली कविता का शीर्षक है धर्म। मैंने कई देवताओं की आराधना की, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पेड़ों की पूजा, जिन्होंने मुझे छांव दी। मैंने शिव को दूध चढ़ाया, पर उससे पहले कई स्वानों को पिलाया, जो मेरे दिए निवाले को हमेशा याद रख मुझे स्नेह देते हैं। मैंने सूर्य को जल चढ़ाया, उन पंछियों के लिए जल रखा जो हर रोज आकर मेरे चौओर एक संगीत रचते हैं। मैंने पितरों के लिए भोजन रखने से पहले चींटियों के लिए कुछ अन्न कण बिखरे, जो मेरी तरह इस धरती पर जीने के लिए आई हैं। मैंने धर्म धरती से जीना, समन्वय सागर से सीखा और कर्म कुदरत ने सिखाया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है फिल्टर। एक आक्षेप हवा में उछलता है अक्सर, कितने फिल्टर लगाती हैं लड़कियां, तस्वीरों में पहचानी नहीं जाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम सच कहते हो, लड़कियां असल जिंदगी में भी फिल्टर लगाती हैं। मुस्कुराहट की महीन परत के पीछे वह छुपा देती है देह पर छपे भारी चोट के निशान। मन को बींद गया, भावनाओं को छलनी करके गया कोई गहरा दुख भी। ये फिल्टर का ही कमाल है कि बावजूद इसके उसके चेहरे पर तुम्हें मुस्कान नजर आती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जीवन में प्रकाश। भटकन के शून्य में एक आलोक का प्रवेश, चेहरे की चमक केवल प्रकाश नहीं एक मौन निमंत्रण थी भीतर के स्व को जगाने का। जीवन में कोई गुरु बनता है, कहें तो मार्गदर्शक, और आखिरकार वह उसके एकांत से मिलवा देता है और एक प्रकाश भर देता है अंताचेतस और बना देता है एक रचनाकार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्त्री की उंगलियां। मेरे हाथ घरेलू कामों के लिए बने हैं शायद, मेरी उंगलियां सब्जी बिनने काटने के लिए, और इसके लिए तारीफ पाती हूँ मैं। भरोसा है उन्हें मेरे हाथों पर कि भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन जैसे ही चलती हैं मेरी उंगलियाँ लैपटॉप या कंप्यूटर पर तो उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ती है। छा जाता है उनकी आंखों में जैसे एक अनजाना डर, जैसे एक ईर्ष्या, जैसे एक दुख, जैसे एक स्पर्धा, और लगता है वे इन उंगलियों के मुरीद नहीं रह गए और मन बेचैन हो उठता है। अगली कविता का शीर्षक है उम्मीद। औरतें रंगती हैं कई रंगों में, औरतें रंगती हैं कई रंगों में, सुबह की लाली, दोपहर की तपिश, शाम की शीतलता, जिसमें वे क्रोध को मत कर रोशनी बना देती हैं, जिसका नाम उम्मीद है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पिता। झुरियां गवाह हैं बीतते समय की, झुरियां गवाह हैं बीतते समय की, जो पिता के चेहरे से होकर मेरे भीतर डर बनकर उतरती है। मैं उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनना चाहती, क्योंकि क्योंकि लाठियां कमजोरी का प्रतीक होती हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ वह हमेशा मेरी ढाल बने रहें और समय उनके आगे घुटने टेके रहे हमेशा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बसंत। मन के वसंत का कोई महीना नहीं होता, केवल कुछ क्षण होते हैं। मन के वसंत का कोई महीना नहीं होता, केवल कुछ क्षण होते हैं जो प्रेमी द्वारा दिए जाते हैं उसे किसी सुंदरतम उपहार की तरह। उपहार समय का, उपहार जीवन बोध का, खुशियों का, प्रेम के सींचे कुछ शब्दों का जो हृदय को छूते और समय में वसंत लाते हैं और खिल जाते हैं आंखों में किसी सुनहरे फूल की तरह। बिखरते हैं चेहरे पर खिलखिलाहटों की मानिंद। मेरा वसंत यहीं छिपा है, यहीं उमकता है, यहीं मचलता है, मानो खिल उठा हो समूची पृथ्वी पर मेरे ही साथ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कविता। कविता एक साधना है, ज्ञान के अगाध सागर में एक मौन डुबकी लगाने का। यह भीतर के अंधेरे को छटती ही नहीं, उसे एक दीप्त रोशनी में बदल देती है। और मैं बस जगमगा उठती हूँ कविता की रोशनी में। मेरी अगली कविता का शीर्षक प्रेम। मैं समंदर से भी ज्यादा भरी हुई हूँ, मैं समंदर से भी ज्यादा भरी हुई हूँ, मगर भीतर से एक बूंद के लिए तरसती हूँ। वह बूंद है प्रेम, जिसे मैं पाना चाहती हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मायके की चीजें। जब भी मायके जाती है माँ, जब भी मायके जाती है माँ, अपने सूटकेस में बंद कर लाती है बचपन की लोरियाँ, आंगन की धूप और ढेर सारा लाड। सच ही तो है, माँ का मायके जाना एक समय का वर्तमान से उठकर समय में वहीं चले आना है जहाँ से माँ ने यात्रा शुरू की थी। माँ का मायके जाना अनंत स्मृतियों का लौट कर आ जाना है उसी जगह उसी समय में। माँ इसलिए घर में यही बांटती हैं बार बार, ये माँ की मायके से लाई चीजें हैं। अगली कविता। कविता मेरे अंदर कॉस्मिक किरण जैसी है। कविता मेरे अंदर कॉस्मिक किरण जैसी है जो मेरे भीतर गति के साथ उजास लेकर आती है, जो भीतर की उमस, अंधकार और आलोड़न को सोख लेती है। मन दुखी होता है तो कविता लिख पड़ती है, खुश होता है जब तो भी कविता फूट पड़ती है। मानो लिखते लिखते मैं खुद को लिखती हूँ और अपने अंदर अपना एक सूरज उगाती हूँ जिसका प्रकाश मेरे रोशनदान से अंदर झांकता है तो मन का एक एक कोना दीप्त हो उठता है, ठीक मेरी कविताओं की तरह। मेरी अगली कविता का शीर्षक लड़कियाँ। मुझे बेहद पसंद हैं वे लड़कियाँ जो ऊँचा बोलती हैं, सही ऊंचा, इतना सही ऊंचा कि कोई दबा न पाए उसकी आवाज। वे अपने आंसुओं को पुतलियों में नहीं आने देती, आंसुओं की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वे अपने मन को पर्वत सा खड़ा कर देती हैं और भीतर के तूफान को बाहर की तरफ बहाने लगती हैं और सामने के समंदर में लहरें उठाकर ज्वार भाटा ले आती हैं। ऊंचा बोलने वाली लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए धन्यवाद।
4: बहनों, अभी हम सुश्री साधना भट्ट से सुन रहे थे ये कविता पाठ। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं कार्यक्रम महिला जगत के साथ। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी सेहत की बात होती है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान अपने वजन पर जाता है। कोई वजन कम करने की चिंता करता है तो कोई वजन बढ़ाने की। लेकिन क्या केवल वजन ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है? बिल्कुल नहीं। कई बार व्यक्ति का वजन सामान्य होता है, फिर भी वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तनाव या पोषण की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा होता है। वहीं कुछ लोग थोड़े अधिक वजन के होने के बावजूद भी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक जीवन शैली के कारण अपेक्षाकृत स्वस्थ होते हैं। इसीलिए केवल तराजू पर दिखाई देने वाले आंकड़ों को ही स्वास्थ्य का पैमाना नहीं मानना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य केवल शरीर के आकार या वजन से नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। यदि हम पौष्टिक भोजन लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करते हैं और तनाव को नियंत्रित रखना जानते हैं तो हम वास्तव में स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया और विज्ञापनों के प्रभाव से आकर के कई लोग जल्दी वजन घटाने और कठोर डाइट या बिना सलाह के दवाओं का सेवन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उपाय कई बार शरीर को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धैर्य, नियमितता और संतुलन की आवश्यकता होती है।

0: Compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी कि 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था ताकि विश्व भर में नशे की समस्या से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और देश की प्रगति को भी प्रभावित करता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों का सेवन धीरे धीरे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। नशे की लत के कारण अनेक परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज के समय में युवाओं को विशेष रूप से नशे से दूर रहने की आवश्यकता है। खेल, योग, संगीत, पुस्तक पठन और सकारात्मक संगति जैसे गतिविधियां उन्हें स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकती है। तो आइए इस अवसर पर सुनते हैं नशा मुक्त भारत अभियान पर ये जरूरी संदेश।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रा पंत बोल रही हूँ। हमारे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, समाज को सुधारने के लिए, परिवार को सुधारने के लिए बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, क्योंकि हमारा एक परिवार जो होता है ये समाज की इकाई होती है। जब परिवार अच्छा होता है तो समाज भी अच्छा होता है। हमारे युवाओं के कंधे में पूरा परिवार तथा समाज का बहुत बड़ा बोझ है। बोझ मतलब उनका संकल्प है, उनका उद्देश्य है हमें एक अच्छा समाज देने का, भारतवर्ष अच्छा करने का, देश प्रेम की भावनाएं लाने के लिए। तो हमें सब लोगों को मिल के नशा मुक्त भारत अभियान में सहभागिता करनी है। जो बच्चे हैं, युवा बन रहे हैं, उनको एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। नशा कभी न करें। नशा करने से केवल अपना शरीर नहीं खराब होता है, पूरे परिवार खराब हो जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो अगर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो, मानसिक स्थिति खराब हो, तो समाज खराब होता है, फिर हमारा देश खराब होगा। इसके लिए हमें सबको मिल करके इस अभियान में जुड़ना है और अपना एक उद्देश्य रखना है कि हमारा समाज, हमारा परिवार एक बहुत पवित्र परिवार बने, पवित्र समाज बने। मैं चाहूंगी कि जो यंगस्टर्स हैं, अगल बगल उनके दोस्त कोई हो या उनके भाई बंधु, इस तरह के अगर नशा में को लत लग जाती है, कृपया करके आप जरूर से नजदीक के अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। और मैं कहूंगी कि आपका एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। यही उद्देश्य हमारे समाज को पवित्र करे, यही उद्देश्य हमारे परिवार को बहुत अच्छे ऊंची चोटियों तक ले जाएगा। तो इस तरफ से अपना ध्यान हटा करके आप अच्छी सी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने संगीत में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, खेल वगैरह में अपना ध्यान लगाएं। जब कभी इस तरह के अगर कोई रास्ता आता भटकने का, कोशिश करिए उधर को न जा करके आप अच्छे एथलीट्स बनिए और अपने परिवार के लिए जरूर सोचिए, अपने शरीर के सोचिए, जो कि नशा करने से आपका शरीर बहुत खराब हो जाता है। केवल मानसिक या शारीरिक संतुलन ही नहीं खराब होता है, अपने घर का पूरा संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों को सुविचार बेचना चाहती हूँ। युवा इस तरह से अपना ध्यान दूर करें और नशा मुक्त भारत को सक्सेस बनाने के लिए, सफलता की ओर ले जाने के लिए सब लोग इसमें सहभागिता करें। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी हम नशा मुक्त भारत अभियान पर डॉक्टर चंद्रपन से सुन रहे थे ये संदेश। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अनमोल सुझाव के लिए हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आपको करना ये है कि कैपिटल लेटर में MJ टाइप करना है, स्पेस दे करके आपका नाम, पता और कार्यक्रम से संबंधित जरूरी सुझाव। तो इसी के साथ मैं कीर्ति जखमोला अब आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। श्रोताओं, अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग

0: आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 का समय, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रोपाई की। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। NTA ने उम्मीदवारों के लिए NEET UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। और बागेश्वर नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। फड़ व फेरी व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। श्री चौहान ने इस दौरान राज्य में नर्सरी को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई कर कृषि कार्यों में भागीदारी की। इससे पहले श्री चौहान ने पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक विचार है। ये विचार ज्ञान को समाज की सेवा, विज्ञान को मानवता के कल्याण और कृषि को राष्ट्र निर्माण का आधार मानता है। उन्होंने आधुनिक कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए विश्वविद्यालय की भी सराहना की।
3: आप एक उन्नत डेटा सेंटर बनाने वाले, मैं आपको बधाई देता हूँ। बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और इसका फायदा

0: हमें ही उठाई लेना, क्योंकि जहां मिले वहां से ले लो। आप एक एआई पर भी उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी गजब की चीज है। कई बार लगता है दुनिया बदल भी जाएगी, कई बार थोड़ी चिंता भी होती कि गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो इंसान का महत्व ही खत्म हो जाए, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। मित्र पंत्रगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार है। ये विचार है जो कहता है कि ज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री आज कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भी भाग लेंगे। एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आज के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला के मैदान में हुई शहादत को याद किया जाता है। प्रदेश की राजधानी देहरादून समेत रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार समेत अन्य जगहों पर मस्जिदों में विशेष धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उलेमा करबला की कुर्बानी और इंसानियत के संदेश को प्रसारित कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: बागेश्वर नगर पालिका परिषद में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फड़ व फेरी व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया। साथ ही लोगों से विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई। वहीं सिटी मिशन मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने फड़ व्यवसायियों से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचे।
3: आज हमारे यहाँ पे नगर पालिका सभागार में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें हमने सभी बैंकर्स को बुलाया है और जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं पीएम स्वनिधि में उन बैंकर्स को और लीड बैंक अधिकारी जी को और फड़ व्यवसायियों को और सभी निकायों के समस्त अधिशासी अधिकारियों को भी बुलाया आमंत्रित किया है और साथ में हमने बच्चों का भी ड्राइंग कंपटीशन रखा था जो कि उसमें हमने उनको थीम दी थी स्वच्छता पे कि किस तरह से वो स्वच्छ वातावरण रख सकते हैं और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो इसमें हमने बच्चों को भी पुरस्कृत किया है और हम बैंकर्स को भी पुरस्कृत करेंगे और जो फड़ व्यवसायियों ने समय पर लोन वापस कर दिया है उनको भी इसमें पुरस्कृत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1872 परिवारों का आशियाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 EWS आर्थिक रूप से

0: कमजोर वर्ग आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना में 1872 आवासों को बनाया गया है, 832 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं। ये फ्लैट 6 लाख रुपए लागत से बने हैं, लेकिन पात्र परिवारों को इन्हें केवल 3 लाख रुपए ही देने होंगे। बाकी रुपए केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा 1.5-1.5 लाख रुपए की सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है, जिसमें कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा है। सभी फ्लैट भूकंपरोधी तकनीक से बनाए गए हैं। बागवाला कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था है। बच्चों के लिए हरे भरे पार्क भी हैं। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि परियोजना के तहत लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है और जल्द ही आवासों की चाबी उन्हें सौंप दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रुपाई की। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। और बागेश्वर नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। फड़ व फेरी व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:15 का समय हुआ है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आशा भोसले और किशोर कुमार का युगल सर। अभी आप सुन रहे थे दुनिया फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम का गाया, इंदिवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा फिल्म कलाकार का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिक

0: जीवों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर

0: एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
9: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
9: अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
8: हाँ।

0: पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
2: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
4: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
3: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है,
0: है ना?
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है इसलिए,
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
4: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
5: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
5: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
5: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
5: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
5: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
5: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
4: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
1: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
7: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for a united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India along with 34 nations sign US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. Home Minister Amit Shah today called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi.
8: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
7: Mr. Shah said authorities seized around 2.6 million kilograms of synthetic drugs between 2004 and 2014. In comparison, the quantity of synthetic drugs seized increased to 11.8 million kilograms between 2014 and 2026. He said the figures show that the government's campaign against drug trafficking is making steady progress. Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes.
8: The first pillar is enforcement, intelligence and operations. Its objective is to carry out targeted intelligence-led operations across the entire network and dismantle these criminal networks. The second pillar is precursors and synthetic drug control. We must adopt a strategy to stop drugs at the production stage itself. The third pillar is capacity building, coordination and monitoring. This pillar has been designed to strengthen the system, enhance coordination and modernize our institutional framework.
7: The Uttar Pradesh police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. The trust had requested a special investigation, following which Chief Minister Yogi Adityanath ordered the formation of an SIT. More from our correspondent.
9: The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav, alias Tenu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered on Thursday. With Sushil Chandra Tiwari's report from Lucknow, Komadi Parekh, Akashvani News.
7: India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence, AI technologies, at the second Pax Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Speaking to the media, Mr. Hellberg said the United States is excited to deepen its partnership with India, describing the bilateral relationship as one of the most consequential of the 21st century.
10: We're incredibly excited to partner with India. India was one of the first top 10 countries to join Pax Silica. The U.S.-Indian relationship, we believe, is one of the single most consequential bilateral relationships in the world in the 21st century. We were able to cover a lot of very timely issues in our bilateral exchanges with India yesterday, including on the Quad, on the Trust Initiative, and we're really, really excited to have India, along with so many representatives of the Indian business sector, at this summit.
7: India was represented at the summit by Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology S. Krishnan and representatives from the Indian industry. India had joined the initiative in February this year on the sidelines of the AI Impact Summit held in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani on Sunday. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has reaffirmed its commitment to women-led development at Shanghai Cooperation Organization Women's Forum SCO 2026 at Bishkek in Kyrgyzstan. Addressing the event virtually today, Minister for Women and Child Development Annapurna Devi emphasized that women are not merely beneficiaries of growth, but the most powerful drivers of Viksit Bharat by 2047. Highlighting the role of women in economic development, the minister said nearly 100 million women are organized into over 9 million self-help groups, of whom more than 30 million have become Lakhpati Didis. She said schemes like Mission Shakti and Mission Poshan 2.0 are advancing women's safety, care and economic participation. The minister also reaffirmed the country's readiness to share experiences and deepen cooperation with SCO partners in advancing women's economic leadership and well-being across the region. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Venezuela, the death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. German Ambassador to India Philip Ackermann has said India has emerged as a global leader in renewable energy. Talking to a news agency, Mr. Ackerman underscored the success of the Partnership for Green and Sustainable Development between India and Germany, highlighting robust cooperation across trade, political and strategic sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackerman expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game changer that will significantly incentivize more investment in India from German businesses. Sweltering temperature is shattering records across Europe as the continent battles with a deadly heat wave. The heat wave has disrupted power supplies and forced the closure of schools and cultural landmarks. France endured its hottest days in history this week, with western regions witnessing temperature ranging between 39 to 43 degrees Celsius. Wednesday was the United Kingdom's warmest June day on record, with the mercury climbing to 36.1 degrees Celsius. Spain, Germany, Austria, the Netherlands and Switzerland have all broken June temperature records at several locations. Several lives have been lost, including dozens of people who have drowned in France in the past week while trying to cool down in the punishing heat. United Nations climate change chief Simon Steele has said Europe's heat wave has the fingerprints of the climate crisis all over it. He called for a faster shift to renewables, protecting forests and boosting climate resilience. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Bihar, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Konkan, Goa, central Maharashtra and some parts of northeastern India. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand in the next 3 to 4 days. The Met Department has also forecast heat wave conditions at isolated places over Jharkhand and East Uttar Pradesh today. Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. Hazrat Imam Hussein laid down his life for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Tazia processions are being taken out to mark the occasion. Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein in a social media post. He said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. In Delhi, Muharram processions are being held in different locations, including Jama Masjid, Nizamuddin, Okhla and Mehroli. In men's cricket, India will take on hosts Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
11: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
12: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
11: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
12: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
11: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
13: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ

0: कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम

0: हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए

0: सैनिक साथियों जय हिंद। आपका मनपसंद कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर हाजिर हैं हम ठीक 2:30 पर। सैनिकों कार्यक्रम में हर दिन आपके साथ साझा करते हैं हमारे भारतीय सैनिकों की वीरता की वो अनदेखी कहानियाँ जिनकी गवाही भारतवर्ष की सीमाएं दे रही हैं। दुश्मनों की साजिशों को नेस्तानाबूद करते हमारे जांबाज सैनिक जिनका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। सैनिक साथियों कार्यक्रम में पहला गीत समर्पित है हमारे सीमाओं की निगेहबान करती उन आंखों को जिसकी वजह से हमारी रातें सुकून से गुजरती हैं।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की

गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जांबाज सैनिक की जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मेजर रामा राघोबा राणे। जी हाँ श्रोताओं, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो पहले जीवित सैनिकों में से एक थे।

आशा भोसले और विनोद राठौड़ के युगल स्वर में अभी आपने गीत सुना फिल्म का नाम बाजीगर। श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सैनिकों के लिए आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं मेजर रामा राघोभा राणे की। उनका जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के करवार जिले की चेंदिया नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही वो अनुशासन प्रिय, साहसी और देशभक्त स्वभाव के थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का निश्चय किया और साल 1940 में वो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप में भर्ती हो गए।

श्रोताओं, कार्यक्रम है सैनिकों के लिए और आज ऐसे ही एक वीर सैनिक की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मेजर रामा राघोभा राणे। सैन्य जीवन में उन्होंने इंजीनियरिंग के कार्यों में दक्षता प्राप्त की और वो जानते थे कि युद्ध केवल बंदूक और गोलियों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि साहस, बुद्धिमता और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, समय था भारत की स्वतंत्रता के पश्चात का, 1947 और 48 में हुए भारत पाक का युद्ध, और इस युद्ध में मेजर रामा राघोभा राणे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

दावती इश्क। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना वाजिद और श्रेया घोषाल के युगल सर में। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मेजर रामा राघोबा राणे के बारे में और 1947-48 का भारत पाक का वो युद्ध और 8 अप्रैल का वो दिन जब राणे और साथियों ने दुश्मन की गोलाबारी के बीच कठिन परिस्थिति में लगातार काम किया। उनकी टीम और उनके अथक मेहनत के कारण ही भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक राजौरी की ओर बढ़कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और ये सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से भी जीता जाता है। जी हाँ, रामा राघोबा राणे की असाधारण वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनका पूरा जीवन अनुशासन, निष्ठा, राष्ट्र सेवा का उदाहरण रहा। 1968 में सेना से निवृत्त होने के बाद भी उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल ठीक 2:30 पर हमारे साथ ही हाजिर होंगे एक ऐसी ही जाबा सैनिक की कहानी के साथ। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की भारती आनंद को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

0: सैनिकों के लिए। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रोपाई की। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू हेल्प LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता शुरू कर दी है। बागेश्वर नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। फड़ व फेरी व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1872 परिवारों का 3 लाख रुपए में जल्द घर उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार ने LPG पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। केदारनाथ धाम स्थित स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित चिकित्सा सेवाओं के जरिए 44 दिनों में 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का उपचार किया। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। देहरादून के पूर्व सैनिकों की स्काई राइडर्स टीम ने लद्दाख की दुर्गम पर्वतीय श्रृंखलाओं से होकर गुजरने वाली 3,100 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। और आज मुहर्रम पर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 3:02 का समय। फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने।

सैंधवी प्रकाश की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था थलाइवली, इरशाद कामिल के बोल और संगीत जीवी प्रकाश कुमार का। आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा और कमाल खान का युगल स्वर। प्रीतम के संगीत से सजा, फिल्म का नाम है ट्यूबलाइट।

शाहिद माल्या की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम उड़ता पंजाब, शब्द रचना शिव कुमार बतालवी की और संगीत अमित त्रिवेदी का। आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर का गाया फिल्म बाजी का ये गीत। कुमार की शब्द रचना को संगीत से सजाया है मीत ब्रदर्स ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। कार्यक्रम में और भी गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ठीक 4:02 पर आज आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे रामलाल मिश्र का सारंगी वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग भीम पलासी। 4:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे फिल्म निर्देशक यश जौहर। 5:10 पर प्रसारित होगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। लीजिए अब कार्यक्रम में सुनिए परिणीता फिल्म का एक गीत सोनू निगम की आवाज़ में, स्वानंद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रे का संगीत।

देवनेगी और हनी सिंह का गाया फिल्म लव्यात्री कई गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल स्वरूप खान की आवाज़ में फिल्म पद्मावत का ये गीत। शब्द रचना MM तुरान की और संगीत संजय लीला भंसाली का।

मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म का नाम ABCD। लीजिए अब सुनिए MS धोनी फिल्म का गीत पलक मुछल की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत और संगीत से सजाया अमाल मलिक ने। फिल्म का नाम है MS धोनी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने, और लीजिए आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत, जयदीप साहनी की शब्द रचना और संगीत सलीम सुलेमान का, फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी।

परम सुंदरी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कृष्णकली साहा और सोनू निगम के युगल सुर में। श्रोताओं, लीजिए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के युगल सुर में। अमित भट्टाचार्य का गीत, प्रीतम का संगीत,

0: श्रोताओं, अरिजीत सिंह और शोभा घोषाल के गाए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत गाने नए तराने का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रोपाई की। राज्य में पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना की धनराशि जारी करेगी। उत्तराखंड सरकार एडवेंचर टूरिज्म को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम जल्द शुरू करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध

0: हटाए। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नेट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत दोनों संस्थाएं देश भर में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। चमोली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99.93% गणना प्रपत्र वितरण व 76.23% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आज मुहर्रम पर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4:02 का समय। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं रामलाल मिश्र का सारंगी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग भीम पलासी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं निखिल कुमार मुखोपाध्याय।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ला रामलाल मिश्र का सारंगी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग भीम पलासी। तबले पर आपके साथ संगीतकर्ता कलाकार थे निखिल कुमार मुखोपाध्याय। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार सुनने वाले सभी साथियों को प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार। भारती आनंद की ओर से श्रोताओं, एक कलाकार में आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे, उसकी दूरदृष्टि, सादगी और कार्यशैली ने भारतीय फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयां प्रदान की। जी हाँ, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता, एक ऐसे निर्माता जिन्होंने सपनों को साकार करने का साहस किया और भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक यश जौहर की। आइए कार्यक्रम का पहला गीत समर्पित करते हैं उन्हीं की फिल्म दोस्ताना का।

श्रोताओं, यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उस समय लाखों लोगों की तरह उन्हें भी विस्थापन और संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। यश जौहर के मन में बचपन से ही फिल्मों के प्रति गहरा आकर्षण था और कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास भी था कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन है, एक सशक्त कला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म उद्योग में छोटे छोटे कार्यों से की और निर्माण प्रबंधन के साथ ही प्रोडक्शन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को बहुत करीब से जाना और समझा।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक यश जौहर की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अपने काम के प्रति ईमानदारी और संबंधों को निभाने की क्षमता, और यही वजह थी कि धीरे धीरे उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई। कलाकार हों या तकनीशियन, सभी के बीच एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। साल 1976 में यश जौहर ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की, और उस समय शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण की संस्थाओं में से एक बनेगी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले यूं तो कई फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी दोस्ताना, और इस फिल्म ने बड़ी सफलता प्राप्त की और यश जौहर को एक स्थापित निर्माता के रूप में पहचान दिलाई।

श्रोताओं, यश जौहर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि फिल्मों में वो केवल मनोरंजन को ही नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों की गर्माहट भी दिखाना चाहते थे। उनकी फिल्मों में परिवार, अपनापन और भारतीय संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती थी। उनके बेटे करण जौहर ने जब निर्देशन की शुरुआत की तो हर कदम पर यश जौहर ने उनका साथ दिया और 1998 में आई कुछ कुछ होता है इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशक थे करण जौहर और निर्माता यश जौहर। ये फिल्म केवल व्यावसायिक रूप से ही सफल नहीं हुई बल्कि भारतीय युवाओं और पारिवारिक दर्शकों के बीच एक सांस्कृतिक घटना बन गई। हम कह सकते हैं कि यश जौहर ने इस फिल्म के माध्यम से भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विदेशों में शूटिंग की बात हो या वितरण की संभावनाएं हैं, इस बात को समझा और भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया।

साल 2004 में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 26 जून को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी बनाई हुई विरासत आज भी जीवित है। हालांकि उनके जाने से हिंदी फिल्म उद्योग ने एक ऐसे निर्माता को खो दिया जिसने अपने कार्य और व्यवहार से दोनों लोगों का दिल जीत लिया था। श्रोताओं, यश जौहर की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बड़े नाम से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से भी ऐसी पहचान बनाई जा सकती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार फिल्म निर्माता निर्देशक यश जौहर। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में उभरती संभावनाएं विषय पर डॉक्टर सानिका मेहर से संकल्प मिश्रा की बातचीत। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे

किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत सुनिएगा नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर डॉक्टर मुकुल शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। आरएनए देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद का समय रहेगा शाम 7:50 पर। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर।

कल शाम 5:10 पर सुनिएगा पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और कल रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कृपा राम के गाए जौनसारी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:00। कल प्रातः 10:35 पर लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मेनपाल सिंह के गाए रागनिया। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11:00। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे वार्तालाप की कला विषय पर डॉक्टर आरती सिसोडिया से बातचीत। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राग भीम प्लासी पर निवेदिता घोष का सितार वादन। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर, जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे संगीतकार आरडी बर्मन। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 होने को है और प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: उम्मीदों की नई किरण, सपनों की नई उड़ान और कुछ नया सीखने समझने का उत्साह, इन्हीं रंगों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आयुषी भट्ट और मेरे साथ हैं।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिवानी कंडवाल। आशा करते हैं कि आपका दिन शानदार रहा होगा और आज के इस सफ़र में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प बातें, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, शानदार गीत संगीत और हाँ दोस्तों, एक खास स्पेशल सेगमेंट भी।
0: तो इसीलिए दोस्तों कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम युववाणी।
1: बिल्कुल। वैसे आयुषी, बचपन में जब कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगी तो क्या जवाब देती थी तुम?
0: शिवानी कभी डॉक्टर बोलती थी, कभी टीचर, तो कभी कुछ और बोलती थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन तब ये पता नहीं था कि सपनों को पूरा करने के रास्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं। वैसे शिवानी, तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा?
1: क्योंकि आयुषी और हमारे प्यारे दोस्तों, आज

0: भी कई युवा यही सोचते हैं कि सफलता का जो रास्ता है वो सिर्फ लंबी पढ़ाई और बड़ी डिग्री से ही होकर जाता है।
1: जबकि सच ये है कि आज का दौर हुनर का दौर है, जिसके पास कौशल है उसके पास अवसरों की कमी नहीं है।
0: और दोस्तों यही कारण है कि ITI आज युवाओं के बीच एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है।
1: वैसे शिवानी, आपने गौर किया होगा कि जब घर में बिजली की समस्या होती है, गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मशीन रुक जाती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है?
0: भाई उस व्यक्ति की जिसे काम का हुनर आता हो।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हुनरमंद युवाओं को तैयार करता है ITI।
0: दोस्तों मुझे लगता है कि ITI की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ सीखना सीधे काम से जुड़ा होता है, यानी पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी।
1: और यही अनुभव युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाता है, और वे सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं रहते बल्कि खुद अवसर बनाने की सोचने लगते हैं।
0: सही कहा दोस्तों, आज कई युवा टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। छोटे स्तर से शुरुआत करके वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: और अगर उत्तराखंड के रेफरेंस पे देखें तो यहाँ भी कुशल युवाओं के लिए कोई कम
0: कई
1: संभावनाएं
0: संभावनाएं
1: नहीं
0: हैं।
1: है।
0: बिल्कुल
1: पर्यटन, होटल निर्माण, ऊर्जा और सेवा के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत लगातार बढ़ती ही रहती है।
0: और जब स्थानीय युवाओं को दोस्तों स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है तो इससे उनके परिवार और पूरे क्षेत्र को लाभ होता है।
1: तो वैसे तो मुझे लगता है कि आजकल हम युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि हर सफलता की कहानी एक जैसी नहीं होती, क्यों, है ना शिवानी?
0: हाँ बिल्कुल, कुछ लोग दोस्तों किताबों के जरिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए, और कुछ अपने कौशल के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दोस्तों याद रखिए, आपके भीतर कुछ नया सीखने का जज्बा है, तो अपने हुनर को पहचानिए और उसे निखारिए।
0: क्योंकि मजबूत हाथों में जब कौशल होता है तो मजबूत रोजगार और दोस्तों उज्जवल भविष्य अपने आप बन जाता है। और आइए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का पहला खूबसूरत ट्रैक सुनते हैं, शारिब और तोशी की आवाज में फ्रॉम द मूवी फुकरे रिटर्न्स। आइए सुनते हैं।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें, बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
5: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
4: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
5: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
4: और परिणाम?
5: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
4: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
6: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
7: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
8: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
7: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
9: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
10: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
11: दोस्तों, युवानी की खूबसूरत पहचान है कि यहाँ सिर्फ चर्चा और गीत संगीत ही नहीं, बल्कि आपको ऐसे लोगों से भी मिलाया जाता है जिनके अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियाँ हम युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक विशेष भेंट वार्ता जिसका विषय रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में उभरती संभावनाएं। डॉक्टर सानिका मेहर से बातचीत कर रहे हैं संकल्प मिश्रा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
12: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सानिका मेहर। सानिका ने अपना MBBS 2025 में खत्म किया है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से। इसके बाद जो एक बड़ी उपलब्धि इनके साथ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एम्स PG एग्जाम जो 2026 मई का जिसका रिजल्ट आया है उसमें 155वीं रैंक हासिल की है। आज हम इनसे जानेंगे कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में आना है तो कितनी तैयारी आपको करनी होती है और आज AI के जमाने में डॉक्टर बनने के अलावा अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस हैं। नए उभरते मेडिकल फील्ड्स भी आए हैं, उसमें भी हम सानिका से बातचीत करेंगे क्योंकि खुद सानिका तैयारी के दौर में हैं। अभी उनका रिजल्ट आया है, ताजा तरीन ये बातचीत होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सानिका सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
13: थैंक यू सो मच सर।
12: सानिका सबसे पहले तो ये बताइए, आपने 2025 में MBBS किया फिर साथ ही में आपने एम्स PG का भी एग्जाम दिया, ये सफर कैसा रहा?
13: जी सर, सबसे पहले तो जैसे बचपन से सबका सपना होता है कि डॉक्टर बनने का, वैसे ही मेरा भी था, मेरे पापा का भी था। तो मैंने बचपन से ही सोचा था कि डॉक्टर तो बनना ही है। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि कैसे बनना है, MBBS के बाद भी शायद कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है। तो मैंने 9th से ही सोच लिया था और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। बाकी फिर 11th-12th में तो सीरियस होना ही पड़ा उस चीज के लिए, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो बच्चे काफी बार 9th से 10th से शुरू कर देते हैं पढ़ना। प्लस मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि नीट का एग्जाम हमारे बोर्ड्स के एग्जाम से काफी अलग होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि NCERT जो है उसकी लाइंस के आप देखेंगे बहुत बार अगर आप पेपर निकालेंगे तो वो काफी बार रिपीट होती हैं एज इट इज। तो हम क्या करते हैं, हम स्कूल की पढ़ाई को छोड़ देते हैं बिल्कुल और हम नीट की अलग से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हम हाई फाई बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें याद करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती करी थी कि नीट PG का एग्जाम सरल है, बस ये बात है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो

0: ये फोकस ना करके, कंपटीशन पे फोकस ना करके, अगर बस हमें कितना याद है, हम कितना बैठ के सीरियसली पढ़ रहे हैं, हम कितना डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख रहे हैं, फोन चलाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको सबको छोड़ के अगर हम बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दें कि हमें कितना याद हो पा रहा है, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा और याद करते रहें, तो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट इतना नहीं है. बस ये है कि डर जो है कि ये नहीं हुआ तो, वो चीज है जो हमें रोक लेती है अक्सर, और बच्चे इस कारण भी ज्यादा परेशान रहते हैं.
1: हम बात करें, जब आप यूजी की तैयारी कर रही, तब से अपने समय में काफी बदलाव आ चुका है, बहुत सारी कोचिंग्स अब ऑनलाइन आ चुकी है और काफी कम पैसे में ये कोचिंग्स ऑनलाइन माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाती हैं। थोड़ा मुझे बताइए कि कोचिंग्स का कितना रोल रहता है तैयारी में?
0: जी सर, जब मैंने शुरू किया था लॉकडाउन से पहले, मैंने अपना एग्जाम दिया था नीट पीजी का, तो उस टाइम पे तो हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग्स का ऑप्शन था, तो वो काफी एक्सपेंसिव भी रहती थी और एक तरीके से कंपटीशन जो था वो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि फिर जो ज्यादा सीरियस हैं या जो ज्यादा उतना पैसे दे सकते हैं. बट अब क्या है कि अब हमारे पे ज्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग जैसे पहले सबके उसमें नहीं था, कि सबकी कैपेसिटी में नहीं था कि इतनी महंगी फीस दे पाए, तो मुझे लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ चुकी हैं, तो कॉम्पिटिशन ही भी काफी अब बढ़ चुका है. बट अच्छा है कि अब हमारे पास ये मीडियम है.
1: सानिका, अगर कोचिंग बहुत से देशों में बिल्कुल पूरी तरह से बैन है, कई देश ऐसे हैं जहां पर कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिस तरीके से उनके स्कूल का एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है वहां पर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत में आज की तैयारी के लिहाज से बात की जाए, बिना कोचिंग के क्या इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर करना और उसमें सफलता का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाए रखना या अपनी अपेक्षा के अनुरूप उसमें सफलता पाना कितना आसान या कठिन है?
0: सर, मुझे लगता है कि कोचिंग का रोल कंटेंट प्रोवाइड करने से ज़्यादा गाइडेंस का है, क्योंकि बच्चों में कंटेंट की कमी नहीं है आज के टाइम पे. आप इंटरनेट में देखेंगे, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, सब चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, NCERT सबके पास है. पर बात यह है कि गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पहले डॉक्टर होते हैं अपने घर के, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो ये मुझे लगता है कि कोचिंग जहाँ पे हमें हेल्प करती है. पर अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन कोचिंग्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि गाइडेंस भी वो कहीं तक प्रोवाइड कर पा रही हैं. और आजकल सोशल नेटवर्किंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं, वो बच्चों को आगे गाइड कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ, कोचिंग एक पार्ट प्ले करती है, पर डेफिनेट नहीं है कि 100% आपको कोचिंग में ही निर्भर रहना है ये करने के लिए. आप खुद से भी वो चीज कर सकते हैं, बस गाइडेंस और स्ट्रेटजी ये जो होनी चाहिए एक बच्चे में वो काफी रहेगी.
1: आपके समय में आप गाइडेंस के लिए, अगर हम कोचिंग पे ना निर्भर हों तो गाइडेंस किस तरह का होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन का कितना रोल है? और टिप्स एंड ट्रिक्स हर एग्जाम के लिए अपनी अलग-अलग होती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपका क्या अप्रोच था?
0: सर, जैसे मैंने नीट पीजी अपनी 12th के साथ ही निकाला था, तो बहुत लोगों के लिए ये होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 12th के साथ निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको क्लास भी जाना है, फिर आपको वापस आना है, आप थक जा रहे हो, आपको होमवर्क करना है, आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना है. बट ये सब चीज़ें अगर हम साइड रखें, अगर हम देखेंगे कि जैसे दिन में हमारे पास स्कूल के बाद भी काफ़ी आवर्स बच जाते हैं, इवन अगर आप एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रहे हैं, अगर आप वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, जो हम जैसे आजकल इंटरनेट पर इतना बिजी रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग में हम बच्चे इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको लगता है उन पर टाइम नहीं है, जबकि वो टाइम कहीं और जा रहा है. तो अगर हम वो डिस्ट्रैक्शंस को हटा के देखें, अगर 2 साल अगर कोई 2 घंटे भी दे रहा है इस स्टार्टिंग की फेज में, बट टुवर्ड्स द एंड जैसे बोर्ड्स हो गए, उसके बाद भी नीट पीजी और बोर्ड्स के बीच में मुझे लगता है 2-3 महीने का तो अभी भी अंतर आता है, और अब तो खैर और लेट होने लग गया है नीट यूजी, तो उसमें हमें और टाइम मिल जाता है. तो अगर आपका बेस अच्छा बन चुका है, क्योंकि आप स्कूल में भी वही चीज पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में भी वही चीज पढ़ रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया रखा है, तो लास्ट के 2-3 महीने में अगर आप पुश करेंगे, अपना 100% देंगे, तो आप 12th के साथ स्कूल के साथ भी वो चीज कर सकते हैं.
1: हम बात करें मॉक टेस्ट की,
0: जी
1: वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए थे जिससे सफलता को ज्यादा प्रतिशत के साथ इंश्योर किया जा सके?
0: जी तो जैसे यूजी की बात करूं या पीजी की बात करूं, दोनों ही टाइम पे मैंने हर वीक तो एटलीस्ट एक मॉक देती थी मैं. मॉक से एक तो आपकी रियल एग्जाम सिचुएशन की भी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि वो एनजाइटी डेवलप होती है, वो आपको OMR भरनी है कैसे, या फिर टाइम कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें होती है जो एग्जाम में ही जाके हमको पता पता चलती हैं, तो वो सब कैसे हैंडल करना है ये हमें मॉक में ही पता चलेगा। दूसरा ये है कि मॉक के रिजल्ट को सिर्फ मार्क्स देख के नहीं हटाना है कि अच्छा कम आ गए, ओहो मेरा कुछ नहीं हो सकता करके तो नहीं रखना है। हमें ये देखना है कि कमी कहाँ पे है। हमें हर क्वेश्चन को ये नहीं देखना कि अच्छा इसका आंसर ये और रट लिया उसको और अगली बार हमने वही चीज वहां पे दोबारा गलती कर दी। हमें उस टॉपिक को पढ़ना है जाके, हमको देखना है कि हम इसको कैसे और दूसरी तरीके से अप्रोच कर सकते थे। हमें अपने दोस्तों से बात करनी है कि अगर उसने ये सही किया है तो उसने कैसे उसमें ये दिमाग लगाया कि इसको ऐसे करना है। तो मॉक खुद में एक अलग से टीचिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि लर्न कर सके हम उससे बहुत सारी चीजें।
1: अच्छा, ग्रुप स्टडी के बारे में बहुत से लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं और बहुत से लोग के लिए एक डिस्ट्रैक्शन होता है। आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगी जो ग्रुप स्टडी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको किस हद तक करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए?
0: ग्रुप स्टडी मुझे लगता है कि मेरे लिए तो दोनों ही यूजी और पीजी में काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रखा है, पर ग्रुप जो होना चाहिए वो एकदम 3-4 लोगों से भरा ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपका एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए जो कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच कर पाए, जो उतना ही सीरियस हो पढ़ाई के लिए।
1: आइडियल स्टडी पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं?
0: कि आपको वो मोटिवेट करे, वो गेट कीप ना करे, मतलब अपने पास इन्फॉर्मेशन दबा के ना रखे कि मैं नहीं बताता हूँ इसको, मैंने क्या सोर्स पढ़ रहा हूँ या ये सब। वो आपको भी बताए कि उसने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, आप उसे बता पाओ कि ये चीज़ आपने कहाँ से गेन करी ये नॉलेज। मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए।
1: आपने दो बार तैयारी की और दोनों बार अच्छी सफलता हासिल की है, थोड़ा बताइए कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स ज्यादा आपको ठीक लगता है पढ़ाई के लिए या फिर आप ब्रेक ले ले करके पढ़ना पसंद करती थी?
0: इनिशियल डेज में जब हमने शुरू ही किया था प्रिपरेशन करना, तो उस टाइम पे तो लगातार 1-2 घंटे बैठना भी मुश्किल हो जाता था। पर उस चीज को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है। जैसे आपको पहले 1 घंटे से शुरू करना है, फिर 1 महीने बाद जैसे आपको 2 घंटे जाना है, ऐसे ऐसे करके अपने सेटिंग आवर्स आप इवन 12-14 आवर्स भी स्ट्रेच कर सकते हैं एंड में। बस यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपना फोन साइड पे करना है या तो दूसरे कमरे में रख दो। मतलब मेन डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है यही है आजकल की फोन चलाने का, बार बार मन करता है बच्चों को। तो या तो आप अपने पेरेंट्स को दे दो फोन या फिर आप दूसरे कमरे में स्विच ऑफ करके रख दीजिए।
1: थोड़ा मुझे बताएं कि आपने फोन की बात की, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना और एंग्जायटी को मैनेज करना जब एग्जाम करीब आ जाते हैं, दोनों आपने कैसे किया? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी जो बच्चे भविष्य में मेडिकल क्षेत्र में आना चाहते हैं?
0: डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट तो हमने काफी कवर कर लिया है। एंग्जायटी के लिए मैं बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स से बात करते रहना, लोगों से बात करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को अकेले कमरे में, उनको डर लगता है कि पूछेंगे लोग कैसी तैयारी चल रही है, तो वो बात करने से हिचकिचाते हैं आसपास अपने पहचान वालों से। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट पेरेंट्स से तो बात करते रहनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए अपनी परेशानी के बारे में, या फिर अपने दोस्त, 1-2 दोस्त होने चाहिए जिनसे आप शेयर कर सको। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि एक एग्जाम आपके फ्यूचर, आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। आपका होता है एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आजकल इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मेडिकल फील्ड के अलावा भी हैं, जिसमें आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं लोग उसमें, तो इसको अपनी लाइफ का एंड नहीं मानना है।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी मंजिल जिंदगी की अंतिम मंजिल नहीं होती है। हम अब कार्यक्रम के अंतिम छोर पर बात करना चाहें कि कोई अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है तो उसके पास आज के दौर में और क्या क्या विकल्प हैं अगर वो मेडिकल प्रोफेशन में पीजी कर लेता है तो?
0: सबसे पहले मैं उससे शुरू करूंगी कि अगर किसी ने MBBS किया है तो, हम 5 साल के MBBS के बाद बहुत बार बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे अपनी खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं सेटअप करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले बहुत बच्चे USMLE या फिर ऑस्ट्रेलियन एग्जाम्स देके बाहर चले जाते हैं फॉरेन में प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट में सर्व करना है, तो UPSC का ही एक CMS एग्जाम होता है हमारे पास, वो होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का प्रोग्राम, तो उससे भी बच्चे काफी बार गवर्नमेंट में सर्विस देते हैं अपनी। और तीसरा आपके पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एग्जाम होता है, उससे आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं और जस्ट अपने आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आपको नहीं रखना तो वो भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है।
1: सानिका, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने अपनी तैयारी के सफर को साझा किया हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत कुछ हमारे श्रोताओं को सीखने को मिला होगा आपकी सफलता से। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सानिका मेहर से संकल्प मिश्रा की विशेष भेंट वार्ता। उम्मीद है उनके अनुभवों और विचारों ने आपको भी कुछ नया सोचने और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हम अपने कार्यक्रम में अगला म्यूजिकल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज़।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
2: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
1: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
2: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
1: और परिणाम?
2: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
1: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे स्वरोजगार और उद्यमिता की, जो नए भारत की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव बन चुके हैं।
5: बिल्कुल दोस्तों, अब समय सिर्फ नौकरी ढूंढने का नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने का है, और अब तो सरकार भी युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने के लिए शानदार योजनाएं चला रही हैं।
4: बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने और नए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
5: बिल्कुल, अगर कोई युवा पहली बार दोस्तों EPFO में रजिस्टर होता है तो उसे 15,000 तक का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन यानी कि डायरेक्ट इंसेंटिव दो किश्तों में दिया जाता है।
4: बिल्कुल, जो एम्प्लॉयर नए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं उन्हें प्रति नए कर्मचारी पर हर महीने 3,000 तक की सहायता भी मिल सकती है।
5: दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो ये छोटे कारोबार शुरू करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, और सबसे खास बात इस योजना की ये है कि इसमें बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है।
4: और दोस्तों, इसमें तीन कैटेगरीज हैं, जैसे कि शिशु लोन जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है, फिर किशोर लोन आता है जिसमें 50,000 से 5,00,000 तक का लोन मिलता है, और फिर आखिर में आता है तरुण लोन जिसमें 5,00,000 से 10,00,000 तक का लोन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शब्दों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ी देर के लिए शुरू के हवाले करते हैं और सुनते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फिल्म से राघव और अजीज कौर की आवाज़ में ये गीत।

0: दोस्तों, हम रोज बहुत सी बातें सुनते हैं, किसी के आलोचना, शिकायत या नकारात्मक राय। लेकिन क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? और क्या हर बात को दिल से लगाना सही है?
1: बिल्कुल नहीं। कई बार कुछ बातों को अनदेखा करना ही सबसे अच्छा जवाब होता है दोस्तों, क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी मानसिक शांति यानी मेंटल पीस बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, अनदेखा करने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं या हमें फर्क नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, इसका मतलब बस इतना है कि हम समझते हैं कि कौन सी बात हमारे समय, ऊर्जा और सुकून के लायक है और कौन सी नहीं।
0: और आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर किसी की राय हमारे सामने आ जाती है। कोई हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करता है, कोई हमारी पसंद को गलत बताता है, तो कोई बिना वजह आलोचना कर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में अगर हम हर बात का जवाब देने लगें तो हमारा सुकून कहीं खो जाएगा, इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है।
0: और कई बार कुछ लोग तो जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश भी करते हैं। वे चाहते हैं कि हम गुस्सा करें या प्रतिक्रिया उन्हें दें।
1: हाँ, लेकिन जब हम शांत रहते हैं और ऐसी बातों को अनदेखा कर देते हैं तो यह हमारी भावनाओं पर नियंत्रण दिखाता है।
0: बिल्कुल, लेकिन एक बात और याद रखना जरूरी है कि हर बात को अनदेखा करना भी सही नहीं होता।
1: बिल्कुल दोस्तों, अन्याय, गलत व्यवहार, ऐसी जो बातें होती हैं उन पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अनदेखा सिर्फ उन बातों को करना चाहिए जो आपकी शांति छीनती हैं और आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं लाती।
0: बिल्कुल, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हर आलोचना, हर बहस और हर नकारात्मक टिप्पणी से उलझाकर नहीं बितानी चाहिए।
1: कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है।
0: तो याद रखिए प्यारे दोस्तों, हर बात का जवाब देना समझदारी नहीं, कुछ बातों को अनदेखा करना भी मैच्योरिटी कहलाता है।
1: बिल्कुल, जब हम अनावश्यक बातों को महत्व देना छोड़ देते हैं तो हमारे पास हमारे सपनों, परिवार और खुशियों के लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा एनर्जी होती है।
0: तो दोस्तों, कुछ बातों को दिल से लगाने के बजाय उन्हें हवा की तरह गुजर जाने दें।
1: क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत होती है और उसे बचाने के लिए कभी कभी अनदेखा करना भी बहुत ज़रूरी है।
0: तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म गोलमाल अगेन से, जिसे आवाज़ दी है नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर ने।

0: दोस्तों, देखते ही देखते ही आज का सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, मगर जाने से पहले आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक, कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
1: साथ ही दोस्तों, आप हमें ईमेल द्वारा भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा ईमेल है youthddn@gmail.com। इसी के साथ आप मुझे यानी शिवानी गढ़वाल
0: और मुझे यानी आयुष भट्ट को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:45 होने को है। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत का सभ्य सुनदरों थे मनोज भट्ट छोड़ बटे सेवा सावली सुन दो सदने के चार आज भी हम आप अपन ले गए छो कुछ रंत रविवार और अपने बोली भाषा का गीत और दगड़मा आज हम आप थे सुनोला एक सुंदर सी ग्राम झांकी। उत्तरकाशी जनपद का मोरी ब्लॉक का गांव कोट गांव की अस्थल रिकॉर्डिंग पर हुई लिया ग्राम झांकी और प्रस्तुति रैली बिने ध्यानी की। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर दूं मैं अभी एक सुंदर सी गड़ली गीत से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
5: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
6: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
5: सच में, क्या क्या है उसमें?
6: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
7: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
8: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
9: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
8: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
9: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
8: और परिणाम?
9: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
8: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
10: सुन दोनों अभी आप सुनी कुछ रैबार, और रैबार उसे पहला पल सुन चाहे अनिल बिष्ट और दगड़ियों का सुरमई सुंदर सी गड़वे गीत। और जन हमें आप थे जन दे छो कि दगड़ियों यू जो रैबार होंगी ना, ये भी बहुत जरूरी होंगी कि लेकिन यू माँ आम जनता, आम जनमानस, आम नागरिक होने की, आम मनखियों होने की चटक चितल रहने की बातचीत होंगी। जन आजकल से फ्रॉड भी होंगे ऑनलाइन, वहाँ कुछ चटक चितल अन्य योजनाओं के बारे में होंगी हूँ रैबारों में, तो यन रैबार भी बहुत जरूरी होंगी। थोड़ा सा कार्यक्रम थे और ऐथर लड़कों, और अब मैं आप थे सुना दूँ एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

सुन रहा हूँ अभी आप सुनना चाहता है शंकर फुलारा की आवाज़ में सुंदर सी कुमाऊनी गीत। और आप सुन दो उत्तरकाशी जनपद का मोरी ब्लॉक का गांव कोट गांव की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम झांकी प्रस्तुति च विनय ध्यानी की।

0: नमस्कार, मैं विनय ध्यानी, आज आप तय ग्राम झांकी का वास्ता लेख चलो दू जनपद उत्तरकाशी को सीमांत ब्लॉक मूरी वखक एक गौच कोट गौ जैसे कि आदर्श संस्कृत गौ का तौर पर भी जने जान और जो सबसे बड़ी खासियत यू एक पर्यटक गौ छो
1: देखी तोरा लेको देखी तोरा बेटे मेरे समुद्रा।
0: आबादी लगभग 1100-1200 की छ। सभी लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े छन और यज्ञ बटी की पथारोहण का कई ट्रैक निकल दिन।
2: अब कहा खानो कहा कमानो कुछ ना डोकरी डिबी सब भांजी खाई गली ना कहा करू ना
0: बोटी। एक पुराण गीत याद आने चु जू कभी आप लगा ना चे जरा सुनाओ दी। युग क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति का खातिर अनूठी बोली भाषा का खातिर जने जान।
3: ओ देवाए मेरा मुलिक सज दो सोमेश्वरा, ओ देवाए मेरा पर्वत सज।
0: लोग संपन्न छन लेकिन खैर भी छन।
4: हमको ज्यादा समस्या नेटवर्क की, नेटवर्क ना दो और हमको जो ये स्वास्थ्य विभाग के इसके हमको दिक्कत आस जैसे डॉक्टर वाग कोई परेशान रहल तो डॉक्टर वाग नहल तो दिक्कत आस जो नजीक हॉस्पिटल आंद तो दिखाइए तो सुविधा रहती।
0: लोग विकास की गतिविधियों से संतुष्ट भी छन।
5: रिक्शे गांव को विदाई के तो उसको सबके पहले की टीन की चलो कम से कम हमारी सड़क तो बनवाई और दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य के उच्चीकरण भी करायो प्रोलब मोरी कब और करो विकास हमले से बात ना करो विकास सिर्फ यो विदाई के।
0: तो आवा आप भी चला हमार दगड़ जनपद उत्तरकाशी को मोरी ब्लॉक और वका को गाँव कोट गाँव। श्रोता भाई बंधु नमस्कार, आज मैं ग्राम झांकी कार्यक्रम का खातिर पहुंचे छू जनपद उत्तरकाशी वकक चू मोरी ब्लॉक और एक बहुत ही प्यारू गौच कोट गांव। युगो अपन पर्यटन का बाना जने जान यक कृषि बागवानी सुंदर हुंद सेब चन लग्या लेकिन इबर इदाबल फसल ठीक नहीं हुए। हम जब गांव में पहुंचा तो सबसे पहली हम सोमेश्वर महादेव का मंदिर में पहुंचा और वह खमन भी घंटी बजाया हाथ जोड़िन और वे के बाद हम यख का जो लोग छन बुजुर्ग छन महिलाएं छन उनको लोक जीवन उनकी खैरी समस्या और विकास पर अब बात करला। तो जय मौका घोर मा में सबसे पहले पहुंचू वो एक बुजुर्ग छन हमारा उनसे जनला।
6: मेरा नाम हरिकृष्ण।
0: हरिकृष्ण जी आप बताएं हम तो ये गांव को इतिहास क्या छ, पहले जमन में आपन कतना मौ पर कतना परिवार छ आज कौन बदलियो को।
6: पहले तो हम श्रीनगर के थे तो श्रीनगर से हमारा दादा आया परदादा आया होगा एक आदमी आयो तो एक आदमी आया तो उसके जो है दो लड़का आए तो दो बटा हमारी के जैसे

0: एक बेटा एक तरफ नयो, एक बेटा एक तरफ नयो। तो आज भगवान की उस राज राजेश्वरी हमारी देवी कुल की देवी से चोरी आनी तीन भी और अपने आप भागी गए वो तो कोटगांव बस।
1: ये कोटगांव खासियत क्या छ, एक माह हम तय कुछ महाराज जी भी दिखेना छन, सोमेश्वर महाराज भी दिखेना छन, तो यूं की स्थापना कब करी आप? एक तरफ राज राजेश्वरी की भी बात करना छन।
0: राज राजेश्वरी तो हमारे साथ आई, हमारे दादा परदादा आनी। अब जो कुल देवता तो हमारे ये कुल देवता से कुछ महाराज यो जो है मोहतवाड़ी गाँव बारह बिशा मात रोत थे छे बारह बिशा। तो बारह बिशा मात जसे तुम को नाट आयो और यो जसे फिर जो है ये वहां से तैचा उड़ी के केदार कांटे नयो केदार के। तो चाहे जब बेडवल था हमारे तो तुम के फूल मांग आयो सो तो जब ये खायो तो ये जब से तो उसको हम प्रचार करे तो फिर वो बनायो तब देवता को मंदिर बनायो तब पूजा लाए।
1: पहले जमन में एक समस्या राहुल बहुत के लिए दूरस्थ इलाका जी है ना, कख जिला और कख आप ब्लॉक, लेकिन आप बिल्कुल एक छोड़ पड़े चन। वे वक्त जो समस्या छे आज उसे दुई चार होगी ना पार होगी ना
0: से पार फोड़ आएगा खत्म से। अब जैसे नई प्रक्रिया है हमारी नौ विवाह बैसाई है, अब कहा खाणो कहा कमाणो कुछ ना डोकरी डिब्बी सब भांजी थाई गली ना कहा करू ना।
1: खेती बाड़ी करना चाहिए का लोग, लेकिन कखी ना कखी हम तो लग रही कि अभी भी कृषि बागवानी की बात होनी चाहिए। गांव को परिचय हरि कृष्ण जी ने बहुत भल के दिया हम तो एक सांस्कृतिक पक्ष राख, लेकिन आज को जो हमारो यु गांव च कुटगांव वे का बाबत यख का एक सामाजिक कार्यकर्ता छन और भल के ये गांव था देखना छन विकास की बात भी करना छन। आवा उनसे बात कर दा, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम भगवती सर।
1: भगवती जी आप बताएं हम तक कि ये गांव का आज बदल रहा, अगर पिछला 10 सालों की बात करा तो कुटगांव कितना बदल गया?
2: पिछले 5 का 10 का 15 सालों की बात कर ले तो अगर पहले की बात करूँ तो पहले जो पर्यटन को मतलब कम बढ़ाओ थो बहुत कम, इक्के दुक्के लोग जाना था कि पर्यटन का चीज है, लेकिन जबकि हरकीदून और केदार कांटा थोड़ा फेमस हो तो तरह लगभग गाँव की स्थिति बदल मतलब पूरी बदल रही। लोगों को पहले तो होम स्टे कहा अपने घर के लिए कम जगह थी, दो ही कमरा एक कमरा था। अब लोगों कहा करे कि लगभग सब यहाँ एक रोजगार देखे कि रोजगार भी और आप लोग घर भी चल रहे तो पूरा गांव पूरा डेवलप आया, सभी होम स्टे बनायो। तो पिछले 10 साल के इस बार तक लगभग काफी विकास हो और रोड भी पहले उबड़ खाबड़ काफी गड्ढा की प्रॉब्लम थी लोगों का आना नाना वहाँ तो 10 साल रहे काफी मतलब काफी बदले गांव को बदले तब जब ये पर्यटन को क्षेत्र आयो। और दूसरा हमारा सबसे मुख्य कहा कि व्यवसाय व्यवसाय मान लोगों कहा करे कि सेब उगायो हिमाचल तो पहले आगो अभी वो अष्ट है, लेकिन अब कहा है कि हिमाचल के तो बारे उत्तराखंड पढ़ो हमारे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोटगांव या पूरे ब्लॉक की बात करूँ तो उत्तराखंड में वो लगभग सेव को काफ़ी लोगों प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा दे तो बढ़ावा दे तो लोगों के आय को साधन मतलब बढ़िया बोले कि आप रोजगार भी मिले और साथ में अपने लिए व्यवस्था भी करिए। लोग
1: यू गाँव हम तो लग दे कि कखी ये पर अचेल कखी ये पर छाया अपार हिमाचल की भी लग जान कह बत हम तो जौन सार भी दिखेण जी यख माँ और आप तो यख छई छन। तो यू जो साझा संस्कृति का दर्शन होंगे यू ये गौत है कुछ और खास बनाना चाहिए?
2: खास बनाना तो ये कि हमारी जो पारंपरिक जो हमारी जो कल्चर है सो अभी हम आगे मतलब है भले उतना ना थी जो पहले तो रात भर लोग तांडी लगाते ना मंदिरों में, लेकिन सो थोड़ा रात को कल्चर कम है लेकिन दिन में जब मेला है तो लोग थोड़ा अपना कल्चर मतलब काफी बढ़ावा देगी।
1: यानी साझा संस्कृति में यखा का लोग रचिया बैसा छन और आज भी अपना मूल तो नहीं छोड़ना छन, ये बहुत बड़ी बात है। और अब एक और हमार दानी हमारे समण वचन कोट जम कयो छ है साफ बनियो मुंड पर नाम क्या चापक
3: मेरो फुरन रे
1: कितना उम्र चापक
3: 70 साल हो गई
1: 70 साल से ऐ छु गया
4: 15 साल
1: कोई बात नहीं छ पेंशन नहीं लगनी लगी छ पेंशन की ना
3: लगी
1: लगी छ तो आप
3: सरकार तू की पेंशन आप गुरु जी के मास्टर की मास्टर तो मर मालिक
1: अच्छा
3: जी पेंशन
1: हाँ नक्तर वो वृद्धावस्था पेंशन बने हुंदे ना मुंह बात करूं चाह गांव में चल चु लोग तो मिली चु ये 70 साल में अपन ये गांव था देखे यकी रहे ना आप सदा नहीं यही गांव में तो खेती बाड़ी क्या हुंचा वे बता
3: क्या अब क्या रिक मन न देने अब पेड़ लाए बगीचा तो किसान होते हैं और का आलू उलू बो और किसान ही दुई एक पेड़वारी
1: अच्छा छानी कक छन आप की गांव का आसपास छन या डांडो में छन
3: मुक्ति छानी दारा पर
1: अच्छा
3: यहाँ मकान ही
1: गोर बछुर भी पल दन भैंसा पल दन छने का लोग
3: वंश नहीं अब जर्सी है एक एक तो आई
1: अच्छा
3: पहले ही नहीं 11 जीवन थे वंश का अब सब बच दे ने न्यू का वंश ते हम को सारे गांव फड़ तो वंश कुछ नहीं रहे चरण संगान का वंश के लिए तो क्या रोकने थे
1: बुढ़ी एक पुराण गीत याद आने चु जू कभी आप लगा ना चाहे जरा सुनाओ दी
3: ना गीत तो जान रो ही नहीं बचपन है क्या जान रो गीत कुछ
1: बचपन बेटे नहीं सीखो चलो कोई बात नहीं धन्यवाद और आप स्वस्थ रहे ना कुछ और लोग से हम बात कर ला नमस्कार आप अपनों क्या चे
4: मेरा नाम रक्षा है
1: अच्छा रक्षा और आप को
4: सुलोचना
1: गांव में जो माता बहन छे ना हमारी उनका समझ में कोई खास दिक्कत परेशानी समस्या क्या देख देना आप जो हमारी यो छे कुटगांव उकमा इस समस्या खास करी माता बहनों का समझ में
4: आम के ज्यादा समस्या नेटवर्क की नेटवर्क ना दो और आम का जो ये स्वास्थ्य विभाग के इसके आम का दिक्कत आसे जैसे डॉक्टर वागे कोई परेशान रोल तो डॉक्टर वागे नाल तो दिक्कत आसे जो नजीक हॉस्पिटल आंदा तो तई छ न आता तो तई छ दिखाइए तो सुविधा रहती
1: अच्छा एक मन नजीक में कखम छ हॉस्पिटल
4: मोरी
1: जान पड़
4: मोरी जान पड़
1: अच्छा तो महिलाओं तक यक मस्वास सेवा का खातिर एएनएम आशा ई छ
4: जे ओस्टेई एएनएम आशा ओस्टेई पर हमार गां पुने रोंदी आशा ओस्टेई हमार गां पुड़ी एएनएम सांगरे रो
1: अच्छा
4: हां तो स्मा थोड़ा दिक्कत आसे और जो समस्या हम के जो है नेटवर्क की
1: यानी जो संचार व्यवस्था जो ठीक नहीं छ फोन नहीं कर सकना छन रील नहीं चला सकना छन
4: कुछ ना चला सकते नेटवर्क आंदो ना को बिना तकासी को यो वाईफाई हो घर में लाइयो तो सी के कर सके तसले पर रिचार्ज हजार रुपया कर जा कर न और सब बेरोजगार लोग ही पढ़ाई लिखाई के बच्चा घर में आ फिर दे लगी है ना नौकरी कुछ ना मिल दी
1: यक तो बना छन पर्यटक गांव चियो पर्यटन खूब चलनु छ तो लोग अपन रोजगार के लिए नहीं करना
4: सी मां करे रोजगार ना पर्यटक मां रोजगार करे सरकारी नौकरी कुछ ना होती जब पर्यटक खुलियो तो हमार बच्चा जो है ऐसी पारो और गे ऐसी मां अपनी व्यवसाय करे ऐसी मां हमार बच्चा आप परिवार को रोजगार करे बाकी और नौकरी कुछ ना पढ़ाई लिखाई भी है एमबीए डिग्री करी और व्यवसाय हमारी जो है ट्रक खुलियो तो असी मां हमारो रोजगार है असी मां हमारो गुजारो
1: आपन बता कि महिलाओं का समण में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है और अगर बोले जान कि पहाड़ मां महिला हर क्षेत्र गांव पहाड़ के रीढ़ छन लेकिन जब वो स्वस्थ नहीं रहा तो कनके कौन बाल बच्चा भी पल नहीं कनके कौन अपन खेती बाड़ी भी करण तो यानी कुल मिला कि ये गांव में जो बड़ी समस्या देखने में आए वो चीज स्वास्थ्य केंद्र की कि अगर स्वास्थ्य केंद्र या खोलू तो यहाँ का लोगों का स्वास्थ्य की जो समस्या है वो दूर हो सके सुलोचना जी के दगड़ रक्षा सिर्फ अपन नो बताया कि यार टेलीफोन पर चल गया कि भाई यार फोन यूं पहल मिला अपन बात करन और बात भी कख हिमाचल किले की ये जो बुआरी चीज यख या हिमाचल बिटे कहीं तो रक्षा हिमाचल और एक माँ कुछ खास अंतर
5: छे बहुत अंतर है हिमाचल और उत्तराखंड है बहुत अंतर है हिमाचल में कान बोले बहुत पहले मतलब सेब हुआई और यहाँ इधे बादल लागे सेब तो हिमाचल में
1: कुल मिलाकर आप तो सेब याद आना बुए बाब याद आने
5: सेब दान राजमा और का नाम बोले रात चावल और मटर हमारे बहुत सारा अभी जो पर यहाँ इधे भी हुआ और यहाँ थोड़ा सेब थोड़ा कम ही दे सेब हमारी माँ चले बहुत दिक्कत है फोन करने में मतलब दूर हम अपने माइकल फोन करू लेता बहुत दिक्कत है
1: अच्छा ये तो वह फोन की बात अब आप हम तो ही बताओ कि खास बात स्वास्थ्य की वजह है आप लोग ये गांव का लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होते ना जन की बच्चों का स्वास्थ्य की आप अपन स्वास्थ्य
5: हमें बहुत ही परेशानी का नाम लई अब कभी सांकड़ी दौड़ो कभी मूरी बहुत दूर है कभी बारिश भी लगा तो बहुत दिक्कत हम क्या हमें सोची का नाम लाए हमारे तो गांव में ही होना चाहिए थोड़ा स्वास्थ्य है ना स्वास्थ्य कार्य
1: कोट गांव में ये बात हम घूमना छुआ देखना छुआ ये गांव है समझना छुआ कि वाकई जन के बताया छा कि साझा संस्कृति को ये गांव छ एक माँ हम एक जवान नोनी से बात करना छुआ आप अखनो क्या छे
6: अनुराधा
1: अनुराधा आप गांव में क्या करना चाहिए बत
6: काम कर दे लगी हूँ
1: क्या क्या करना ये बत
6: इबे तक बिस्कुट निष्ठो अब अट्टी पाचे खानो बाणू नी गाय ले घास आणू नी
1: पढ़े लिखे कत कार आपन
6: मरो बीए सही हो
1: अरे वाह, ये क्षेत्र में हमन बात करी ना लोगों से तो बोलता चाहे कि साहब पहले नो नहीं था पढ़ाना नहीं चाहे ज्यादा, लेकिन आपन तो फार बीए कर दिया। वो एक बात
6: सुना आती, अच्छा पढ़ा से अच्छा सज्जो वालों सिस्टम ना आती ना कि छोरी ना पढ़ा चाहे छोरी छोरियों को बड़ा

0: ठाकुर दर्जा और छोरियों का बल्कि चो दर्जा दसी। अच्छा बढ़िया से मतलब छोरियों का मतलब बहुत सपोर्ट करे छोरियों को।
1: अरे वाह ये अच्छी बात है। आपका पढ़ना कौन गए कि एक माह हम तय उच्च शिक्षा की तो कोई व्यवस्था दिखेणी नहीं।
0: हम परोल नाए ना परोल के पढ़े परोल ते डिग्री कॉलेज है ते करे हम कॉलेज। ओ वाह कुल की दूर है ना कॉलेज है चेना नौ 15-20 किलोमीटर दूर है से तो अचे दिक्कत हा से ना आने तो तच्ची के करे हम ओपन के।
1: गाँव के आप जो सहेली छन खूब पढ़ना छन लिखना छन कुछ अपना रोजगार करना छन कोई नौकरी पर कोई बड़ी उपलब्धि कहन करी।
0: पढ़ दे भाई बे तो सारी पढ़ दे सी लगी और बाकी अशो ना मतलब जो 26-27 साल माँ तो छोरियों की शादी कराए तो ते पढ़ाए वे छोरियों तो अभी तो पढ़ दे लगी फिलहाल तिबे कोई ना आती नौकरी पर तो कोई ना आती लगी।
1: धन्यवाद बहुत बहुत अनुराधा। ग्राम झांकी माँ अब सुलोचना जी अपना जो दगड़ा छन एक मैं बैठे हूँ दगड़ एक यखक कोई आंचलिक गीत हम तो सुना ला तो ग्राम झांकी में पता चल कि हम हाँ मोरी ब्लॉक का सुदूरवर्ती गाँव कोट गाँव छो तो सुनाओ दी
0: लेको।

0: দোয়েরি নথুলি গাড়া কি নথুলি চাংশিলি গাড়া কো বাসি গো চৈয় মেরো হর কি দুনায়ে পাড়ু কো পিয়ারু জো খন্ডা হিমে কো চাংশিলো চৈয় এক আমার যো ইষ্ট দেব সোমেশ্বর মহারাজ এক তো ইসকু গানো কো দেবায়ে মেরা মুলিক সজ দো সোমেশ্বরা ও দেবায়ে মেরা পর্বত সজ দো সোমেশ্বর ও দেবালে পইলা কো থানো তেরো জকল ও দেবায়ে মেরা মুলিক সজ দো সোমেশ্বর
1: কোট গাঁও কে হমন ইয়া ঝাঁকে আপ তক পৌঁছায় যখমা লোক জীবন কা রঙ ছায় খেরিউ কি বাত হুয়ে আর বিকাশ কি নয় তলাশ হুয়ে লোকন বতায় স্বাস্থ্য উনকি সবসে বড়ি জরুরত চিয়ে বত পর্যটন ব্যবসায় মা ভি অভি সড়ক কি জরুরত আর আব ইয়ে ক্ষেত্র মা বিকাশ কি ক্যা সম্ভাবনায় হয়ে সকদেন আবা জানদা একদা ফির সে ভগবতী উনিয়াল জি আপসে হমন শুরুয়াত মা ভি বাত করি আর আব ফির পুছনা ছুয়া কি ইয়ে ক্ষেত্র কু বিকাশ কা খাতির সরকার সে বড়ি মাং ক্যা চ আর ক্যা আজি হর হুন চেন
2: सरकार के मांग तुम्हारी है ना कि जो हम जो पहली वो जब विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा चुनाव हुए तो सबके पहली मांग तुम्हारी मुख्य थी कि हमारी सड़क बने। अब सड़क को काम तो खैर सरकार ने बधाई के पात्र है कि कम से कम हमारी सड़क तो बनी, कम से कम बन रही, कार्य चलियो। लेकिन अब मेन समस्या हमारी है कि स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि हम के मोरी के जैन आना ना काफी दूर है, तो वो जब मोरी तक पहुंचने पहुंचने आदमी कभी डेथ था बोले कि स्वास्थ्य इतनी दूर केंद्र इतनी दूर है कि तैसे प्राथमिक उपचार मिल दो ना, तो हमको सबके नजदीक थोड़ा सांकृत हो जो पर्यटन के क्षेत्र में वो काफी आगू है, क्योंकि जब पर्यटन आशे तो उनके लिए सबके मेन चीज है कि स्वास्थ्य के लिए कुछ सुविधाएं हम आ गए।
1: एक बात उनियाल जी, आज का ये समय में जब हम कई क्षेत्र के विकास की बात करना ना, वे माँ हमारा जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा दे। ये क्षेत्र में क्या लगनो आप तक कि जो हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि छन, हमारा विधायक छन, हमारा सांसद छन, उनको क्या रुझान रहें ये दूरस्थ क्षेत्र में?
2: देखो सांसद की बात करो तो सांसद तो खैर कुछ भी ना, 0% है सांसद को, क्योंकि सांसद सिर्फ वोट मांगना है और चले गए। अब विधान फिर चुनाव आना, फिर वोट मांगना और फिर चुनाव आना। लेकिन हाँ विधायक को शो कि थोड़ा विधायक हमारा अपने घर को मान के चलो को, लेकिन रेक्चे गाँव को विधायक है तो उसको सबके पहले की तीन ये की चलो कम से कम हमारी सड़क तो बनवाई। और दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य के उच्चीकरण भी करायो, प्रोलभ मोरी कबू और करो विकास, हम ले बात ना करो विकास, सिर्फ ये विधायक ऐसे विधायक तो बहुत आए पर आप अपने हिसाब के यहाँ पर विकास।
1: अच्छा जनता जागरूक छ विकास का प्रति?
2: बहुत, अत्र के डेट में तो बहुत जागरूक, अत्र तो लोग ये सोचे कि रुपया ना दे हमें व्यवस्था करो।
1: अगर जनता जागरूक छ तो पक्की बात छ वक्त समस्याओं कोई बात नहीं हूँ, विकास का नए द्वार खुल दिन। और जन की उनियाल जी बताना चाहे कि ये क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं छन, खास कर ये गाँव की मांग छ कि यक स्वास्थ्य सेवाओं तक और विस्तार दिए जाए। भगवान सोमेश्वर से और कुश महाराज से हम भी प्रार्थना करदा कि ये क्षेत्र तय नई दिशा मील और विकास का नए कार्यक्रम ये गाँव में संचालित हुए, जल्द से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हो ये कामना का दगड़ी। मोरी ब्लॉक का ये दूरस्थ गाँव जो कि एक पर्यटक गाँव च कोट गाँव वक बटकी मैं विनय ध्याने अब वापस लौटना चाहूँ अपन आकाशवाणी स्टूडियो।
3: सुन दो अब आप सुनना चाहे उत्तरकाशी जनपद का मोरी ब्लॉक का गांव कोट गांव की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम झांकी और प्रस्तुति छाई बिने ध्याने की। तो सुन दो अब जरस और ऐथ लड़कनों कार्यक्रम था और सुन दो एक सुंदर सी जौन सारी गीत।

0: सुंदर निधि राणा का गया एक गीता गीत गढ़ अब भगत गया उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार हम भिटोला आप दगड़ हैं कि पाली माँ
1: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उत्तराखंड उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। और अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 सीईई परीक्षा संपन्न। परिणाम घोषणा के बाद जल्द शुरू की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर में सेब, अखरोट और बादाम सहित उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के उत्पादन के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़ी नर्सरी स्थापित करने वालों को 4 करोड़ रुपए व छोटी नर्सरी स्थापित करने वालों को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के चौबटिया में 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के सहयोग से 15 करोड़ रुपए की लागत की विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री ने 9 योजनाओं का लोकार्पण व 32 कार्यों का शिलान्यास किया। राज्य सरकार जल्द ही 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना की धनराशि जारी करेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना के तहत 484 महिलाओं को पहली किश्त पहले ही दी जा चुकी है और अधिकांश महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर चुकी हैं। श्रीमती आर्या ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।
1: एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है उनको समर्पित की है, ताकि वो अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर पाए। तो 484 लोग अपने स्वरोजगार लगभग किए हुए 3 महीने या 4 महीने करीब हो गए हैं। लोगों ने अपना स्वरोजगार को अब स्थापित भी किया है, जो बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही हमें शेष जो है 211 महिलाओं को अभी एकल महिला स्वरोजगार योजना से और जुड़ना है, जिसको लेकर आज विभाग की बैठक करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय का आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द समय दें, ताकि जो है 211 जो हमारी शेष महिलाएं हैं 2025-26 की, तो उनको हम जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना से उन्हें डीबीटी करते हुए उनको उनके स्वरोजगार करने के लिए जो है उनको हम आर्थिक मदद कर पाए।
0: सीमांत जनपद चमोली में इन दिनों चार धाम व हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। तनाव मुक्त वातावरण में 2 माह में बद्रीनाथ धाम में अब तक 13,04,000 व हेमकुंड साहिब में 1 माह में अब तक 1,43,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इसके साथ हेमकुंड साहिब में माथा टेक चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बीते दिनों कर्णप्रयाग में हुई घटना के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और अब यात्रा पूरे जोर पर संचालित हो रही है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य में पहली बार उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। इससे न केवल राज्य के मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। राज्य की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों ने उत्पादित ट्राउट मछली का निर्यात किया है। इन मछलियों को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23,50,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन पर 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से भी संपर्क स्थापित किया है, जिससे भविष्य में निर्यात की संभावनाएं और मजबूत होंगी।
3: ये देखिए, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने फिशरी सेक्टर को पिछले 4 साल में लगातार सपोर्ट करके इस स्थिति में पहुंचाया कि आज हमने पहली बार पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन अपनी हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके, ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोजगार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे वो काम करने के लिए।
0: हरिद्वार में विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया।

0: कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं देश भर में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति लगातार नशा मुक्त अभियान को गति दे रही है, इसके अलावा युवा भी जागरूक हो रहा है।
1: नशा मुक्त भारत अभियान 17 जून से प्रारंभ होकर और आज इसका समारोह देव संस्कृति विद्यालय के इस पावन परिसर में शांति कुंज से प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर में विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन किया गया। ऐसे में सिर्फ 3 राज्यों को, 3 जिलों को और 3 प्रमुख NGO को सम्मानित भी किया गया। और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है, ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंत प्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, सशक्त होगा, तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
0: थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के ARO कर्नल महेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित CE परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सेना की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्नल महेश कुमार ने बताया कि ARO अल्मोड़ा के अंतर्गत आने वाले अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अभ्यर्थियों के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उत्तराखंड उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। और अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 CE परीक्षा संपन्न। परिणाम घोषणा के बाद जल्द शुरू की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर स्वागत है सभी सुनदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत में और मिचो आपक दगड़िया मनोज भट्ट। तो दगड़ियों, आज एक विशेष दिन भी आज 26 जून और आज मने जाने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस। और बिल्कुल ठीक बात भी अच्छी बात भी किले की आज को जो समान च युवा पीढ़ी च समाज च वहाँ में क्या कि नशा को थोड़ा बढ़नु च प्रकोप। लेकिन जब बटे कि यन कार्यक्रम यन दिवस मनाने को मुख्य उद्देश्य ये होंद कि हम अपना आने वाली पीढ़ी थे या जो नौजवान दगड़े छिन उन्थे ये अभिशाप से बचा सका। किले कि नशा एक बहुत बड़ू अभिशाप ही बोले सकते हो या होने कि यो समाज थे आने वाली पीढ़ी थे और पूरा गांव, पूरा देश, पूरा प्रदेश यो खराब कर दी। अगर यहाँ की लत जैसे लग जान तो एक जीवन भी बर्बाद हो जाते। तो हम थे यहाँ से बचन चढ़ना चाहिए। यहाँ खुणे कि देश भर में विभिन्न कार्यक्रम भी चलना चाहिए और ये दिन भर जो कि ये दिन थे मने जान समाज थे चटक चिटोल रहने का खातिर। और अब कार्यक्रम थे थोड़ा सा एथर रड़कन दूँ और सुन दूँ एक सुंदर सी गड़ल गीत। लेकिन गीत का एथर पैथर कुछ रैबार।
3: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
4: यार, 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
3: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून। 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
5: सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेमनगर, देहरादून। सफलता के कदम सुभारती के साथ। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: The all new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: जिंदगी अनमोल है दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन
5: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी
6: सुनदरों भी आपल सुन रहे बारू का दगड़ दीपा चौहान का स्वर में सुंदर सी गड़ल गीत और अब आज का ग्राम जगत संपन्न करने की मनोज बढ़ते यख में देवा अनुमति नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब वक्त है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम मंगाई। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्र योजनाओं को लोकार्पण करी किसानों बटी प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों थे अपनान का आह्वान करी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन, घटती भूजल स्तर और माटे की बिगड़ता स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर देनी। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बटी 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछों तय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठे गयी। और नशा का खिलाफ जनगणना अभियान चलान का वास्ता हरिद्वार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार का भी समझौता वाई। अब समाचार विस्तार बटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोली कि उत्तराखंड थे बागवानी का क्षेत्र मां नहीं पहचान दिलान का वास्ता और किसानों की आय बढ़ान का वास्ता केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठानी चा। रुद्रपुर मां केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण और खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम थे संबोधित कर दे बगत उन किसानों बटे आधुनिक तकनीक अपनान का वास्ता प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों थे बढ़ान देण को आह्वान करी। केंद्रीय मंत्री ने बोली कि किसानों थे गुणवत्ता और रोग मुक्त डाल उपलब्ध कराण का वास्ता मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपयों की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करे जालू। ये का अलावा अल्मोड़ा का चौबटिया मां भारत नीदरलैंड सहयोग बटी 15 करोड़ रुपयों की लागत से सेंटर ऑफ

0: आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन, ये धरती माता लगातार खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य। लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो।
1: केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घड़ी भूजल स्तर और माटे की बिगड़ स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर देने। उन बोली कि विकसित भारत को लक्ष्य तभी पूर्व होलू जब कृषि विकसित होली और किसान समृद्ध होला। वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित द्विदिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन थे संबोधित कनाछा। ये अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व छात्रों बटी कृषि अनुसंधान नवाचार स्टार्टअप और युवाओं का मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देण को आवाहन करी। उन बोली की पर्वतीय कृषि छोटो जोत, जंगली जानवरों से फसलों थे होने वाला नुकसान, पलायन और जलवायु परिवर्तन जिन चुनौतियों को सामना करना छन, जका समाधान अनुसंधान और नवाचार से संभव चा।
2: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
1: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों का स्टॉलों को निरीक्षण करी, विद्यार्थियों से संवाद करी और सट्टियों की रूपणी में भी हिस्सा लिया।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: उत्तराखंड बटी राज्य गठन का बाद पहली बार 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछो थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजे गया। मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बौणन देहरादूनम प्रेस वार्ता में बताई कि पिथौरागढ़ जिला का धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों ने राज्य सरकार का सहयोग बटी नेपाल थे माछा निर्यात करी।
4: मत्स्य विकास मंत्री ने बताई कि माछोते कोल्ड चैन के माध्यम से गुजरात का वेरावल भेजे गए, जग उथे प्रसंस्करण के बाद 23 जून खुणी नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करेगी। ये से 33 माछा पलन वालों थे लगभग 23,50,000 रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। ये निर्यात थे प्रोत्साहित करना खुणी मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन खुणी 5,40,000 रुपए की सहायता भी उपलब्ध करे।
5: पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोजगार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे।
4: श्री बहुगुणन बताई कि विभाग अब यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भी निर्यात की संभावना पर काम करनु च और आने वाले दिनों में लगभग 30 टन माछोक निर्यात की तैयारी करे जानी च। उन बताई कि साल 2024 में ITBP दगड़ हुईया समझौता के तहत अब तक 45.10 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की आपूर्ति करे जा चुकी है, जैक मूल्य 2,10,00,000 रुपए च। आकाशवाणी देहरादून कुणी समाचार कक्ष बिटी अमित सुंदरियाल।
1: विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस का अवसर पर हरिद्वार में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह को समापन हुई। ये दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे गये। ये के तहत द्विदिवसीय

0: का वास्ता दुया संस्थाएं देश भर में नशा का खिलाफ जनजागरण अभियान चले की लुखू तय जागरूक कर ली। ये अवसर पर शांति कुंज बटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक निकले ग्याई नशा मुक्ति रैली में 2000 से ज्यादा स्वयं सेवकों युवाओं महिलाओं और विद्यार्थियों ने भाग ले की नशा मुक्ति भारत का संकल्प लियाई। कार्यक्रम थे संबोधित कर दी भगत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार बोली कि नशा केवल आदमी ही नहीं बल्कि पूर्व परिवार और समाज से प्रभावित कर दू। उन बोली कि जब देश को युवा नशा से दूर होलू तो भारत अपनो विकसित राष्ट्र को लक्ष्य थे पाण की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लू।
1: और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा जागरूक होगा सशक्त होगा तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
0: उत्तराखंडम दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगमन की परिस्थितियां अनुकूल वे गई। मौसम विभाग के अनुसार अगला 3 से 4 दिनों में मानसून राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंच सकदू। की का दगड़ी ही पर्वतीय जिलों का वास्ता गगड़ाट चमकाट तेज बरखा और झोंकदार हवाओं थे लेकर येलो अलर्ट जारी करे गया। मौसम विभाग केंद्र देहरादून 30 जून तक पर्वतीय जिलों में कखी कखी गगड़ाट चमकाट का दगड़ी आकाशीय बिजली चमकण और बरखा का तीव्र से अति तीव्र दौर और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकदार हवा चलन को अनुमान जताई। 30 जून खुण पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला में कखी कखी भारी बरखा होने की भी संभावना चा। उखी अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नीचा लेकिन यहाँ का बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती। मौसम विभागन लुखू से खराब मौसम का दौरान सतर्क रहने की अपील कैरी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियालन आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कैरी। ये दौरान द्वीय नेताओं के बीच उत्तराखंड का विकास और विभिन्न जनजातीय और सामयिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री उनियालन सीमांत क्षेत्रों का विकास और राज्य का सामरिक महत्व थे लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना कैरी। उन बोली कि उत्तराखंड की प्रगति और सुरक्षा से जुड़ा विशेष विषयों पर केंद्र सरकार को सहयोग राज्य का विकास है नई दिशा देना छन। ये अवसर पर उन उत्तराखंड का प्रति सहयोग और मार्गदर्शन का वास्ता केंद्रीय रक्षा मंत्री को आभार भी व्यक्त करे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लोकार्पण कैरी। किसानों से प्रकृति खेती और पारंपरिक फसलों थे अपनान थैले की आवाहन कैरी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन घटती भूजल स्तर और माटे की बिगड़दा स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर देनी। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड से 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछों थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठे गयी। और नशा का खिलाफ जन जागरण अभियान चलान का वास्ता हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार का भी समझौता हुआ। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:01 हो रहे हैं और प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान साथियों राम राम। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। आज आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी नई नई जानकारी हासिल कर अपनी फसल से अच्छी आय प्राप्त करें। इसी के तहत आज हम बात करेंगे कृषि यंत्रों का रखरखाव, इसके अलावा चारे वाली फसलों के उत्पादन पर भी चर्चा करेंगे। भेंट वार्ता का विषय रहेगा नशा मुक्त भारत अभियान। साथियों, पशुपालन व्यवसाय में लगभग 70% खर्च पशु आहार पर ही होता है। ऐसे में हरे चारे की खेती करके किसान अपने पशुओं के लिए तो साल भर पौष्टिक चारा प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही अन्य पशुपालकों को भी चारा उपलब्ध करवाकर कमाई कर सकते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग चारे की बुआई की जा सकती है। बरसात और गर्मी के मौसम में ज्वार, जिसे हम चरी कहते हैं, मक्का, बाजरा और दलहनी चारे में जैसे लोबिया आदि की खेती भी कर सकते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में बरसीम और जई की बुआई कर सकते हैं। साथियों, चारे की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई से पहले बीजों का फफूंदनाशक से उपचारित जरूर कर लें। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की जांच भी जरूरी है। साथियों, सामान्य तौर पर खेत की अंतिम जुताई के समय 10-12 टन सड़ी गोबर खाद जरूर मिलाएं। इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग भी जरूर करें। गर्मियों में 8-10 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पहली कटाई बुआई के 60 दिन के बाद और उसके बाद 40-45 दिन के अंतराल पर कटाई करनी चाहिए। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये रागनी, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
5: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
7: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे चारे वाली फसलों के उत्पादन पर। अब आपकी भेंट करवाते हैं डॉक्टर मुकुल शर्मा से। भेंट वार्ता का विषय रहेगा नशा मुक्त भारत अभियान। डॉक्टर मुकुल शर्मा से बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा जी।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकुल शर्मा को। आप मनोवैज्ञानिक हैं और नशा मुक्त विशेषज्ञ हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे नशे का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मुकुल शर्मा, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद। नशा बीमारी है, जैसे बाकी बीमारी हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है, वैसे ही नशा भी एक बड़ी बीमारी है
1: जी।
2: इसको मानसिक बीमारी कह सकते हैं।
1: मानसिक स्वास्थ्य पर नशे का क्या प्रभाव पड़ता है?
2: नशा जो अलग अलग तरह का नशा होता है, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का नशा कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और पैनिक अटैक में ले जाता है, और जो सपने उसने सजोए हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा, उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी क्रम में अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स जीवन को बर्बाद कर देता है, और ये रिकॉर्ड्स हैं, सर्वे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, कि जो ड्रग्स है, जो खतरनाक ड्रग्स हैं, जो अल्कोहल के बाद

0: वाले व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं, और 10 से 12 साल के अंदर लगभग 70% केसेस के अंदर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता।
1: डॉक्टर मुकुल, आज के समय युवाओं में जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं?
0: युवाओं में कुछ साल पहले जीवन को लेकर के बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा थी, आजकल जीवन क्या है और उसमें क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए, इसका अभाव है। माता पिता भी बहुत कम समय दे रहे हैं बच्चों को, बच्चों को नहीं मालूम है, युवाओं को नहीं मालूम है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन शैली क्या है। उसके ना होने से बहुत छोटी समस्या पे, छोटी समस्या अगर स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई फियर है, कोई ब्रेकअप है, कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई बुलेट चला रहा है, तो बहुत छोटी बातों से युवा परेशान हो जाता है। जो आसपास के स्कैम एंड स्कैंडल चल रहे हैं उनको घेर लेते हैं।
1: डॉक्टर मुकुल शर्मा, अभी आपने कहा युवा परेशान हो जाता है, माता पिता भी ध्यान नहीं दे पाते, माता पिता को क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो दुर्व्यसन है इनसे दूर रहे?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता पिता की जो संपत्ति है चंद्र साहब, उनकी संपत्ति उनका घर नहीं है, उनकी गाड़ियां नहीं है, उनकी संपत्ति उनका बच्चा है। आज की डेट में एक या दो बच्चे हैं, अगर एक दो बच्चों को भी माता पिता सही से उनका लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और बच्चा युवा, उनका बच्चा और बहुत सारे युवा ड्रग्स में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी माता पिता की है। तो माता पिता को यह समझना पड़ेगा कि हमारी असली संपत्ति, हमारे राष्ट्र की संपत्ति, हमारे परिवार की संपत्ति, राज्य की संपत्ति और हमारा भविष्य हमारा बच्चा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
1: अगर किसी युवा को नशे की लत लग गई है तो उसकी आदतों में शुरुआत में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे?
0: शुरू में अगर वो अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स में है तो वो छुप कर रहेगा, वॉशरूम में बहुत टाइम लगाएगा, बहुत लंबा सोएगा, उसका सिस्टम अगर ऑफिस जाता है या कॉलेज जाता है या कुछ करता है वो गड़बड़ हो जाएगा, खाना बहुत ज्यादा खाएगा, मे बी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, और उसकी बातों में ऐसा लगेगा कि वो अलग डिफरेंट बात कर रहा है। आसपास के लोगों को, खासतौर से माता पिता को, बड़े बहन भाइयों को, भाभी को ये मालूम पड़ जाता है कि बच्चा अलग चल रहा है। इनिशियली बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है, फंक्शन में नहीं जा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, यहाँ तक कि कॉलेज कम जा रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स पे कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया हो जाता है कि हमारे जो बच्चा है वो नशे के अंदर है, उसको जांच करना चाहिए, और जब मालूम पड़ जाए कि नशे में है तो खुद कोशिश करें, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सपर्ट की सहायता लें।
1: बच्चे को नशे की लत में जो आपने कुछ लक्षण बताए, ये उस बच्चे में या व्यक्ति में दिखाई देंगे, घर वाले क्या कर सकते हैं?
0: आजकल एकल परिवार है, यूनिट्स हैं, उसमें 4-5 लोग से ऊपर नहीं है एवरेज, और आप शाम को कुछ सिस्टम जरूर बनाएं कि शाम को खाना साथ में खाएं, और उसमें ऑब्जर्वेशन रखें बच्चे के साथ, टॉक करते रहें, उसके टीचर से, जो ट्यूशंस के टीचर हैं या कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं, उनसे टच में रहें, उसके बारे में बात करते रहें। जितने नंबर वो लेके आ रहा था, अगर वो 80% बच्चा मार्क्स लेके आ रहा था, अचानक से उसके अगर 60 आ रहे हैं या फेल हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं। ऐसे 10-15-20 अलार्मिंग चीजें हैं जिस पर हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चा हमारे जो पथ है, जो मुख्य धारा है, उससे हट गए। और इसको चेक करने के बाद अपने मामा से, चाचा से, बुआ से, पड़ोसी से, दोस्त से उसकी काउंसलिंग कराएं, खुद ना करें, खुद वो नहीं बताएगा आपको कुछ भी, और तब भी अगर नहीं हो रहा है तब वो एक्सपर्ट की सहायता लें।
1: डॉक्टर मुकुल शर्मा जी, अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसे नशे की लत लगी हुई है, तो उपचार क्या है नशा को दूर करने के लिए?
0: सबसे पहले उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं नशे में हूँ
1: जी।
0: दूसरा उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं नशे को छोड़ना चाहता हूँ, और तीसरा ये कि वो जहां भी जा रहा है, जो भी मेडिकेशन पर है या मेडिकेशन पे नहीं है या थेरेपी पे है या अपने क्लोज कजन से, मामा से, चाचा से, दोस्त से या फादर या मदर के फ्रेंड से बात कर रहा है, तो उनको काम करने का एक्सेस दे। लगभग 70% केसेस के अंदर जो बच्चे, जो युवा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं वो एक्सेस नहीं देते, वो अपनी बात बोलते हैं, बचपन की बात बोलते हैं, मैं इसलिए कर रहा था, मम्मी ने ये किया, पापा ने ये किया, मैं फेल हो गया, और वो अपना एक्सेस की, उनको अगर कोई एक बात बोली जाए कि करनी है तो वो नहीं करते। तो ये एक्सेस देना बहुत जरूरी है एक्सपर्ट को, कि अगर वो कुछ कह रहा है तो वो उसको करे। जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो एक्सेस देना जरूरी, चलो जी मेरी बॉडी आपके साथ है और आप मुझे बेहोश करके आप मुझे मेरा ऑपरेट कर सकते हो, ये एक्सेस देना हुआ। तो ऐसे ही नशे के व्यक्ति को मैंने देखा है, जो मैंने बताया 60% केसेस के अंदर वो एक्सेस नहीं देता, वो आता है अपनी बात को बोलता है, कभी टाइम से नहीं आता है, कभी नहीं आता है, और फिर वो नहीं आता है। जब तक वो एक्सेस नहीं देगा तब तक कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी डॉक्टर उसके साथ काम नहीं कर पाएगा।
1: आजकल नशा मुक्त केंद्र भी देखे जा रहे हैं, इनकी क्या भूमिका है?
0: देखिए आज से 10 साल पहले लगभग 17-18 हमारे नशा मुक्त केंद्र थे देहरादून जिले में, आज लगभग 200 के आसपास हैं
1: जी।
0: 138 तो हमारे देहरादून में हैं, जिसमें से 70% से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है, और वो सब लोग 100% जो संचालक महोदय हैं वो खुद भी नशे में रहे हैं और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है
1: जी।
0: तो जो सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए नशा मुक्त केंद्र का, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है
1: जी,
0: लेकिन जो सिस्टम वो बताते हैं सरकार को या सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम वहां पर नहीं है। वो सिस्टम 40% भी देखने को नहीं मिलता। जबरदस्ती उठा के वो ले आते हैं और उसका मारपीट करते हैं और उससे वापस से जो मुख्य धारा होती है बच्चा जुड़ नहीं पाता। 6 महीने उसको रखते हैं, 6 महीने के बाद वापस जाता है और 1-2 महीने में लगभग 73% केसेस में वापस आ जाता है।
1: जी
0: मैं कई लोगों से मिला हूं जो लगभग लगभग अपने 40 साल के करियर में लगभग 40 नशा मुक्त केंद्र में रह चुके हैं। तो जो प्रोसेस है उसका, उसमें सब लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। नशा मुक्त केंद्र तो अगर उनको ट्रेनिंग नहीं होती या उनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उनके पास, तो नशा मुक्त केंद्र की जो हालत है, जो उनका एक रिकॉर्ड निकल के आया है कि नशा छोड़ देगा, वो 5% से ऊपर नहीं है।
1: किस तरह के नशा मुक्त केंद्र में अगर बच्चा नशा कर रहा है तो ले जाए ताकि वो नशे से दूर हो जाए?
0: जो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, वो मेडिसिन पे नहीं खा रहा है, मेडिसिन फेंक रहा है, वो काउंसलिंग नहीं ले रहा है, वो थेरेपी नहीं कर रहा है, वो घर वालों की नहीं सुन रहा है, वो कमरा बंद कर लेता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो घर से भागने की कोशिश करता है, वो अपने को काट पीट करने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल एक्सेस ही नहीं है। जब बिल्कुल आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये चोरी से पूरी बोतल ले आता है, ये ड्रग्स खरीद रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, पैटलर बन गया है,
1: जी
0: उस केस में उसको बता के कि हम आपको 10 दिन और देख रहे हैं या आपको इतने समय और देख रहे हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको हम नशा मुक्त केंद्र में मजबूरी में भेज देंगे, उसको बताना जरूरी है। 90% केसेस के अंदर उस व्यक्ति को या उस युवा को नहीं बताया जाता कि रात को 3 बजे या सुबह 3 बजे एक गाड़ी आएगी और आपको उठा के ले जाएगी मारपीट करके। तो ये तरीका गलत है। जब उसके मन में ये होगा कि 10 दिन मुझे दिए गए, अगर मैं 10% भी अपने आप को ठीक कर लूं तो मैं नशा मुक्त केंद्र में नहीं जाऊंगा, अन्यथा मुझे जाना पड़ेगा, तो चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाए, बेटर हो जाए।
1: नशा मुक्ति के दौरान भी जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको तमाम मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
0: देखिए, जो जेल है उस जेल की तरह ही वो एक तरह से नशा मुक्त केंद्र होते हैं। मोबाइल नहीं होता है, घर वाले नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा जो घर में एक्सेस था टीवी का था, खाने पीने का था, खेलने का था, वो सब नहीं होता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, तो उसको सिर्फ नशा नहीं मिलता वहां पर। और नशा ना मिलने से हो सकता है कि 5% केस में नशा छोड़ दे, लेकिन बाकी उसको अवसाद हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने जो माता पिता हैं, जो बहुत क्लोज हैं,
1: जी,
0: जो बहुत प्रेम करते हैं, जो बहुत आदरणीय हैं, उनका साथ वो छोड़ देता है कि मेरे माता पिता ने मुझे इतनी गंदी जगह, जेल से भी खराब जगह पर भेज दिया जहां पर मेरे साथ मारपीट होती है।
1: जी,
0: तो वो थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है।
1: आज के समय हम बात करें तो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, इनमें भी नशे की प्रवृत्ति देखने में आ रही है।
0: महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो शराब भी क्यों ना पिए, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो उनका भी क्यों नहीं, हम भी युवा है, बीटेक कर रहे हैं, IAS है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी करती हैं। लेकिन नशा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जब आपकी जो मुख्य धारा है, जो आपके संस्कार, सभ्यता, संस्कृति है, जो आप करना चाहिए, जो माता पिता का सम्मान है, समाज का सम्मान है, आपको करियर बिल्ड करना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, वो सब आप नहीं कर रहे हो, नशा ही कर रहे हो, नशा भी नहीं, नशा ही कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ नशेड़ी हो। वो नशेड़ी होता है कि 24 घंटे में उसको एक ही टॉक करनी है, मेरे को तो ड्रग चाहिए, मेरे को इंजेक्शन चाहिए, तो वो नशेड़ी है। तो इससे महिलाएं भी पीछे नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे 10 साल के अंदर रिकॉर्ड में देहरादून में लड़कियां पैटलर्स नहीं होती थी, लेकिन मैं खुद लगभग 10 लड़कियों से मिला हूं जो पैटलर हैं, और 10 में से लगभग 7 लड़कियां इतनी डायनेमिक, इतनी होनार, इतनी इंटेलिजेंट हुआ करती थी। मैं उनको रिहैब में ही मिला
1: जी,
0: और जब मैंने उनके बारे में बात की तो मालूम पड़ा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट थी, ये तो बीटेक 4th ईयर में थी, एक ने PCS प्री एग्जाम निकाला था, एक मर्चेंट नेवी में जाने वाली थी कुछ वहां पर, तो वो नशे के चक्कर में खत्म हो गई। तो लड़कियां भी हैं, इसमें लड़का लड़की की बात नहीं है। आज की डेट में साहब, मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का व्यक्तिगत अवलोकन है, उसमें पुरुष और महिला और ये कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया, अब सब लोग बराबर हैं, सब किचन में काम कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब कुछ इक्वल हो गया है।
1: ऐसा क्या करें घर वाले या जो समाज के लोग हैं ताकि ये जो दुर्व्यसन है नशा वाला, ये हमारे समाज से या परिवार से दूर हो जाए?
0: मेरा जो भी लोग ये सुन रहे हैं उनको हाथ जोड़ के आग्रह है कि हमने लगभग 4 प्रांतों में लगभग 3,70,000 युवाओं को ये शपथ दिलाई है, नशे से निकाला है कि नशा ना करें। माता पिता को ये समझना होगा कि हम भारत जैसे राष्ट्र में रहते हैं जो कि सभ्यता के लिए, संस्कार के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। आपका राष्ट्रगान, आपका तिरंगा, आपका अपना बच्चा है, बच्चा मतलब आपका बेटा और बेटी, अब कोई डिफरेंस नहीं है इन चीजों के अंदर, उनका ध्यान रखें। कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, सोशल को साइड रखें, आपके बच्चे आपकी संपत्ति हैं, उन बच्चों पर वॉच रखें, उन बच्चों को दोस्त बनाएं, उन बच्चों को अच्छा बुरा सिखाएं, उन बच्चों को भारत का संस्कार सभ्यता सिखाएं। और अगर आपका बच्चा नशे में चला गया है किसी भी तरह से और आप पिछले 4-5 साल से उन पे काम नहीं कर पाए, तो आज ये आप प्रण ले लें, कसम खा लें कि मैं अपने जीवन में अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से निकाल कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी एक्सपर्ट से मिलना पड़े, कोई भी एक्सेस देना पड़े और कुछ भी करना पड़े। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं आज, तो आपका लगभग 70%

0: काम आज ही हो जाएगा और बच्चे को आप निकाल लें।
1: डॉक्टर मुकुल शर्मा, अक्सर टीवी पे देखने में आता है, अखबार में भी कभी कभी पढ़ने को मिलता है कि जो नशा कर रहे हैं व्यक्ति, उनको बिना बताए कोई चीज है उसकी कुछ बूंदें जैसी वो बताते हैं, इतनी मात्रा उसके खाने में मिला दो। इन सब का क्या प्रभाव आपने देखा है नशा को छोड़ने में?
0: उसमें जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति नशा कर रहा है वो नहीं मानता है कि मैं नशा कर रहा हूँ, और साथ में कई बार उसको कुछ डिसऑर्डर भी हो जाते हैं जिससे कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे कोई मानसिक बीमारी भी है और मैं नशा कर रहा हूँ, इस केस में माता पिता जब किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो डॉक्टर उसमें लिखता है पेशेंट नॉट सीन, और उनको एक ऐसी मेडिसिन देता है कि जिसको मिला के किसी ड्रॉप के फॉर्म में या मेडिसिन को दाल में सब्जी में पानी में मिला के वो दे देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे धीरे उसका जो हिट है, उसकी जो डिमांड है, जो उसका मन कर रहा है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो वो भी एक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस है, धीरे धीरे वो नशा छोड़ देता है।
1: ये उपाय कारगर हैं।
0: ये उपाय काम करता है, बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है।
1: कार्यक्रम के समापन में श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर?
0: आपकी अपनी संपत्ति है, हम भारतवासी हैं, हम बहुत सशक्त लोग हैं, हम बहुत ही अच्छे से अपने माता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। आपका बच्चा नशे में नहीं जाना चाहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को उठाएं, आपसी जो भी आपकी समस्याएं उसको दूर रखें। आपका बच्चा हमारा राष्ट्रगान है, हमारी खुद की सभ्यता संस्कृति है और भारत का भविष्य है जो पूरे विश्व में परचम लहराएगा, उसका ध्यान रखें और उसको नशे से निकालें।
1: डॉक्टर मुकुल शर्मा, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे का क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है इसके बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी, ये भेंटवार्ता, विषय था नशा मुक्त भारत अभियान। इस भेंटवार्ता में डॉक्टर मुकुल शर्मा से बातचीत कर रहे थे रमेश चंद्रा जी। श्रोताओं, कृषि यंत्रों की लंबी उम्र और बेहतर कार्य क्षमता के लिए नियमित और मौसमी रख रखाव अत्यंत आवश्यक है। कृषि यंत्रों का बेहतर और नियमित रख रखाव उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें सालों साल बिना किसी खराबी के चलाने में मदद करता है। काम करने से पहले और बाद में मनुष्य मशीनों की अच्छी तरह सफाई करें, नट बोल्टों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक उपयोग के बाद यंत्रों से मिट्टी और फसल के अवशेषों को अच्छी तरह साफ कर लें। कंपन के कारण ढीले हुए नट बोल्ट को कस लें और टूटे हुए पुर्जों को जरूर बदल दें। मशीनों के घूमने वाले हिस्सों और बैरिंग में समय समय पर ग्रीस और इंजन ऑयल जरूर डालते रहें। लोहे के औजारों को बारिश में खुले में ना छोड़ें। जिन मशीनों का उपयोग कुछ समय के लिए नहीं करना है, जैसे रोटावेटर है, रोटावेटर के बेल्ट है, और उनके सतह पर मोबिल ऑयल या ग्रीस की एक पतली परत लगाकर सुरक्षित स्थान पर जरूर रख दें। यदि ट्रैक्टर का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं होना है तो उसकी बैटरी निकालकर उसे सुरक्षित जगह पर जहां बारिश ना हो वहां पर रख लें और टर्मिनल्स को अलग कर दें। समय समय पर इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और डीजल फिल्टर बदलते रहें। यदि किसी छोटी मशीन को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसके टैंक से सारा ईंधन निकाल लेना चाहिए। ट्रैक्टर के टायरों में हवा का दबाव हमेशा सही रखें। कम या ज़्यादा हवा से डीजल की खपत बढ़ती जाती है। मशीनों की वी बेल्ट को चेक जरूर करते रहें। अगर ये ढीली हो गई तो उसे बदल लें या फिर उसे टाइट कर लें। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं अगला लोकगीत।

किसान साथियों, कार्यक्रम में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके पास खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001। साथियों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जगत कृषि@gmail.com। अब कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 होने को हैं और अब वक्त है कुमाऊनी भाषा में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण करो। किसानों थे प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के अपरूणक आह्वान करो। केंद्रीय कृषि मंत्री जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और माटक खराब स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दे। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बठे 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करेगी। और नशा खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के लिए हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता भी हो। और अब समाचार विस्तारल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र में नई पहचान दिलून और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नई महत्वपूर्ण कदम उठाने। रुद्रपुर में केंद्रीय योजनाओं के लोकार्पण और खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के संबोधित कर बेर उनल किसानों थे आधुनिक तकनीक अपनोनक दगाड़ प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के बढ़ावा देनक आह्वान करो। केंद्रीय मंत्री को कि किसानों के गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त पौध उपलब्ध करुणक लीजिए मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपयों की लागतल क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करी जाली है। अलावा अल्माड़क चौबटिया में भारत नीदरलैंडक सहयोगल 15 करोड़ रुपयों की लागतल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी जाली। केंद्रीय मंत्री किसानों थे रासायनिक खाद और कीटनाशकों को संतुलित उपयोग करण और माटक खराब स्वास्थ्य के सुरक्षित रखने पर जोर दे।
2: अभियान है खेत बचाओ अभियान। मेरे भाई और बहनों, खाद का प्रयोग करने में मना करने नहीं आया। संतुलित प्रयोग से जमीन को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक साल एक बोरी, अगले साल डेढ़ बोरी, फिर उसके बाद दो बोरी, उसके बाद ढाई बोरी, उसके बाद तीन बोरी। आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन, ये धरती माता लगातार खराब हो रही है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं आज हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो।
1: श्री चौहान को कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों थे फसलों की सुरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपयों की लागत है घेर बाड़ योजना ले शुरू करी गई। यह के लिए बची 65 करोड़ रुपयों की धनराशि ले उपलब्ध कराई जाली। जेल किसानों खेतिक प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सकल। केंद्रीय मंत्री को कि जलवायु परिवर्तन खेती के लिए ठूल चुनौती बढ़ते जाड़ो। उनल किसानों थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेनक अपील करी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और माटक बिगड़ता स्वास्थ्य जस चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दियो। उनल को कि विकसित भारत का लक्ष्य तभे पूर होल जब कृषि विकसित होली और किसान समृद्ध होल। उ पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 2 दिनक पूर्व छात्र संबोधन के सम्मिलित करना छी। पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पूर्व छात्रों थे कृषि अनुसंधान नवाचार स्टार्टअप और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान करो। उनको की पहाड़क खेती, नान जोत जंगली जानवरों थे फसल के हुड़वल नुकसान, पलायन और जलवायु परिवर्तन जस चुनौतियों का सामना करने जनर समाधान अनुसंधान और नवाचार ले संभव छु।
3: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यो में सहयोग कर नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
1: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों ठ्यालों को निरीक्षण करो और विद्यार्थियों से संवाद करो व धानक रुपाई मेले भाग ले।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: उत्तराखंड बठे राज्य गठनक बाद पहली बार 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गयो। मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणाल देहरादून में प्रेस वार्ता में बताया कि पिथौरगढ़ जिलक धारचूला और मुंशारी क्षेत्रक 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों आज सरकारक सहयोगल नेपाल के यो माछ निर्यात करी। प्रस्तुत एक रिपोर्ट।
5: मत्स्य विकास मंत्री बता कि माछों के कोल्ड चेनक माध्यमल गुजरातक वेरावल भेजी गई, जहां प्रसंस्करणक बाद 23 जून के नेपालक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गई। यह माछ 33 मत्स्य पालकों के लगभग 23,50,000 रुपए आय मिले। यह निर्यात के प्रोत्साहित करणक लीजी मत्स्य विभाग हार्वेस्टिंग पैकेजिंग और परिवहनक लीजी 5,40,000 रुपए सहायता उपलब्ध कराई।
6: पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके, ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोजगार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे।
5: मत्स्य विकास मंत्री बता कि अब यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में ले निर्यातक संभावनाओं में ले काम करी जाने। आने वाले दिनों में लगभग 30 टन माछक निर्यातक तैयारी करी जाने। उन्होंने बताया कि साल 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिसक दगड़ है समझौताल अब तक 45.10 लाख मीट्रिक टन ट्राउट माछक पूर्ति करी हाली, जय कीमत 2,10,00,000 रुपए छिन। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी मी गीता भंडारी।
1: विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवसक मौके पर हरिद्वार में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताहक समापन भयो। यो बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अखिल विश्व गायत्री परिवारक बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी गया। यह भीतर द्वीय संस्थाएं देशभर में नशा खिलाफ जन

0: जागरण अभियान चला बेर मनखियों के जागरूक कराल। यो मौक पर शांति कुंज बठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाने निकाली गए नशा मुक्त रैली। 2000 है जा स्वयं सेवकों युवाओं श्रेणियों और विद्यार्थियों भाग ली बेर नशा मुक्त भारत तक संकल्प ले। कार्यक्रम के संबोधित कर बेर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताए कि नशा केवल मन की ही न है बल्कि पूर परिवार और समाज के लिए प्रभावित करनन। उनल को कि जब देशक युवा नशे से दूर हल तबे भारत अपूर्ण विकसित राष्ट्रक लक्ष्य के पाण और मजबूती कदम बढ़ाल।
1: और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंत प्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा जागरूक होगा सशक्त होगा तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनक आगमन की स्थितियां अनुकूल है गईं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मानसिक राज्यों को कुछ जगहों में भूचाल और एक दगड़ ही पहाड़ी जिलक जगहों में कुछ घोड़ाट मोड़ाट चाल चमकण तेज दियो बयाव के लीबेर येल्लो चेतावनी जारी करी गए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादूनल 30 जून जाने पहाड़ी जिलों में कह के तेज घोड़ाट मोड़ाट चाल चमकणक दगड़ तेज है तेज दियो चलन और 30 है 50 किलोमीटर प्रति घंटक रफ्तारल तेज झोंकदार बयाव हो चलनक अंताजले जता रखो। 30 जून के पिथौरगढ़ और बागशर जिले में कह के तेज बर्क हुनक अंताज छु और अगिल 3-4 दिनों जाने अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की कोई संभावना नहा लेकिन ये एक बात तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सके। मौसम विभागल खराब मौसम के लेबेर चंट चेतावरूणक अपील करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लोकार्पण करो और किसानों प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के अपड़ून पर जोर दियो। केंद्रीय कृषि मंत्री जलवायु परिवर्तन को घटतो पानिक स्तर और माटक बिगड़ता स्वास्थ्य जस चुनौतियों के समाधान देनक लीजिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दे। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बठे 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गयो और नशा खिलाफ जन जागरण अभियान चलूणक लीजिए। हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता भी हो। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक खत्म हूँ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं और अब पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। फिल्म है पत्थर के सनम।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे मजरूह के। तो श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत को सुरों में पिरोया है आनंद मिलिंद ने और फिल्म है राजा जी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं RNU देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून से मैं हूं आपके साथ रागिनी बंजोला और आज के कार्यक्रम विषय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का विषय रहेगा युवा उद्यमिता, पारंपरिक कला और नवाचार। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सिरार गाँव की युवा उद्यमी सुश्री मानसी कापड़ी। मात्र 21 वर्ष की आयु में मानसी ने अपनी मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प के बल पर उद्यमिता के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। एक ओर उन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपन कला को आधुनिक स्वरूप देकर हस्तनिर्मित गृह सज्जा उत्पाद तैयार किए, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य किया। मानसी जी, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए रागिनी जी।
1: जी मानसी जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा नाम मानसी कापड़ी है और मैं 21 साल की हूँ और मैं पिथौरागढ़ के सिरड गांव से बिलोंग करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपना कॉलेज LSM गवर्नमेंट PG कॉलेज पिथौरागढ़ से BBA कम्प्लीट करा हुआ है।
1: जी,
2: तो मैंने अपना पूरा बचपन यही पिथौरागढ़ में ही गुजारा है। मैं यहीं से पढ़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा जो गांव है और मेरा जो घर है वो एग्जैक्टली नेचर के बिल्कुल बीच में है अकेले, तो मेरे अंदर नेचर वाला इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आता है उस वजह से।
1: जी, BBA की पढ़ाई आपने की हुई है, तो इसके दौरान आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता जिसे हम कह रहे हैं, उसकी ओर आपका रुझान कैसे बना?
2: BBA के दौरान ही एक्चुअली हमारे कॉलेज में ना ये DUI का देवभूमि उद्यमिता योजना की एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप्स होते थे
1: जी।
2: और BBA में मोस्टली हम बिजनेसेस के बारे में ही पढ़ते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स की मेन पढ़ाई यही होती है। तो मेरा नॉलेज यहाँ से बढ़ा और जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ

0: सपोर्ट हो सकता है, मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है। जब मैं इससे जुड़ी अपने कॉलेज की वजह से, मेरा कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एलएसएम पीजी कॉलेज पिथौरागढ़, एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़।
1: जी
0: तो वहां पे देवभूमि उद्यमिता योजना की वर्कशॉप्स चलती थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहां से मैं देवभूमि उद्यमिता योजना में रजिस्टर हो गई। फिर आपके बिजनेस आइडियाज को फिल्टर किया जाता है, उन्हें फिल्टर किया जाता है, उन्हें रिफाइन किया जाता है, आप उसे कैसे बेटर बना सकते हो वो बताया जाता है। आपको सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, और फिर उसी के थ्रू अलग अलग राउंड ऑफ पिचिंग सेशंस होते हैं, अलग अलग राउंड के।
1: जी
0: उनमें आपका आइडिया अगर सस्टेनेबल लग रहा है, आपका आइडिया अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है अपने आइडिया के लिए, तो वो देवभूमि उद्यमिता योजना सेलेक्ट करती है।
1: तो आप अब को अपने जो पहला स्टार्टअप आपने शुरुआत की, कैसे, क्या इसकी सोच थी?
0: तो मेरे पहले स्टार्टअप का नाम है होमीज वाइब। ये शुरू हुआ था 2023 दिसंबर में। और एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं और मेरी एक फ्रेंड जिया वल्दिया, हम
1: जी
0: दोनों को एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए था, और बहुत ही स्पेसिफिक चाहिए था, मैं लिप्पन आर्ट बोलते हैं उसे, वो हमें चाहिए था, और वो हमें लोकली कहीं नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हम खुद ही बना लेते हैं, तो हमने उसे खुद से बनाया। और फिर उसी टाइम पे हमारे कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना का वर्कशॉप, जो मैंने बताया था कि अटेंड किए हुए हैं, वो अलाइन हुआ। तो हमने सोचा अब हम बना रहे हैं तो इसको एज अ बिजनेस आइडिया रखते हैं वहां पे। तो हमने इसे प्रॉपर नाम दिया होमीज वाइब। हमें थोड़ा वैसे देना था, ऐसे इसका नाम ऐसे आता
1: जी
0: है कि कोजी लगे लोगों को, पर्सनल लगे,
1: जी
0: थोड़ा रिलेटेबल लगे, इस हिसाब से हमने नाम दिया इसे। और
1: जी
0: हमने ये आइडिया स्टार्टिंग में सिर्फ लिप्पन आर्ट का रखा था, तब इसमें एपन भी एडेड नहीं था, तब इसमें जो अभी होमीज वाइब है रिसाइकलेबल्स, वो भी एडेड नहीं था। हमने वहां पे सिर्फ एज एन आइडिया रखा। फिर उन वर्कशॉप्स ने हमें हेल्प करा उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करने का। और वहां पे जो आज होमीज वाइब है, जिसमें मैं बताती हूँ हम क्या करते हैं, हम लिप्पन आर्ट, जो कि राजस्थानी और गुजराती ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उन्हें उत्तराखंडी एपन आर्ट से कंबाइन करते हैं। और इसके अलावा हम लोग रिसाइकलेबल से होम डेकोर बनाते हैं। ये रिसाइकलेबल वाला स्टोरी एक्चुअली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मेरे कॉलेज से शायद 16 किलोमीटर के अराउंड दूर रहती हूँ, और जब मैं कॉलेज को जाती हूँ रोज, तो रास्ते में ना पिथौरागढ़ का डंपिंग ग्राउंड है, जहां पे पूरे पिथौरागढ़ का कूड़ा डालते हैं, तो वो रास्ता मुझे रोज क्रॉस करना होता था। तो वहां से मुझे आया कि इस कूड़े से भी कुछ करना चाहिए, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकलेबल्स को। तब हमने रिसाइकलेबल से होम डेकोर उसमें ऐड किया, और उसके बाद फिर होमीज वाइब धीरे धीरे, देवभूमि उद्यमिता योजना का तब पहला फंडिंग राउंड चल रहा था, और तभी वो उसमें सेलेक्ट होके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बना और उसको वो फंडिंग मिली,
1: जी
0: जिसके लिए
1: अब आपने अपने होमीज वाइब, जो कि आपका पहला स्टार्टअप है, उसके बारे में बात की। अगर मैं आपसे पूछूं आपके दूसरे स्टार्टअप के बारे में, उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ उसके पीछे का उद्देश्य है?
0: जी। दूसरा स्टार्टअप है सार्निक नेचुरल्स, ये इस पे अभी हमारा मेन फोकस है ऑनेस्टली। और ये शुरू हुआ था पिछले साल 2025 में, अक्टूबर में। ये मैंने अपने को फाउंडर समर खान के साथ शुरू किया, और ये शुरू हुआ क्योंकि हमें बीबीए में सेकेंड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप करनी होती है, मैंडेटरी इंटर्नशिप, जो आप किसी भी कंपनी में करो 1-2 महीने, और उसके बाद आपका कोर्स रिज्यूम होगा। तो हमने इंटर्नशिप करी थी एक कंपनी में जो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट पे काम करती है। तो वहां काम करते हुए हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, कितनी है, नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में और उनके फायदे के बारे में बहुत ज्यादा पता लगा।
1: जी
0: तो उसके बाद हमने सोचा कि हमें भी ये शुरू करना चाहिए। फिर हमने आइडिया में हमने शायद जून जुलाई में हमें आ गया था, उसके बाद हमने उस पर रिसर्च करा, जो प्रोडक्ट्स हम कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हैं वो ढूंढा। और अभी सार्निक नेचुरल्स में हम इसे एक हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट ब्रांड की तरफ प्रमोट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास A2 घी, रॉ हनी, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल,
1: जी
0: कश्मीरी मामरा आमंड्स, हेल्दी मिलेट चिप्स, मिलेट पास्ता, ये सब कुछ अवेलेबल है। और ये हम पैन इंडिया सोर्स करते हैं। हमारा कोकोनट ऑयल तमिलनाडु से आता है, हमारा अकेशिया हनी कश्मीर से आता है, तो ये हम पैन इंडिया सोर्स करके इसे हम ई कॉमर्स अपनी

0: वेबसाइट पे और अमेजोन पे सेल करते हैं। हम उत्तराखंड के किसानों से मड़ुआ कहते हैं ना, रागी मड़ुआ हम सोर्स करते हैं और उसके फिर हम चिप्स और पास्ता बनाते हैं।
1: बहुत खूब। तो मानसी जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि आपने इतनी कम उम्र में, 21 साल की आपकी उम्र है, आप दो स्टार्टअप आपने चला रही हैं, तो क्या कुछ मेजर चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और कैसे आप इन सब से डील करती हैं?
0: सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा पढ़ाई और स्टार्टअप दोनों एक साथ लेके चलना, क्योंकि बीबीए हमारा कोर्स ऐसा था कि आप इसे बहुत ज्यादा आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी होगी क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जा रहा है। तो उसके साथ साथ फिर हमें स्टार्टअप्स पे भी टाइम देना है, मुझे होमीज वाइप के आर्ट्स भी बनाने हैं और सानिक नेचुरल्स की मार्केटिंग भी करनी है। तो ये सारे चैलेंजेस आते थे। इसके अलावा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की कमी बहुत बड़ा चैलेंज है। शुरुआत में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं आती, क्योंकि होमीज वाइब ऐसा स्टार्टअप है जिसे अभी मैंने ऑनलाइन नहीं एक्सपैंड किया है, तो मुझे ऑफलाइन कैसे मार्केटिंग करना है वो सब आता था। पर सार्निक नेचुरल्स में ये हुआ कि हमें उसे ऑनलाइन मार्केट करना था। बनाई जो मेरे को फाउंडर है उन्होंने वेबसाइट भी खुद ही बनाई, हमने अमेजोन में लिस्टिंग भी खुद ही करी। मतलब प्रोसेस के साथ साथ सीखा है पर एक्सपीरियंस की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रही, लेकिन ऐसा है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमेशा आपको नया सिखा देती है इन द प्रोसेस।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ऐसे में अगर जो युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, युवाओं को, छात्र छात्राओं को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो ऑलरेडी हो चुका है और आप सोच रहे हो कि नया नहीं है, चाहे कैसा ही भी आइडिया हो, उसके बारे में बात कीजिए। अगर आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको ना खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, ना आइडिया पे कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको फीडबैक्स मिलेंगे कि आइडिया ठीक है या नहीं। तो उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए और एक छोटे से स्टेप से शुरू कीजिए। यूजुअली क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, तो बहुत बड़ा माइलस्टोन लगता है वो कि हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे छोटे गोल्स बना के हमेशा शुरू करना चाहिए। आज आपने रिसर्च कर ली कि प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, कल आपने देख लिया मार्केटिंग कैसे होती है। तो छोटे छोटे गोल से शुरू कीजिए और एक्चुअली कॉन्फिडेंस रखिए उस बारे में अपने दोस्तों से ही सही बात करने का।
1: मानसी जी, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे आरएनए देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:01 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मुहर्रम के अवसर पर अफजल मंगलोरी से ये वार्ता।

दिवाकर राही ने अपने शेर में एक बार कहा था कि विकार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। दोस्तों, आज मुहर्रम की 10 तारीख है। 10 मुहर्रम को हर साल पूरे विश्व में हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे यानी नाती महान बलिदानी हज़रत इमाम हुसैन को याद करके मुस्लिम समुदाय उनकी याद में मजलिस, जुलूस और मातम करते हैं। केवल मुस्लिम ही नहीं, भारतवर्ष में हुसैनी दत्त कहलाने वाले समुदाय के लोग भी इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके आदर्शों को याद करके इंसानियत का पैगाम देते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि भारतवर्ष सदियों से विभिन्न संस्कृतियों, तहजीबों और सभ्यताओं का देश रहा है। पुरातन काल से ही यहाँ पर विश्वभर से आने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायियों, यात्रियों व सूफी संतों का वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव तथा सर्वधर्म संभाव के सिद्धांतों के अनुरूप सत्कार ही नहीं किया गया, बल्कि उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा भी

आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जगह जगह पर इमाम हुसैन की याद में नोहे, मरसिए और सलाम पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं भी कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे मुहर्रम के अवसर पर अफजल मंगलोरी से ये वार्ता। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:12 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि की 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज के गाई चंद गजलें।

0: जिंदगी जाएगी तेरी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:21 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज की गाई चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज की आवाज में चंद गजलें। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत, जिस गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को बोल दिए हैं समीर ने और संगीत बत किया है संजीव दर्शन ने। फिल्म है दीवाने

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 8:36 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत. तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वर में. इस गीत को संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने और शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने. फिल्म है दुश्मन.

तो श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय हमें बार बार ये कहता है कि समय के साथ चलें, और समय हमें ये अभी कह रहा है कि फिल्म संगीत में वक्त हो चला है ये अंतिम गीत सुनने का। तो सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत, जिस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और आशा भोसले ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और बोल हैं कुलवंत जानी के। फिल्म है सूर्यवंशी।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2026

2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI
नवाचार, पारदर्शिता और

0: जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है। हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप

आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं डॉक्टर श्री बिलास डबराल से नाटक प्रारब्ध।

0: खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हो देव, आनंद आ गया। वाह भाई वाह, कितनी बार कहोगे कमल, ये पान लो और अपना मुंह बंद करो।
1: कहते हैं रावण भी बहुत अच्छा पाकशास्त्री था।
0: खा पी के अब रावण से ही तुलना करो। ये मत भूलो कि महाकवि भूषण और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों बहुत अच्छे पाकशास्त्री थे।
1: भाई ये कवियों की बात तो तुम हिंदी वाले जानो।
0: ठीक कह रहे हो, इतिहास वाले तो राक्षसों की ही बात जानते हैं।
1: अरे हाँ देव, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
0: चल रहा है यार, कछुए की चाल से चल रहा है अभी तो।
1: तब तो खरगोश से बाजी मार ले जाओगे। अरे
0: क्यों, खरगोश सरपट नहीं दौड़ रहा?
1: यही तो एक ऐब है मुझ में देव, कुछ दिन जमकर काम और फिर महीनों आराम। खरगोश की तरह बीच बीच में लंबी तान लेता हूँ।
0: वही, मुझे तो समय ही बहुत कम मिल पाता है।
1: अरे तो नौकर क्यों नहीं रख लेते? खाना भी बना देगा और घर की साफ सफाई भी कर देगा।
0: अरे नौकर क्या खाना बनाएगा यार, हाँ घर की साफ सफाई जरूर कर देगा।
1: देव एक बात तो बताओ, कई बार पूछा पर तुम हमेशा टाल गए। तुम्हारे विवाह न करने के पीछे क्या कोई ऐसी बात है जो दोस्त को भी नहीं बताई जा सकती?
0: कमल कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो यार, कहाँ नौकरी की बात कर रहे थे और कहाँ मेरे विवाह की बात।
1: मेरा मतलब कुछ और है दोस्त, गलत मत समझो। मैं नौकर का रिप्लेसमेंट पत्नी को नहीं मान रहा, मैं तो गृह स्वामिनी की बात कर रहा हूं।
0: क्यों भाई, मुझे गृह स्वामित्व से वंचित रखना चाहते हो?
1: अरे भाई जब स्वामिनी ही नहीं तो तुम स्वामी किसके और कैसे?
0: कमल तुम तो बस, आखिर तकदीर भी तो कोई चीज होती है। वो कहते हैं ना, शादियां तो स्वर्ग में रचाई जाती हैं, जब ऊपर पहुंचूंगा कर लूंगा।
1: देवगुरु मामला हास परिहास का नहीं है डियर।
0: कमल हास परिहास में भी कभी कभी बड़े विकट रुदन छुपे होते हैं।
1: कोई गहरी कील फंसी है गुरु।
0: हाँ कमल, कुछ सलीब हैं जिन्हें ढो रहा। अपनी नादानियों को भार स्वरूप ढोना किसी भी आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी है।
1: लगता है तुम कहीं उससे भी बड़ी त्रासदी झेल रहे हो। क्रूस पर चढ़ने के बाद तुम शायद सहज हो गए हो, और हर स्थिति में सहज होना कई सलीबों को ढोना है।
0: इतिहास पढ़ाते हो ना, छिद्रान्वेषण की आदत हो जाती है। प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं, सिद्ध करो रजिया सुल्तान और हबशी याकूत में प्रेम था या नहीं।
1: देवगुरु सिद्ध वही करना होता है जहां तथ्य कम हो या शक हो। तुम्हारा चेहरा पढ़ना मुश्किल नहीं है, लगता है कोई गहरी चोट है। प्रेम विच्छेद का मामला तो होगा ही, तभी तुमने इस तरफ कदम ही नहीं रखा। कहीं सलीब उठाए घूम रहे हो, कहीं पहेलियां बुझा रहे हो, आखिर ये बात क्या है?
0: कमल वही एक साधारण सी नादानी है जो मेरी भूल थी। मन में बहुत कुछ होते हुए भी, चाहते हुए भी,

0: मेरा एक दोस्त था दिवाकर, बड़े संपन्न परिवार का। एमए करने के बाद वो व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए अमेरिका चला गया और मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगा। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहा था कि बाजार में एक कार मेरे पास आकर रुकी।
1: देव, कहाँ जा रहे हो? कार में आ जाओ।
0: नमस्कार माँ जी।
1: आओ देव, ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्या बात है देव, जब से दिवाकर गया घर का रास्ता ही भूल गए?
0: नहीं माँ जी, जरा इधर कुछ व्यस्तता बढ़ गई थी, बस इसीलिए।
1: क्यों, नौकरी मिल गई क्या?
0: नहीं, उसी की तलाश में तो व्यस्त हूँ।
1: थ्रोट फर्स्ट क्लास हो, मिल ही जाएगी। खर्चे की कोई तंगी तो नहीं?
0: नहीं माँ जी, कुछ ट्यूशन कर लेता हूँ, कुछ गांव से बड़े भाई साहब भेज देते हैं।
1: किस तरह रुला रुला कर भेजते, मुझे सब मालूम है। देव, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या है, मैं तो हूँ। कभी जरूरत हो तो निसंकोच कह देना, कहोगे ना?
0: ठीक है माँ जी, बिल्कुल कह दूंगा। ड्राइवर साहब, वो सामने चौराहे पर रोक दीजिएगा।
1: घर किधर है?
0: माँ जी, वो चौराहे से जो सड़क बाईं तरफ मुड़ी है ना, उसी पर है।
1: ड्राइवर, चौराहे से बाईं तरफ मोड़ देना।
0: नहीं नहीं माँ जी, मैं पैदल चला जाऊंगा।
1: देव, एक काम था, पर कहीं तुम दूसरा मतलब ना निकाल लेना।
0: आज्ञा कीजिए माँ जी।
1: शोभना हिंदी पढ़ना चाहती है, पढ़ा दोगे ना?
0: हाँ हाँ, इसमें क्या बात है, बिल्कुल पढ़ा दूंगा माँ जी। बस ड्राइवर साहब, यही उतार दीजिए, यही रोक दीजिए।
2: माँ जी, इस गली में मुड़ते ही बाईं ओर मेरा कमरा है, आइए ना।
1: नहीं नहीं, अब रात बहुत हो गई है, शोभना घर में अकेली है।
2: तो मैं कब से आ जाऊं पढ़ाने के लिए माँ जी?
1: जब तुम चाहो, सुबह शाम किसी भी समय।
2: ठीक है, अच्छी बात माँ जी, प्रणाम।
1: आओ देव, आओ।
2: प्रणाम माँ जी, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या?
1: हाँ बेटा, जब से शोभना के पिताजी गुजरे और दिवाकर विदेश गया, सारा कारोबार मुझी पर आ पड़ा है। बहादुर, बहादुर।
3: जी मैम साहब, हुकुम मेम साहब।
1: शोभना दीदी से कहो देव साहब आए हैं।
3: कौन साहब?
1: देव साहब, समझ गया ना?
3: देव साहब, देव साहब।
2: बहुत सीधा है आपका ये नौकर,
1: और बुद्धू भी, पर है ईमानदार।
2: माँ जी, वो घसीटा कहाँ गया? नौकरी छोड़ गया क्या?
1: छोड़ नहीं गया, भाग गया। घसीटा था ना, इसीलिए यहाँ कुछ मालमत्ता हाथ लगा, घसीट ले गया। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं चलती हूँ, शोभना आती ही होगी।
2: ठीक है माँ जी।
4: नमस्ते सर।
2: नमस्ते, शोभना ही हो ना?
4: जी, ट्यूटर बनकर भी ऐसा पूछना क्या एक फॉर्मेलिटी नहीं है?
2: एक साल में ही इतना अंतर?
4: कैसा अंतर सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं बदला इन सालों में।
2: सच कहता हूँ, बाहर कहीं देखता तो नहीं पहचान पाता।
4: अरे, आप तो इस तरह आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं सर, जैसे मैं बड़ी ना होकर बूढ़ी हो गई हूँ।
2: वो अंग्रेजी में नहीं कहते हैं, शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 18 साल बूढ़ी है। अच्छा, किताबें निकालो।
4: गद्य की या पद्य की?
2: जो भी तुम पढ़ना चाहो।
4: गद्य तो मैं निभा ले जाऊंगी, पर कविताएं थोड़ी कठिन पड़ती हैं सर।
2: देखो शोभना, मुझे सर मत कहो।
4: टीचर को सर ही तो कहते हैं सर।
2: क्यों, अगर दिवाकर पढ़ाता तो उसको भी सर कहते हैं तुम?
4: वो तो बहुत खुश होते सर।
2: मैं बेकार का आदमी हूँ, मैं नहीं हजम कर पा रहा हूँ इस संबोधन को। सीधे सीधे नाम दो।
4: सर, सर से जो संबंध बन रहा है ना, वो ज्यादा गरिमापूर्ण है।
2: तो इस संबंध के लिए ऐसा करो कि मेरा नाम पलट दो।
4: मतलब?
2: मेरा पूरा नाम देवगुरु है, इसे पलट कर गुरुदेव कर दो, सर की जगह पर गुरुदेव, ठीक है ना?
4: ठीक है गुरुदेव जी।
2: ये जी क्यों लगाया, गुरुदेव खुद ही आदरवाचक है। हाँ, तो किताबें निकालो।
4: गुरुदेव, आप भी और ट्यूटर्स की तरह ही हैं,

0: कम से कम आप तो कुछ बदले हुए होते।
1: क्या मतलब है तुम्हारा शोभना?
0: मेरा आशय आम गुरुदेव वो जैसा है, बस उनमें ये कहने का मैनरिज्म होता है, अच्छा तो निकालो किताबें, बस जैसे स्कूली बच्चों को पढ़ाने की मान में एकदम झोंक देना, बस पढ़ो।
1: मतलब ये कि पारंपरिक गुरुवाई से तुम्हें चिढ़ है?
0: जी गुरुदेव, आप उचित कह रहे हैं। मेरा स्पष्टीकरण ये है कि किताबें निकालना, नोट्स लेना कक्षाओं तक सीमित रहेगा, बाकी तो मैं स्वयं पढ़ सकती हूँ।
1: तो फिर मेरा औचित्य क्या है? सिर्फ बातें करो, चाय पियो, लौट जाओ।
0: बातें करना ही तो महत्वपूर्ण है, बशर्ते उन्हीं विषयों पर की जाएं। गुरुदेव, मैं आपसे वही व्याख्याएं पूछूंगी जो मुझे समझ में ना आती हूँ, जहाँ अर्थ और शब्द संवेदनों से परे हों।
1: शोभना, लगता है तुम ट्यूटर की व्याख्या ही बदल दोगी।
0: गुरुदेव, बुकिश ट्यूशन की व्याख्या मेरी मानसिकता नहीं है। जब भी कोई समस्या होगी हिंदी साहित्य में, जिसके आप ट्यूटर हैं, काल चिंतन और लेखन की जिसके आप गुणी हैं, मैं अवश्य पूछूंगी, मगर आप आएंगे रोज सर?
1: शोभना, ये सर।
0: गुरुदेव, सर या शर जो भी हो छोड़िए इसे। बहादुर, गुरुदेव के लिए चाय लाओ।
1: ठीक है शोभना, बाकी कल।
0: जो आज्ञा गुरुदेव।
1: लेकिन ये बताओ शोभना, तुमने मेरे लेख आके पढ़े कहाँ?
0: गुरुजी, पत्रिकाएं तो जैसे मैं पढ़ती ही नहीं, और आप हैं कि यहाँ वहां छपते ही रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, अब ठीक है।

0: टूटर आप थे या वो
1: कमल, उसकी बात ठीक थी। ऐसे बुद्धि वाले लोग कभी कभी ही मिलते हैं। पढ़ने से ज्यादा गुन्ना और जीवन को प्रकृति के रहस्यों में खोजना ये उसकी आदत थी।
0: यानी देवगुरु आप उसकी प्रतिभा के कायल थे।
1: हाँ कमल, कुछ बोलती नहीं थी बल्कि सोच उगलती थी, और कभी कभी तो ऐसे विकट प्रश्न पूछ लेती थी जिनके अर्थ न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। उनके माध्यम से अपने आप को पूरी तरह कन्वे भी करती थी वो। एक रोज जब मैं पढ़ाने पहुंचा
2: तो एक बात पूछनी है गुरुदेव। सूर की इस पंक्ति को देखिए जरा।
1: निकसी कंदरा ते के हरि हूं, माथे पूंछ हिलायो। अरे इसमें समस्या की क्या बात है?
2: देखिए ना, कॉलेज में मैडम ने इसका अर्थ बताया कि पहले गोपियों की पतली कमर से लज्जित होकर शेर गुफाओं में जा छिपे थे, लेकिन अब वियोग में वे इतनी कृशकाय, इतनी दुबली पतली हो गई हैं कि शेर गुफाओं से बाहर निकल आए हैं।
1: तो ठीक ही तो बताया उन्होंने।
2: हाँ अर्थ तो ठीक है, पर मतलब साफ नहीं हुआ। मैंने मैडम से पूछा भी कि क्या कृष्ण के वियोग में गोपियों की कमर मोटी हो गई थी।
1: प्रश्न तो सचमुच बहुत गहरा है। क्या कहा मैडम ने?
2: बस इधर उधर की बातों में टाल गई। आप बताइए ना इसका अर्थ।
1: इसका अर्थ हाँ समझ में आया। वास्तव में गोपियों की कमर मोटी नहीं हुई बल्कि मोटी दिखने लगी थी।
2: मतलब
1: क्या? बस वही जो कि मैं कह रहा।
2: गुरुदेव, कवि ने जो कुछ भी लिखा व्याख्याकार के लिए तो पूरा आकाश होता है। आप कहीं कुछ कहने का साहस नहीं जुटा रहे शायद।
1: शोभना, अर्थ को कभी अनर्थ तक नहीं पहुंचाना चाहिए। कम से कम अध्यापन को चूहल से दूर रखो।
2: गुरुदेव आप गलत समझ रहे हैं, मैं उतनी ही गंभीर हूं जितनी कि वो शब्द जिसकी रचना की गई है और वो अर्थ जिसकी मुझे और व्याख्या चाहिए।
1: शोभना,
2: गुरुदेव व्याख्याओं से विचार, मन, हृदय सब कुछ परिष्कृत होता है, और फिर व्यक्ति न तो ना समझ, न वयस्क, न प्रौढ़ होता है, वो तो सिर्फ व्यक्ति होता है, विचारशील। और आप हैं कि सीमाओं, झूठे आदर्शों और ढकोसलों में जी रहे हैं।
1: शोभना सुनो, सहजता, सरलता और विश्वास हमारे मानस के लिए ये अलग अलग धरातल हैं।
2: हाँ हाँ गुरुदेव, सरल और सहज को वहीं रहने दें जो है,

0: गंभीर बनाकर उलझा ही नहीं।
1: शोभना, आज का वक्त खत्म हुआ।
0: अच्छी बात है सर।
1: फिर सर?
0: सॉरी गुरुदेव।
1: सॉरी?
0: क्षमा चाहती हूँ सर। नहीं, गुरुदेव।

0: सच कहता हूं कमल, 5 साल हो गए मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए। शोभना जैसी साहित्यिक पकड़ और उसके जैसे बौद्धिक सोच समझ वाला एक भी छात्र मुझे नहीं मिला।
1: यानी उसकी साहित्यिक पकड़ ने तुम्हें भी पकड़ लिया?
0: हाँ, उसकी प्रतिभा की बहुत गहरी छाप है मुझ पर।
1: रोज पढ़ाने जाते थे?
0: हाँ, रोज, यहां तक कि इतवार को भी जाता था।
1: हाँ हाँ वो तो जाना ही था। तो गुरुदेव, आप कहीं ना कहीं उस कन्या के आगे हार रहे थे।
0: हाँ कमल, उसके संवेदनों के सामने मैं अपने आप को बौना समझ रहा था। सच तो यह है कि मैं हारना चाहता था, लेकिन बौनेपन के एहसास ने मुझे व्यर्थ के दंभ से भर दिया। मैं नैतिक अनैतिक विश्वास परंपराओं के ढोंग ओढ़े रहा। बात करने की हिम्मत जुटाना मेरे बस में नहीं था।
1: देवगुरु, तुम इतने दुर्बल थे कि सहज सरल पर तुमने कितनी भारी चीजों को लाद दिया। मतलब साफ है डियर, तुम इन्वॉल्व हो रहे थे और समाज की बलि वेदी पर शहीद भी हो जाना चाहते थे, यही ना?
0: ठीक कहते हो बंधु, सच बहुत कड़वा होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे निकलना। मुझ में ना तो इतना सामर्थ्य था और ना साहस, लेकिन हाँ, मैं उसे चाहने लगा था।
1: क्या तुम इस बात से आश्वस्त थे कि वो भी तुम्हें?
0: यही संशय था। बड़ी विरोधाभासी स्वभाव की थी वो, लेकिन उसे समझना कभी आसान था और कभी बहुत मुश्किल। लेकिन मैं न जानने के लिए बराबर कोशिश करता रहा। पलायन मेरी प्रवृत्ति है।
1: तो तुम सिर्फ अंदाज ही लगाते रहे, विश्वास नहीं था। अनिश्चय में नहीं डूलना चाहते थे, इसीलिए परिस्थितियों से भागते रहे।
0: नहीं कमल, ये बात नहीं है। मैं एक बार बीमार पड़ा, मुझे बुखार आ गया, पढ़ाने नहीं जा सका। रात भर बुखार में तपता रहा। सुबह सुबह जरा सी झपकी लगी कि दरवाजे पर थपकियां सुनाई दी।

0: ये तो शोभना की आवाज लगती है। शोभना, तुम?
1: क्यों, क्या मैं नहीं हो सकती?
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अंदर आओ बैठो।
1: लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं।
0: हाँ, इसीलिए कल पढ़ाने भी नहीं आ सका।
1: कैसी बात करते हैं आप, क्या मैं कोई शिकायत लेकर आई हूँ? देखूं तो। अरे, तुम्हारा सर तो तवे की तरह दब रहा है। मेरी आशंका बिल्कुल सच निकली, मैं यही सोच रही थी, जरूर कोई अनहोनी हुई है। अच्छा चलिए उठिए तो।
0: उठिए क्यों?
1: डॉक्टर को दिखाकर आपको घर ले जाऊंगी, यहाँ कौन है जो आपको देखे?
0: तुम बेकार की चिंता कर रही हो शोभना, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा।
1: और जोर पकड़ गया तो? कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं यहाँ। देखिए, अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी यहाँ से टलने वाली नहीं, धरना देकर बैठ जाऊंगी। हाँ,
0: बहुत जिद्दी हो शोभना तुम।

0: कमल, मैं 7 दिन तक बुखार में तपता रहा।
1: शोभना ने बहुत सेवा टहल की होगी तुम्हारी।
0: हाँ, रात दिन एक कर दिए उसने। जब भी मुझे जरा होश आता, वो मेरे सिरहाने कुर्सी पर बैठी मिलती।
1: फिर तो एक दूसरे के काफी निकट आ गए होंगे।
0: हाँ, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने शोभना से कहा, शोभना अब मैं घर जाना चाहता हूं।
2: घर?

0: घरी भूत का डेरा कहो उसे।
1: क्यों
0: कहते नहीं है बिन घरनी घर भूत का डेरा।
1: जो भी हो शोभना, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। हंडिया का मुंह चौड़ा है तो कम से कम बिल्ली को तो शर्म आए।
2: अब कैसी तबीयत है देव?
0: देखो ना माँ, अभी पूरी तरह तबीयत संभली भी नहीं और ये जाने की बात कर रहे हैं।
2: जाने की? कहाँ? अपने कमरे पर?
1: हाँ माँ जी, अब आके दीजिए, बहुत कष्ट दिया मैंने आपको।
2: पर आए है ना, इसलिए कष्ट सोच रहे हो। यहाँ इतनी जगह है, कोई खास बात है क्या तुम्हारे कमरे में?
0: हाँ माँ, जो यहाँ नहीं है वो इनके कमरे में है ना, अंधेरा, सीलन और घुटन।
2: सोच लो बेटा, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं, फिर भी तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक शर्त पर जाने दूंगी।
1: हाँ हाँ कहिए ना माँ जी।
2: ये लिफाफा रख लो।
1: लिफाफा? 1, 2, 3, 4, ये 400 रुपए का है क्या माँ जी?
2: अभी तुम्हारी नौकरी नहीं बेटा, रख लो, काम आएंगे।
1: समझ गया माँ जी, मैं शोभना को पढ़ाता हूँ ना, इसीलिए। खैर मैं रख रहा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है।
2: ठीक है बोलो।
1: आगे से हमारे संबंधों के बीच पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे।
2: मंजूर।
1: शोभना।
0: आई गुरुदेव। ये देखिए, आज मैंने पहली बार साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ?
1: पहनने की चीज है, सभी लोग पहनते हैं।
0: ओफो, ये बताइए ना, लग कैसी रही हूँ?
1: ठीक है, पर ये माथे पर बिंदी?
0: कल पढ़ा था ना बिहारी का दोहा, कहत सब बेंदी दिए आंखों दस गुनु होत, दिए लिलार बेंदी दिए अनगिने बढ़त उदोत।
1: लेकिन कुंवारी लड़कियां कहाँ लगाती हैं बिंदी?
0: बहुतों को देखा है मैंने, अब कौन मानता है इस बंधन को।
1: अच्छा बाबा अच्छा, खूब लगा।
0: आपको बुरा लग रहा है? लो पोंछ देती हूँ।
1: अरे पोंछ क्यों दी, मैंने कब कहा कि अच्छी नहीं लग रही?
0: शब्दों में नहीं कहा लेकिन भाव तो यही था।
1: मैंने तो सामाजिक मान्यता वाली बात कही।
0: पर मैंने तो आपकी मान्यता चाही थी।
2: बेटा देव।
1: प्रणाम माँ जी।
2: बेटा देखो ये कपड़ा कैसा है।
1: बहुत अच्छा है माँ जी, सूट का है ना।
2: और रंग कैसा है?
1: रंग भी बहुत अच्छा है।
2: शोभना की पसंद है ये।
1: अच्छा शोभना की पसंद है, किसके लिए?
2: यही चौराहे पर वेस्ट टेलर की दुकान है, जानते हो ना?
1: हाँ हाँ जानता हूँ माँ जी।
2: जब जाओ तो अपना नाप देते जाना।
1: माँ जी।
2: बड़ी उमंग से लाई है शोभना, उसका दिल मत तोड़ देना।
1: लेकिन आपका तो वायदा था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी।
2: संबंधों के बीच पैसे नहीं आएंगे, यही वायदा था ना, पर मैं पैसे कहाँ दे रही हूँ।
1: माँ जी आपने तो बिल्कुल ही लाचार कर दिया। देखा कमल, कितना ख्याल रखती थी माँ जी मेरा।
3: लेकिन स्थितियां तो सारी तुम्हारे अनुकूल थी, फिर क्या हुआ? क्या दिवाकर आड़े आ गया?
1: नहीं, मैं खुद अपने आड़े आ गया।
3: मतलब?
1: मतलब एक दिन मैं शोभना को पढ़ा रहा था। हाँ तो मैं बता रहा था कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम विशुद्ध प्रेम था।
0: प्रेम तो प्रेम होता है, उसमें विशुद्ध का मतलब?
1: यानी उसमें वासना नहीं थी।
0: क्या अंतर है वासना और प्रेम में?
1: भाई बहुत बहस करती हो शोभना तुम, ऐसे में कैसे पूरा होगा कोर्स?
0: भले ही अधूरा रहे, बात तो समझ में आनी चाहिए। बताइए ना, क्या अंतर है वासना और प्रेम में?
1: वासना का संबंध शरीर से है और प्रेम का संबंध होता है आत्मा से।
0: तो क्या स्त्री पुरुषों के संबंध में वासना ही होती है, प्रेम नहीं?

0: मेरा आपके प्रति है?
1: मुझे क्या पता, मैं क्या जानू तुम्हारा प्रेम कैसा है?
0: मैं तो जानती हूँ, मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करती हूँ जैसा कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम था।
1: शोभना, जान रही हो तुम क्या कहती हो?
0: वही जो तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपा हुआ है और जिस पर पड़े आवरण को ही तुम सच्चाई समझ रहे हो।
1: शोभना, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने हमेशा तुम्हें दिवाकर के निकाह से देखा।
0: झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम अपनी असलियत से डर रहे हो देव।
1: मत थोपो मुझ पर ये बकवास। आज से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा, समझी?
0: ठहरो देव, मेरी बात तो सुनो प्लीज देव।

0: मैं घर आ गया कमल, लेकिन भीतर ही भीतर एक आंधी चल पड़ी थी मेरी। मैंने गहराई से महसूस किया कि शोभना ठीक कह रही थी कि मैं अपनी असलियत से डर रहा हूं। मां जी क्या कहेंगे, दिवाकर क्या कहेगा, इस डर से ही मैं अपने प्रेम का गला घोटता रहा। मैंने पहली बार गहराई से महसूस किया कि मैं शोभना के बिना नहीं रह सकता।
1: तो क्या तुमने शोभना के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव नहीं रखा?
0: गया था रखने, पर घर में कोहराम मचा हुआ था। ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर शोभना चिर निद्रा में पड़ी थी, और मैं जी रहा हूं एक अपराध बोध के साथ। जब भी मेरे सामने विवाह की बात आती है, मेरी आंखों के सामने शोभना का वो साड़ी वाला रूप आ जाता है। उसकी माथे की बिंदी अंगारे सी तहक उठती है मुझ में।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री विलास डबराल से नाटक प्रारब्ध। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR

0: आर भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को हैं श्रोताओं, और अब पेश है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिव्या नेगी का प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतियाला मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: मांगीलाल जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हैं।
0: जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी हमारी आशा है। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं किसान हूँ जी, भी खेती किसानी करता हूँ।
0: अच्छा, तो आजकल किस चीज की खेती कर रहे हैं?
1: देखो, अभी तो नहीं कर रहा है खेती, जब ये बारिश सब होने वाली है, जब बारिश हो जाएगी, जब हम मक्का लगाएंगे, सोयाबीन लगाएंगे, धान लगाएंगे,
0: अच्छा
1: यानी खरीफ की जो फसलें होती है वो सभी लगाएंगे
0: अच्छा यानी अभी आप बरसात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और फिर
1: जी।
0: कब? जी
1: हाँ बिल्कुल, अब इंतजार हमारा मालिक खत्म करेगा, होने वाला इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है, एक दो रोज में बारिश आने वाली है।
0: जी जरूर।
1: अभी आज बढ़िया काले काले आसमान में बादल छाए हुए हैं और बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं
0: क्या बात
1: और
0: है
1: गर्मी से हमको राहत मिल गई। बहुत बढ़िया मौसम सुहावना हो रहा है दीदी इस समय।
0: जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जून की तपती गर्मी में आपको थोड़ी सी राहत मिली है।
1: राहत मिली है।
0: चलिए,
1: सही है बहन जी।
0: और बताएं, आकाशवाणी देहरादून सुन रहे हैं?
1: हाँ बहन जी, बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ मैं तो।
0: अच्छा, तो पसंदीदा कोई कार्यक्रम आपका हो?
1: वैसे तो ये कार्यक्रम भी है, ये तो है ही, खैर, क्योंकि इसमें क्या है, एक विशेषता है, हमारी मनपसंद का गाना सुनने को मिल जाता है और दूसरी बात, दूर दूर से कॉलर जुड़ते हैं, उनकी बातचीत अच्छी लगती है। कोई कॉलर कहाँ का है, कोई किस क्षेत्र का है, कोई किस क्षेत्र का है, तो अलग अलग जानकारियां मिल जाती है, उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उनके क्षेत्र में
0: जी
1: क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, क्या कोई किसान है या फिर कोई कर्मचारी है, तो इस तरह की जानकारियां मिल जाती हैं, तो अच्छा लगता है,
0: विभिन्नता है यहाँ पर और बहुत से लोग हमसे जुड़ते हैं, तो उनके
1: जुड़ते हैं।
0: हाँ जी, तो उनके बारे में हमें पता चलता है। और बताएं, आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: तो फिर बहन जी, मुझे एक है मेरा साया फिल्म याद आ रहा है। मेरा साया फिल्म में एक गाना है, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमकी आता।
0: बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: हाँ, मित्रों को याद कर सकता हूँ
0: जी बिल्कुल।
1: मैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, वसंती लाल जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, मोहम्मद वक्कार फरीदी जी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, राजा हुसैन जी हैं, विष्णु अग्रवाल जी हैं, मुकेश कुमार कश्यप जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, तो बिल्कुल सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: नमस्ते
1: कौन बोल रहे हैं?
0: दीदी, मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आज लगा दीदी मुझे। हाँ
1: क्या बात है, चलिए आज आपकी कॉल लग गई है। स्वागत है आपका
0: दीदी,
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना नाम बताएं।
0: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और महाराष्ट्र से आप बात कर रहे हैं, बताएं
0: जी
1: आपके
0: जी
1: शहर में मौसम कैसा है?
0: अभी तो थोड़ा कल से बरसात चालू हुई दीदी, छुटपुट बरसात हो रही है,
1: अच्छा,
0: गर्मी की राहत मिल गई।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। क्या करते हैं आप?
0: मैं एक रिटायरमेंट हूँ, मंडी के ऑफिस में काम करता था, जो किसानों का अनाज आता था मंडी में।
1: अच्छा, तो
0: जी,
1: क्या काम होता था वहां पर आपका?
0: वो किसानों जो खेती का माल जो लाते थे उसका रेट होता था, बीट कुछ व्यापारी लाके बीट करते थे, उसका रेट जिसको ज्यादा हुआ उसको व्यापारी खरीद लेता था,
1: अच्छा
0: जैसा कि गेहूं, मूंग,
1: हाँ,
0: चना,
1: अच्छा
0: ऐसा चीज जो है खेती में पैदावार लेता था खरीदार। तो
1: अच्छा
0: हम उसमें से हम उनको व्यापारी को टैक्स लेते।
1: अच्छा और बताएं, आकाशवाणी देहरादून कब सुनते हैं?
0: मैं सुनता रहता हूँ दीदी, अनिल कार्यक्रम आपका सुनते रहता हूँ। और आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे रहते हैं।
1: जी, शुक्रिया, हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं।
0: जी,
1: रेडियो सुनने का माध्यम क्या है?
0: माध्यम में ऐसा है कि जो कुछ है अपने आंखें खराब नहीं होती, टीवी देख के आंखें खराब हो, और ऐसा है कि संगीत है जो ओरिजिनल ट्रैक मिलते हैं सुनने को और दिल को छू जाते हैं, और दिन दिल अपना प्रसन्न हो जाता है।
1: ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे आंखें खराब नहीं होती हैं और फोकस भी इंसान का बना रहता है। वो बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनता है और सदाबहार गीत तो रेडियो पर चलते ही रहते हैं। तो बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: गीत तो मतलब चांदनी का फिल्म का,
1: जी,
0: लगी आज सावन की फिरी है जड़ी है,
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है।
0: मित्रों का नाम ले दीजिए,
1: बिल्कुल शामिल करें।
0: हमारे खास करके गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव जी, सिंह जी, दिलीप पाउजा, सुनील झा और धीरज रबारी, उदयलाल टेलर जी, राजेंद्र गंगवार जी।
1: आपकी पसंद पर सुनते हैं चांदनी फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मैडम जी अशोक कुमार भारद्वाज फोर्थ सेक्टर हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
0: अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी, काफी दिनों के बाद। बहुत
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम जी, बस तो ट्राई कर रहे थे, इस बार भी ट्राई की, लगा नहीं, आज भी ट्राई की, चलो कौन लगी जाए तो।
0: चलिए, आज आपका कॉल लग गया है, तो बताएं क्या करते हैं आप?
1: हम भी पूजा पाठ का काम करते हैं ये, और बाकी आकाशवाणी से काफी लगाव है, सुन रहे हैं, देहरादून भी सुनते हैं, कुरुक्षेत्र भी सुनते हैं, पटियाला का भी प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस जैसे लाइव इन प्रोग्राम चलते हैं, सुबह चलता है आपका 10 से 11, और रात को भी चलता है जैसे व्हाट्सएप फरमाइश 10 से 11। हाँ जी, इनको का ज्यादा रुझान रहता है।
0: तो है, यानी गीत संगीत आप सुनते हैं?
1: हाँ जी, गीत सुनते हैं, बाकी आप हम रेडियो के माध्यम से भी आपका प्रसारण सुन रहे हैं, मोबाइल ऐप के जरिए
0: तो गीत
1: रेडियो
0: आपको
1: के माध्यम
0: नए
1: से।
0: पसंद हैं या पुराने?
1: गीत तो हमें पुरानी पसंद है, खासकर अमिताभ बच्चन की।

0: अच्छा, तो बताएं आपके शहर में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: टेम्परेचर तो यहाँ करीब करीब 35-36 डिग्री के करीब, गर्मी बहुत है। रात को
0: अच्छा
1: ठीक हो जाता है, रात काफी गर्मी आ जाती है, ठीक
0: अच्छा
1: हो।
0: तो जून में गर्मी बहुत है, तो इस जून के महीने में खुद को तरोताजा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: क्या करते हैं जी, कोई काम होता है तो जैसे बाहर निकलते हैं, अलबत्ता हम कर रहते हैं ऊपर से धूप से बचने के लिए एक पर कपड़ा डाल के निकलते हैं, तो कपड़ा डाल के निकलिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, तो पक्षियों के लिए भी पानी का प्रबंध करना चाहिए।
0: जी ये बताएं,
1: क्या
0: जैसे
1: है
0: आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त काम के दौरान आपको संगीत सुनने का मौका मिलता है या फिर रेडियो सुनने का मौका मिलता है?
1: हाँ जी, ये तो जैसे कल रात को 10 बजे का प्रोग्राम, रात को तो हम सुनते सुनते हैं जी, और इनमें भी ये जैसे टाइम लगता है तो संगीत सुन लेते हैं। और जैसे हमारे आज यहाँ लगा रहे हैं, जैसे लोग लगाई थी यहाँ पे,
0: तो बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत सुनाते जिंदा बच्चन कहीं सुनेंगे, सुहाग फिल्म का टेलिंग अपने बना दीजिए, 4-5 नाम है जो लेना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल, शामिल करें।
1: हाँ जी, अशोक कुमार भारद्वाज, अभिनव भारद्वाज, संतोष भारद्वाज, अरविंद भारद्वाज, कृष्ण भारद्वाज और केशव भारद्वाज, ये नाम है। और बाकी देहरादून में मौसम कैसा है? अच्छा
0: जी, देहरादून में भी मौसम अभी बहुत गर्मी है लेकिन बादल छाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही देहरादून में भी बारिश होगी और हमें भी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत, सुहाग फिल्म्स।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्कार। सुनील
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: कुमार कश्यप बात कर रहे हैं, कस्बा फुलड़िया, तहसील अरूण, जिला बरेली से। मैम मैम
0: बरेली से सुनील जी बात कर रहे हैं जी, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया है, और आप कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार में लोग कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पूरा आकाशवाणी परिवार भी बहुत अच्छा है। आप बताएं, क्या करते हैं आप बरेली में?
1: मैम हम हलवाई का काम करते हैं।
0: अच्छा, तो आप मिठाइयाँ बनाते हैं, तो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं?
1: मैम करीब 5 साल हो गए हैं करते करते।
0: तो कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाते हैं आप?
1: जैसे बालूशाही है, लड्डू है, बर्फी है, पापड़ी है, और छेना वाली है मिठाई।
0: अच्छा, तो आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है?
1: मैम तो हमारे तो पसंद तो वैसे तो सोन पापड़ी है।
0: अच्छा, ताई आकाशवाणी देहरादून कब सुनते हैं?
1: जैसे ज्यादा तो प्रोग्राम मुझे तो हेलो फरमाइश अच्छा लगता है, रात में प्रोग्राम आते हैं तो जैसे टाइम मिलता है वैसे सुन लेते हैं।
0: अच्छा, परिवार में और लोग भी रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ, हमारे भाई हैं, हम मम्मी है हमारी।
0: ये बरेली में इस वक्त मौसम कैसा है?
1: अबे गर्मी बहुत जरूरी है मैम, बहुत ही ज्यादा बादल आ रहे हैं, अच्छा लगा, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। एक बार बारिश हो जा रही तो जरा कुछ अच्छा लगता है, मौसम ठंडा हो जाता है। बहुत गर्मी,
0: तो बताएं, आज आपका दिन कैसा रहा?
1: बहुत गर्मी मैम, बहुत अच्छा, बड़ी हवा चल रही चल रही है, तो मौसम जरा कुछ अच्छा लग रहा है।
0: तो बताएं, आज एक गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: आज राजा मूवी का कौन सा भी सॉन्ग सुना दीजिए मैम, कोई
0: राजा फिल्म का कोई सा भी गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सा भी सुना दीजिए मैम। पहली बार कॉल लगी है तो आप अपनी पसंद सुना दीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जब आपसे बात होगी। पहली बार मुझे तो बहुत बहुत बेहद खुशी
0: जी
1: हो
0: हाँ,
1: रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और पहली दफा आपकी कॉल लगी है। तो सुनील जी, आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज बाबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं गांव देर तहसील जिला पाटन गुजरात से बात कर रहा
0: गुजरात से धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं आप?
1: हूँ। हम अच्छे और आप आकाशवाणी देहरादून परिवार और आप भी सकुशल हो गए।
0: जी हम भी बहुत अच्छे। और बताएं क्या करते हैं आप?
1: मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर

0: जो व्हाट्सएप कार्यक्रम करना चाहता है वो सुनता है और फोन इन कार्यक्रम सुनता है।
1: चलिए
0: बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं कौन सा कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं?
0: व्हाट्सएप फरमाइश जो आता है आपका 11 बजे वाला,
1: अच्छा
0: वो सुनते हैं और उसमें हम फरमाइश देखते हैं। और आपके हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नयापन होता है सुबह से लेकर रात्रि तक। और देखा जाए कि आकाशवाणी जो श्रोताओं को पी रहा है वो और कोई माध्यम नहीं पी सकता।
1: बहुत अच्छा लगा है जानकर कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। ऐसे आप आकाशवाणी देहरादून सुनते रहें। और जैसा कि आपने बताया कि आप व्हाट्सएप फरमाइश हमेशा सुनते हैं, तो कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो या कोई गायक या गायिका की आवाज़ आपको बहुत पसंद हो तो आप साझा कर सकते हैं हमसे।
0: देखा जाए तो मुझे हेमलता के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हर कलाकार में कुछ न कुछ खूबी होती है, जेंट्स हो या लेडीज हो, लेकिन मुझे ज्यादातर हेमलता के गाने बहुत पसंद करता। अपने चुनिंदा गीत में एक गाना ये है, आप तो ऐसे न थे, फिल्म का गाना है, और उसमें एक गाना है तू इस तरह मेरी जिंदगी में। ये गाना मेरे ख्याल से 3-4 आवाज में है, तो एक हेमलता जी की आवाज में है, बढ़िया सा मधुर गाना है। ज्यादातर फरमाइश में यह गाना भी मैं फरमाइश करता हूँ।
1: जी चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत हेमलता जी की आवाज में आपने हमको बताया, और आप अक्सर इस गीत की फरमाइश भी करते हैं। इस वक्त मौसम कैसा है गुजरात में?
0: मौसम देखा जाए तो बादल छाए हैं और हम बारिश की इंतजार करते हैं। हमारे से ज्यादा जो हम शहर में रहते हैं उसके बजाय जो किसान भाई, उनको अभी बारिश की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उनको खेती बाड़ी यानी किसानी की करना है, शुरुआत करना है। तो बारिश मेरे ख्याल से आशंका है 2-3 दिन में आ जाए, लेकिन नहीं है तो गर्मी से त्रस्त लोग हैं। जो अगर बारिश आ जाए तो जो एशिया चल रही है वो बंद हो जाए, तो इसमें गर्मी में बहुत कटौती हो सकती है।
1: जी, तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि जल्द बारिश हो और किसानों को थोड़ी राहत मिल जाए।
0: बिल्कुल। और देहरादून में कैसा मौसम? वहाँ तो मेरे ख्याल से अच्छा ही मौसम होगा।
1: जी, देहरादून में भी इस वक्त बहुत गर्मी है और बादल छाए हुए हैं, और जल्द ही उम्मीद है कि बारिश होगी और जून की इस तपती गर्मी से हम सभी को राहत मिलेगी।
0: दो बातें कहना चाहता हूँ दीदी।
1: जी बिल्कुल।
0: हम जो कई बार बहता पानी है उसमें कचरा कूड़ा डालते हैं, तो वो नहीं डालना चाहिए। आगे जाके जल भरा होता है, उसमें कुछ मच्छर भी उपलब्ध होते हैं और किसी को पानी अंदर जाने की आहत भी होती है, तो इसका खास ध्यान करना चाहिए। और हो सके इतना जो पानी बारिश का पानी हो उसका जल संग्रह करना चाहिए, और समय मिलने पर वो पानी हमारे काम में लगेगी।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि जल प्रदूषण हम ना फैलाएं, पानी में गंदगी ना डालें, और साथ ही जो बरसात अब आएगी तो उस पानी का हम संग्रह करें, उसे बचाएं।
0: जी जी और जो हमारी नदियां है, नदियां को हमें उसको भी हमें स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और नदियों की वजह से हमारा जीवन अभी चल रहा है।
1: जी, तो बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, और हमें उम्मीद है कि हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पानी बचाएं, जल है तो कल है, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: जी जी और हमारी बातचीत में मोर भी आवाज आई है, श्रोताओं को सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छी। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मोर भी है दीदी,
1: जी
0: तो उसकी आवाज भी श्रोता सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: वही गाना हमने आपने बताया, आपको बताया मैंने
1: जी,
0: इस तरह मेरी जिंदगी में।
1: तो आइए सुनवाते हैं आपको हेमलता की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो हेलो
0: हेलो फरमाइश
1: फरमाइश
0: जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैं सानिया मलिक बात कर रही हूँ। हम
0: जी कैसी हैं?
1: अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो। दिव्या
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं
1: नेकी मैम हो ना। थैंक
0: जी?
1: यू।
0: अच्छा सानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैं
0: तो बताएं कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं गाँव अगवानेरा जिला सहारनपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा सहारनपुर से बात कर रही हैं, तो क्या करती हैं आप?
1: घर पे ही रहते हैं। कैसे हो दिव्या नेगी मैम आप?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी।
1: हाँ जी मैम, मैं रोजे हूँ। रोजे रख रहे हैं, दो रोजे, एक तो कल था और एक आज। जी
0: जी तो बहुत बहुत बधाई आपको।
1: मैम, पूरा हो गया था 7:30 बजे।
0: अच्छा तो बताएं क्या क्या होता है इस त्योहार में?
1: जी मैम, पकवान बनाते हैं, नए
0: अच्छा तो कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं?
1: नए व्यंजन बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है व्यंजन बनाने की। पकौड़ी बना लेते हैं, छोले चावल बना लेते हैं, नॉन वेज की बिरयानी बना लेते हैं, पारा छो लेते हैं, पूरी
0: अच्छा
1: बना लेते हैं, फल फ्रूट
0: तो खूब लजीज खाना इसमें बनता है।
1: ले आते हैं, खजूर से रोजा खोलते हैं।
0: अच्छा इतना सब खाने को मिलेगा इस त्योहार में।
1: जी मैम, ताजे निकलते हैं मुहर्रम वाले दिन, कल को निकलेंगे ताजे। हाँ
0: अच्छा तो रेडियो सुन रही हैं आप आजकल?
1: जी मैम, मुझे तो बहुत ज्यादा लगाना है रेडियो से। मेरे मम्मी यार ये कह देती है हर टाइम था दिमाग मन इसी में लगा रहता है सुनते।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप रेडियो को इतना पसंद करती हैं और सुनती रहती हैं हमारे कार्यक्रम।
1: जी
0: तो
1: जी और मेरे मम्मी ना अभी भी हमारे आपस की बात सुन रही है।
0: अच्छा आपकी अम्मी भी हमें सुन रही हैं,
1: हाँ जी, तो
0: तो अम्मी को मेरा सलाम बोलिएगा
1: वालेकुम सलाम
0: जी। तो
1: आपको।
0: और लोग भी रेडियो सुनते हैं,
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और बताएं आपके शहर में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: साफ हो रहा है मौसम, धूप
0: अच्छा
1: पड़ रही है, धूप से धूप हो रही गर्मी।
0: अच्छा अच्छा चलिए सानिया जी बताएं आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगी? गीत संगीत सुनती हैं ना?
1: हाँ जी मैम, मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है सॉन्ग सुनने का।
0: अच्छा तो आपको शौकीन है, आप गीत संगीत सुनती हैं, तो बताएं पुराने गीत पसंद है या नहीं?
1: नहीं मैम, पुराने नए गाने पसंद है मुझे, नए सॉन्ग।
0: अच्छा न्यू सॉन्ग्स आप सुनती हैं, यानी नए गीत आपको पसंद है। तो कोई पसंदीदा गायक या गायिका जो आपकी हो?
1: अलका कुमार सानू और उदित नारायण जी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अरे ये तो मेरे भी पसंदीदा कलाकार हैं,
1: मुझे
0: तो जरूर तो बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे फिर।
1: ड्रीम गर्ल मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए। जो वाला मकता दर्द का कुछ ख्याल नहीं, अर्ज क्या है मन में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, और जो एक बार दिल में समा जाए उसे भूल जाना आसान नहीं होता। तो बोल ही नहीं पाते, हर हफ्ते किसे चले आते हैं बिल्कुल फोन के पास।
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: बात
0: सानिया जी, मैं बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा महसूस करती हैं और रेडियो से आपको इतना प्यार है, आपकी शायरी भी बहुत अच्छी है। सानिया जी सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत। शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्ते मैडम।
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: कश्मीर से लतीफ
0: कश्मीर से कौन बोल रहे हैं
1: अहमद रैना।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। तो आप अपना नाम बताएं।
1: आज मुझे बहुत दिनों के बाद।
0: अच्छा, बहुत समय बाद आपका कॉल लगा है, कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: शुक्रिया।
0: जी। तो बताएं, क्या करते हैं आप?
1: बस अपनी खेती बाड़ी कर।
0: अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त मौसम कैसा है
1: मौसम तो अभी गर्मी, बहुत गर्मी है।
0: जी? तो कश्मीर में भी इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है। और किस चीज की खेती करते हैं आप?
1: मक्का और धान।
0: फिर रेडियो कब सुनते हैं खेती के साथ साथ?
1: रेडियो में हर समय सुनता हूँ।
0: अच्छा, किस पर, फोन पर रेडियो सुनते हैं या रेडियो सेट है?
1: नहीं, फोन पे।
0: अच्छा, तो यानी ऐप पर आप रेडियो सुनते हैं। तो कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते?
1: फोन इन फरमाइश।
0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है
1: हाँ, ज्यादा पसंद आती।
0: जी। तो बताएं, आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे
1: इमली का बूटा।
0: जी? सौदागर फिल्म का ये गीत है
1: हाँ
0: जी। तो सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर गुरुवार हमारे टेलीफोन नंबर 7088001382 पर समय रहेगा, गुरुवार साय 4 बजे से 5 बजे के बीच। तो आप कार्यक्रम को संपन्न करने की दिव्या निगी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहे आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: End of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा